श्रोताओं नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

ये विविध भारती है। हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉ. सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। आइए सुने भक्ति रचनाएं।

ये विविध भारती है, झरोखा में आइए आपको बता दें आज दिन भर प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 330। सुबह और संध्या 6:45 पर संगीत सहिता कार्यक्रम में श्रृंखला आप सुनेंगे शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं गायक और संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना और प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 7:00 सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे हम हेरा ही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार जेपी दत्ता पर। आप इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुन सकेंगे रात्रि 9:30 से। दिन में 10:00 पिटारा में सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी यादों की तपिश का पहला भाग आपको सुनाएंगे लेखिका ममता सिंह, स्वर ममता सिंह का। दिन में 11:00 मैटिनी शो आप सुनेंगे जानी मानी गायिका इला अरुण से मंदाकिनी जोशी की लाइव बातचीत। 12:05 पर विविध भारती की सालगिरह का जश्न आप सुनेंगे ये कार्यक्रम। जाने माने संगीतकार अनु मलिक से यूनुस खान की लाइव बातचीत आप सुन सकेंगे। 2:00 होगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 2:30 पर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे जाने माने फिल्मकार और अभिनेता तिग्मांशु धूलिया से ममता सिंह की लाइव बातचीत। 4:00 पिटारा लाएगा बॉम्बे टॉकीज गायिका पूर्णिमा यानी सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 5:00 आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम संध्या रंजन।

शाम 7 बजे संगीतकार SD बर्मन द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे और 7:45 पर आप सुनेंगे ज्ञान विज्ञान का कार्यक्रम जिज्ञासा इंद्रधनुष के अंतर्गत। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा सुनो कहानी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंचन का पहला भाग आपको सुनवाएंगे, वाचन ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। नौ बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपके लिए और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार JP दत्ता पर।

रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

कुंभकर्ण वध के बाद युद्ध भूमि में अब रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आ उतरा है। अनेक प्रकार के वाण कृपाण तथा अन्य आयुध चारों दिशाओं में छा गए हैं। इधर वानर और रीछ योद्धा पर्वत खंडों और वृक्षों से उस पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मेघनाद ने हनुमान, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि महारथियों के शरीर अपने अस्त्रों से छलनी कर दिए। मेघनाद के कुछ वाण सर्पों का रूप धारण कर वानर सेना के महारथियों को बांधते जा रहे हैं। तब श्री राम ने अपनी एक और लीला दिखाने के लिए अपने को भी नाग पाश में बंधवा लिया। ये देख देवतागण चिंतातुर हो गए। मेघनाद ने तब त्रिशूल से वयोवृद्ध जांबवान पर आक्रमण किया, लेकिन जांबवान ने वही त्रिशूल अपने हाथों से ग्रहण कर मेघनाद पर प्रहार किया, जिसके आघात से वो मूर्छित होकर गिर पड़ा।

0: श्रोताओ नमस्कार, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार हैं गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार, शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में, और आज हम तीसरी कड़ी के साथ उपस्थित हैं। शेखर दादा, दूसरी कड़ी में हमने वंदे मातरम के बारे में श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाई, और मेरे जहन में एक बात आ रही है कि बहुत सारी फिल्मी भक्ति रचनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिन्होंने बहुत कम गाया और कम उम्र में सीखना शुरू किया और कम उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो ऐसे गायकों की आज चर्चा करेंगे, उन रचनाओं की चर्चा करेंगे।
2: जी हाँ, मैं दरअसल सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ जो पहली भारतीय फिल्म थी,
1: बोलती फिल्म
2: जी। क्योंकि उसके पहले तक हमारे यहाँ मूक फिल्में होती थी, संवाद नहीं होते थे, म्यूजिक नहीं होता था
1: जी, आलम
2: तो सबसे पहली हमारी फिल्म थी आलम आरा, जो बनना शुरू हुई थी 1931 में, 1931 में, और 32 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में एक गाना था छोटा सा, एक जो फकीर है वो गा रहा है, और बस उतना सा ही एक हिस्सा था, लेकिन वो उसके शब्द बहुत सुंदर हैं कि दे दे खुदा के नाम पे प्यारे
1: जी।
2: ताकत हो गर देने की, कुछ चाहे अगर तो मांग ले उससे, हिम्मत हो गर लेने की।
1: क्या बात है।
2: तो आप ये सोचिए कि केवल दो लाइनें हैं इस पूरे प्रसंग में। दुर्भाग्य से वो फिल्म जो है वो जल गई थी, तो वो फिल्म का प्रिंट अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर उसका संगीत जो है वो किसी बहाने वो बच गया और उसको कुछ लोगों ने फिर रिकॉर्ड भी किया, तो वो आज हमको सुनने के लिए मिल सकता है। और उस समय के एक बहुत विद्वान गायक थे शास्त्रीय संगीत के, उस्ताद वजीर मोहम्मद खान साहब
1: जी। जी,
2: तो वजीर मोहम्मद खान साहब ने ये छोटा सा हिस्सा गाया था। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब फिल्में शुरू हुई तो शास्त्रीय संगीत के बहुत सारे कलाकार, अभिनेता, नर्तक, ये सब लोग आके जुड़ते गए और उन्होंने हमारी भारतीय फिल्म की जो परंपरा है उसको एकदम शुरुआत से ही बहुत समृद्ध किया।
1: जी जी,
2: तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ उस्ताद वजीर मोहम्मद खान साहब का स्वरबद्ध किया हुआ, ये केवल दो पंक्तियों का गीत उपलब्ध है
1: जी।
2: कहीं पर आपको भी खजाने से ढूंढ कर निकालना होगा
1: जी,
2: पर
1: जी।
2: मैं चाहता हूँ कि आप जरूर अपने श्रोताओं को वजीर मोहम्मद खान साहब का ये भजन या उसको गीत कहें, सूफियाना अंदाजे का कलाम।

0: कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर देने की ले ले।
1: आलमारा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। और बताते चलें कि 1931 की पहली बोलती फिल्म थी जो दादा ने बताया, शेखर दादा ने भी जानकारी दी कि ये रिलीज हुई थी 1932 में। अब शेखर दादा एक और ऐसे गायक हैं जिन्हें 8 साल की उम्र में ही गायक सम्राट का दर्जा मिल गया था।
2: जी,
1: तो उन गायक का नाम
2: दरअसल ये 1930 के दशक में
1: जी
2: ये बच्चा था, छोटा सा
1: जी,
2: और चूंकि हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे
1: जी,
2: तो अगर कोई छोटा बच्चा गाता था तो हम उसको मास्टर कहते थे, और कोई छोटी बच्ची गाती थी तो नाम बेबी जुड़ जाता था
1: जी जी।
2: तो इस गायक का नाम था मास्टर मदन
1: जी।
2: 1927 में उनका जन्म हुआ और 1942 में उनका निधन हुआ। मतलब पूरा उनका जीवन कालखंड जो है वो सिर्फ 15 साल का था
1: जी जी।
2: लेकिन इस 15 साल में उन्होंने बहुत सारे ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड किया, और उस समय लोग पागल हो गए थे। मास्टर मदन एक ऐसा नाम था कि लोग सुनते थे कि मैंने कहीं अगर अनाउंस हो जाता था कि यहाँ मास्टर मदन आने वाले हैं या बच्चा आने वाला है, तो लोग पागलों की तरह वहां भीड़ जमा हो जाती थी। ये जादू मास्टर मदन के बाद फिर कुछ वर्षों के बाद दिखाई दिया था जब कुमार गंधर्व जी बच्चे थे
1: जी जी।
2: तो कुमार गंधर्व जी के भी लिए लोगों का वैसा ही क्रेज था। और मैं चाहता हूं कि मास्टर मदन का ये एक गीत आप सुनाएं। ये राग खमाज में है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रसिद्धि से जल करके कुछ दुष्ट लोगों ने उनको दूध में जहर मिला करके पिला दिया था, और जिसकी वजह से धीरे धीरे वो मृत्यु का ग्रास बन गए। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर एक दाना भी मिल जाए तो आपको मालूम पड़ता है कि वो दाना कितना पका हुआ है और कितनी सुगंध है। वैसा ही ये गीत है, पर मैं चाहूंगा पहले हम लोग राग खमाज का मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं।

0: ये राग चाड़ो संपूर्ण राग है,
1: जी
0: जाते समय छह और आते समय पूर्ण संपूर्ण होता है, पर रे जो है वो मींड में लगता है, सीधे रे नहीं लगाया जाता। पर ये राग इतना प्रसिद्ध राग है
1: जी
0: कि
1: जी
0: मुझे लगता है कि सुगम संगीत की आधी रचनाएं
1: राग खमाज में
0: राग
1: है
0: खमाज में या
1: जी
0: मिश्र खमाज में या मांझ खमाज में आपको मिल जाएंगी।
1: जी
0: तो मैं चाहूंगा कि हम राग खमाज में मास्टर मदन की ये रचना सुने,
1: जी
0: मोरी बिनती मानो कान्हा रे।

0: शेखर दादा, हम चाहते हैं कि राग खमाज में ही आप एक रचना खुद सुनाएं, क्योंकि आपके स्वर के लिए भी लालायित है हमारे श्रोता।
1: मैं एक पारंपरिक रचना सुनाता हूं, क्योंकि हमारे पास दरअसल जो खजाना है
0: जी,
1: वो पारंपरिक इतना बड़ा खजाना है
0: जी,
1: तो एक कलाकार के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, और श्रोताओं के नाते आप सभी संगीत सरिता के श्रोताओं की भी ये जिम्मेदारी है कि हमारी जितनी भी पारंपरिक रचनाएं हैं
0: जी
1: उनको गाएं और उनको आगे अपने अगली पीढ़ी को सिखाएं।

0: वाह दादा, आपने अद्भुत गाया। अब तो लग रहा है कि बस इस कड़ी को समाप्त न करें और आपसे अनुरोध करते रहें कि आप गाते
1: नहीं, अब
0: रहिए।
1: इसके लिए हम लोग कल मिलेंगे अपनी चौथी कड़ी में।
0: जी
1: आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से पुनः प्रणाम निवेदित कर रहा हूं।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। संगीत
2: सरिता में आप सुन रहे थे श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी, तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

विविधवार देसी लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। उषा की किरणों ने स्वर्ण कलश छलकाया, भोर ने धरती का आंचल सरकाया, झीलों पर सारस के जोड़े की उड़ान, हिरनों के कुलाचे, चमेली की अंगड़ाइयां फिर सुबह संदली हवाओं से नहा कर आई। ऐसी तरुण बेला में स्वर लहरियों पर सवार, हर आंगन हर उपवन में बनकर अमृत फुहार, लेकर सुर सागर की झनकार आई विविध भारती। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं विविध भारती की सालगिरह है आज, और इस खास दिन की आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वरों में जिद्दी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सचिन देवबर्मन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा था।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: जी एस नेपाली का लिखा दो गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म नवरात्रि से। तर्ज थी चित्रगुप्त की।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के चंद और नगमे आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद थोड़ा सा इंतजार।

0: आजाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण का लिखा यह नगमा था, संगीत था सी रामचंद्र का।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत।

बॉबी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया शमशाद बेगम ने। 12 o'clock फिल्म का गीत आपने सुना, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। कुछ ही पलों में सुनिएगा कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। गीतों के तराने तब और खूबसूरत बन जाते हैं जब इनमें शामिल हो जाते हैं युगल गीत। युगल गीतों का यही कार्यक्रम हम है राही प्यार के गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर।

0: संगीत की मीठी मीठी तान लिए गीत फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद, सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: दिल के तारों को छेड़ता मस्ताना फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: प्यार से दिल भर दे,
2: नहीं नहीं
1: हम पे करम कर दे,
2: कभी नहीं
1: प्यार से दिल भर दे, हम पे करम कर दे,
2: कभी नहीं
1: वरना हम मर जाएंगे ओ जालिम, नाम तेरा ले ले
2: है।

0: विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज ही 3 अक्टूबर 2:30 बजे आप सुन सकते हैं ये विशेष कार्यक्रम विविध भारती से। इस वक्त आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। कुछ और गीत सुनवाएंगे आपको बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: जी हाँ, श्रोताओं खबरदार तो रहना होगा क्योंकि आज है 3 अक्टूबर और आज बहुत सारे विशेष कार्यक्रम हैं हमारे रेडियो सेट पर, हमारे विविध भारती में, जिसके बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं। साथ साथ सावन भादो फिल्म का फिलहाल ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल थे, सोनिक ओमी की तर्ज थी।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह।

0: में ओ सनम जाने मुझे ऐसे देखा तूने कैसे क्यों होने लगी जी में टिक।
1: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में हम जूली फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

हिम्मत फिल्म का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और यही थी आज के कार्यक्रम हम है राही प्यार के की आखिरी पेशकश। लेकिन आप कहीं जाइए नहीं, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की, प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार

0: पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
1: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
3: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
5: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीखकर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में चावल में इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
3: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मित मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मित, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मित, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मित बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रखे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे और जापानी शैक्यों में भारत की कुमकुम मोहद ने

0: महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 3 अक्टूबर का दिन विविध भारती के लिए बहुत मायने रखता है। आज है विविध भारती का स्थापना दिवस। 3 अक्टूबर 1957 से शुरू हुआ ये सफर अब अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। विविध भारती ने स्वस्थ मनोरंजन की एक समृद्ध परंपरा कायम की है और कितने तो अलबेले हैं विविध भारती के कार्यक्रमों के नाम, जैसे फौजी भाइयों का कार्यक्रम है जयमाला। पूरी दुनिया में फौजी भाइयों को समर्पित ये अपनी तरह का इकलौता कार्यक्रम है। यही नहीं, जानी मानी हस्तियां विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश करती हैं, जिसमें वो फौजी भाइयों से अपने जीवन की कहानियां बताती हैं। चिट्ठियों का कार्यक्रम मन चाहे गीत, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार, नाटिकाओं का कार्यक्रम हवा महल। विविध भारती सिर्फ एक रेडियो चैनल नहीं है, बल्कि एक संस्कृति है, हमारे जीवन का हिस्सा है।

0: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: जाने माने फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि विविध भारती भारत के मध्यवर्गीय जीवन का पार्श्व संगीत है। कितनी सुंदर बात थी ये। अगर आप किसी शहर में हों तो आपको हर घर में विविध भारती गूंजता हुआ सुनाई पड़ सकता है। एक जमाना था जब विविध भारती आपके ट्रांजिस्टर पर गूंजा करता था। आज DTH, इंटरनेट स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, न्यूज ऑन AIR और वेव OTT के जरिए विविध भारती पूरी दुनिया में उपलब्ध है। यानी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, दिन के किसी भी समय विविध भारती आपका साथ निभा सकती है। इसके अलावा चिट्ठियां तो विविध भारती में आती ही हैं। अब विविध भारती ने सोशल मीडिया का हाथ भी पकड़ा है। कुछ कार्यक्रम सोशल मीडिया के सहारे पेश किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे फोन इन कार्यक्रम हैं जिसके जरिए श्रोता हमसे सीधे जुड़ते हैं। यानी समय के साथ कदम ताल करती हुई आगे बढ़ रही है आपकी अपनी विविध भारती।

विविध भारती में गाने ही नहीं बल्कि समसामयिक जानकारियां पेश की जाती हैं, मशहूर हस्तियों से मुलाकातें, विविध भारती में साहित्यिक कार्यक्रम भी होते हैं। एक तरह से विविध भारती अपने समय और समाज का बेमिसाल दस्तावेजीकरण कर रही है। न जाने कितने दशकों से

हॉस्टल में रह रहे नौजवानों के लिए विविध भारती उनके परिवार की सदस्य है। न जाने कितने अकेले लोगों का साथ निभाती है विविध भारती। देश विदेश में विविध भारती की आवाज गूंजती है और यूं लगता है जैसे हमारा कोई अपना हमारे साथ है, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारा साथ निभा रहा है। 70 वर्ष का ये गौरवशाली सफर आपके बिना पूरा होना संभव नहीं था, इसीलिए हम विविध भारती नहीं कहते, हम कहते हैं विविध भारती परिवार। तो पूरे विविध भारती परिवार को विविध भारती की सालगिरह बहुत मुबारक।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सुरबहार की तान सी है विविध भारती की परवाज, सुनहरे पंखों की परवाज आपके घर आंगन में, ये आवाज है विविध भारती की। हम सबके दिल का साज है विविध भारती, समय की घड़ी बनकर वक्त की अहमियत भी बताती है। भला कौन है जिसका बचपन इसके आंगन में न गुजरा हो, इसके दुलार में एक उम्र परवान न चढ़ी हो। कुछ खट्टी मीठी यादों के साए थे जो रेडियो विविध भारती में समाये थे। और आज है विविध भारती की सालगिरह, आप सभी को विविध भारती परिवार की तरफ से विविध भारती की सालगिरह पर ढेरों बधाइयां।

बाजीराव मस्तानी इस फिल्म का ये पारंपरिक गीत आप सुन रहे थे। शशि, सुमन, कनिका जोशी, कुणाल पंडित, ऋषि, राग, पृथ्वी और साथियों की आवाजों में आदित्य देव की तरह थी। श्रोताओं, विविध भारती का स्थापना दिवस है आज। विविध भारती देश में रेडियो चैनल आकाशवाणी की एक प्रमुख प्रसारण सेवा है। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को हुई। आरंभ में ये प्रसारण केवल 2 केंद्रों बंबई और मद्रास से होता था, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती लोकप्रियता के कारण आकाशवाणी के कई और केंद्रों से भी प्रसारण शुरू किया गया। हिंदी भाषियों का लोकप्रिय चैनल होने के साथ साथ कुछ अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारण की सुविधा है। विविध भारती का प्रसारण पूरे भारतवर्ष में सुना जा सकता है और भारत के बाहर भी सुना जा सकता है। वैसे भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई। 2 निजी ट्रांसमीटरों से इसकी शुरुआत हुई। 1930 में इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नाम दिया गया और 1957 में आकाशवाणी का इसे नाम दिया गया। आकाशवाणी के तत्कालीन महानिदेशक गिरिजा कुमार माथुर ने पंडित नरेंद्र शर्मा, गोपाल दास, केशव पंडित और अन्य सहयोगियों के साथ एक अखिल भारतीय मनोरंजन सेवा की परिकल्पना की ओर ये नाम दिया कि विविध भारती यानी विविध भारती सेवा आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। इसमें 5ों ललित कलाओं का समावेश और तमाम तैयारियों के साथ 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती सेवा मुंबई में शुरू की गई। विविध भारती पर बजा पहला गीत पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा था और मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास ने इसे सर्वबद्ध किया था। इसे प्रसार गीत का नाम दिया गया। इसके मधुर बोल थे नाच मयूरा नाच, जिसे मशहूर गायक मन्ना डे ने स्वर दिया था। कुछ और भी विविध भारती की दिलचस्प बातें आपसे साझा करेंगे। पहले सुनवाते हैं ये गीत।

0: जी हाँ, शुभ दिन का इंतजार था और शुभ दिन 3 अक्टूबर को आज आ गया। आपका इंतजार हुआ खत्म। बहुत सारे कार्यक्रम श्रोताओं विविध भारती ने सजाए हैं खास अपने श्रोताओं के लिए, तो बने रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग। वैसे आप सुन रहे थे परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, फिल्म का गीत ज्योतिका तांगड़ी की तिसरगतिया की आवाजों में वायु के बोल थे सचिन जिगर की तर्ज थी।
1: भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक।

विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक।

करसन संगतिया और श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे मीर अली हुसैन की ये रचना, सलीम सुलेमान का संगीत था, डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और विविध भारती के स्टूडियो से आपके घर आंगन तक ये डोर आज है आपके साथ साथ हमेशा की तरह। श्रोताओ, आपको साथ साथ बताते चले, अखिल भारतीय मनोरंजन सेवा विविध भारती की पहली उद्घोषणा शील कुमार ने की थी। आगे चलकर कई अविस्मरणीय उद्घोषकों और कलाकारों ने इसे सजाया और देशवासियों को मनोरंजन का एक स्वस्थ खजाना दिया। इनके अलावा भारतीय फिल्म उद्योग के तमाम नामचीन निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेता अभिनेत्रियों और मंच के अन्य कलाकारों ने इसकी लोकप्रियता में चार चांद लगाए। जयमाला और हवा महल ये दो कार्यक्रम इसके शुरुआती कार्यक्रम रहे जो आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। इनकी संकेत ध्वनि भी काफी लोकप्रिय है। अभिनेत्री नरगिस ने विविध भारती का पहला जयमाला कार्यक्रम पेश किया था। इसके बाद लगभग सभी टॉप अभिनेता अभिनेत्रियों ने इसमें शिरकत की। इसके अलावा कार्यक्रम पिटारा, मंथन और संगीत सरिता के साथ साथ भूले बिसरे गीत इत्यादि कार्यक्रमों ने श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया है।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। पंडित बिरजू महाराज, श्रेया घोषाल की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा के बोल थे। शैल प्रदेश का संगीत था।

आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा की आवाजों में रंजना। फिल्म का गीत अरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। श्रोताओ, आज विविध भारती का स्थापना दिवस है। विविध भारती की कुछ और प्यारी प्यारी सी बातों के साथ आगे बढ़ेंगे चतुर्लोक कार्यक्रम में। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: पद्मावत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल स्वरूप खान की आवाजों में। एम टूरिस्ट के बोल थे संजय लीला भंसाली की तर्ज थी।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
0: श्रोताओ सुरबहार की तान सी है विविध भारती की परवाज और आज 3 अक्टूबर है विविध भारती की सालगिरह का जश्न हम मना रहे हैं। दिन भर है कार्यक्रम, तो रहिए विविध भारती के संग और सुनते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम। और आपको बता दें कि बोहेमिया चेकोस्लोवाकिया में अप्रैल 1907 यानी 1907 में जन्मे वॉल्टर कॉफमैन, जो एक संगीत शास्त्री संगीत शिक्षक के साथ साथ एक कंपोजर भी थे, कई देशों में गए और समय बिताया। 1935-1946 के बीच कॉफमैन भारत में रहे। फिल्म उद्योग बम्बई की एक कंपनी में संगीतकार रहे। कुछ समय बॉम्बे चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया उन्होंने और 1946 तक ऑल इंडिया रेडियो बम्बई में डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक बन गए। कॉफमैन ने आकाशवाणी की संकेत ध्वनि यानी धुन बनाई जिसमें तानपुरा, वायलिन और वायोला है।

0: प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे पलक मुछाल और साथियों की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में। सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

कुछ खास आवाज और इनके नाजो अंदाज से सजा है आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम जो 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह के जश्न के अवसर पर आप तक पहुंचेगा। रहिए विविध भारती के संग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम में फिर हाजिर होते हैं।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और विविध भारती की अगर बेशकीमती सिग्नेचर ट्यून की बात की जाए, यानी संकेत धुन की बात की जाए श्रोताओं, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये ध्वनि ब्रह्मांड के गूंजते ओमकार नाद का स्वर है। वाल्टर कॉफमैन पश्चिमी क्लासिकल संगीत में दक्ष थे। 1957 में कॉफमैन स्थायी रूप से अमेरिका चले गए और इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन के संगीत प्रोफेसर बन गए। उन्होंने नई संगीत शैलियों की रचना की। उनकी लिखी पुस्तक रागाज ऑफ नॉर्थ इंडिया भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बेशकीमती किताब मानी जाती है। आकाशवाणी के विलक्षण सिग्नेचर ट्यून की दिव्यता अद्भुत है श्रोताओं। सचमुच कुछ चंपई रंग लिए हुए ये धुन जब सुबह बिखरती है तो नूर बरसाती है।

जोधा अकबर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ए आर रहमान की तर्ज थी, जावेद अख्तर की ये रचना थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

तेरे बिन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं वजीर फिल्म का ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। विधु विनोद चोपड़ा की रचना शांतनु मोइत्रा की तर्ज है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना।

जेपी दत्ता को वॉर फिल्में बनाने में महारत हासिल है और इसीलिए उन्हें 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फिल्म बॉर्डर के लिए सम्मानित किया गया।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत संदेश आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं, उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, LOC और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रेफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करते हुए लॉन में आ गई है। लॉन के किनारे किनारे की घास अभी भी गीली है। क्यारियों में लगे फूलों और पौधों की पत्तियों पर ठहरी ओस की बूंदों पर पड़ती सूरज की किरणें मोती सी चमक रही हैं। धुएं जैसे उड़ते हुए बादल सूरज को ढक लेते हैं। छिपा छिपी खेलती बदली और धूप उसे गुदगुदा रही है। मन भी धूप छाही हो रहा है। घास पर जैसे मोर पंख बिछ गए हों।

और उसकी आंखें जगर मगर कर रही हों। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था, मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में।

दिव्या ने पायलट प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं। क्राइम से जुड़े लोगों की पड़ताल करना, उनसे बातें करना, उन्हें कन्विंस्ड करना, फिर उन पर अपनी मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर राय बनाकर लिखना। उफ, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। पुलिस स्टेशन जाकर चक्कर काटने पड़े थे। जब पहली बार पुलिस से इस संदर्भ में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन दिव्या भी कहां हार मानने वाली थी। फ्रेंडशिप क्लब एडल्ट साइट पर जाकर जूझती रही और अपना रिसर्च वर्क करती रही। अनगिनत कागज लिखे और फाड़े। एक बार तो उसे पुलिस वालों का विरोध भी सहना पड़ा। इस जद्दोजहद के बाद अपने दूसरे सब्जेक्ट की विधिवत पढ़ाई करना भी जारी रहा। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई।

शूटिंग में उसे बहुत सारी समस्याएं हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। शूटिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट जब आते तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा हो कि शूटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि इस मुश्किल डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने का उसने प्रण खुद ही किया था। सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली जाती, शूटिंग कैंसिल भी हो जाती। एसपी की शूटिंग के दौरान कुछ अलग तरह की समस्याएं होती, जैसे कि सवालों का चुनाव भी वो स्वयं ही करते थे। शुरुआती दिनों में तो मारे घबराहट और डर के रातों को नींद नहीं आती थी। मदद के लिए 5 टीचर्स का पैनल बना था, उसमें आपस में ही पॉलिटिक्स होती थी। हर टीचर खुद क्रेडिट लेना चाहता था। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती।

0: बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कंपटीशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन।
1: बीते हुए दिन कुछ

वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठकर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी। 7 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है, 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं। ये कोई सोने का वक्त है। उठो दिव्या, दिव्या उठो, कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिराने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली, भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी। दिव्या तमक कर उठ बैठी। तो फिर तो क्या करूं मम्मी, क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा मैं अकेली नहीं हूं, उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है, आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग? सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी। हैं मम्मी, बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक। अरे तो कैटवॉक कर मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन जाओगी। क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से? सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना, अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ। मम्मी ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है। अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा, आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। पता है लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड, उसे तो आप जानती है ना, कितनी अच्छी है रीना। अरे बिटिया हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे, जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा, शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था, सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और रायमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने देख लिया तो खूब हंगामा हुआ। पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थी। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना, एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी रायमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से करो, घर वाले कन्विंस ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी, उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार उसूल ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। वक्त पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एकाध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही शानो शौकत की जिंदगी है इनके लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर
परेशान हो गईं। दुखी होकर वो कमरे से चली गईं। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आगे पीछे मुड़कर गर्दन टेढ़ी करके हर तरफ से अपने को निहारती हुई अपने ही रूप पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो, अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा। सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कायद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब, ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी।

कंग्रेचुलेशंस। अरे किन ख्यालों में खोई हो बार्बी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दुपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी। तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है। और पता है, रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही। कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं। घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी की नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है, और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहाँ कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मढ़क देती थी, पर अब अपनी गलतियों की सजा खुद को ही देनी है।

दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है, जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है।

0: व्हाट हैपेंड दिव्या, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना, तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें। नहीं यार, खुश हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है, मम्मी की बहुत याद आ रही है। खैर छोड़ो। अरे तू उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना। नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी, उन्हें पता नहीं है कि हम यहाँ रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से, उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था, तू हम सबके लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सबके लिए।
1: छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है। इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है? हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था, इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहां से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूं, उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हाँ पर तुझे अब प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए। हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरे सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोंटाज दिखाया था, रायमा बता रही थी मुझे।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही है, क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चाटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, हाँ?

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं मां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हा, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहां लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना।

हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूं, पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूं मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहां। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूं, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी, पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूपती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब सी खिली थी। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह उड़ना

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। मैटिनी शो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हां, आज का दिन है जश्न का। जश्न उस आवाज का जो बरसों से हमारे घरों में गूंजती रही है। जश्न उस साथी का जिसने हमारी खुशियों में हमें मुस्कुराना सिखाया, हमारी तन्हाइयों में हमारा साथ दिया और हमारी जिंदगी के हर रंग को संगीत से सजाया। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि आज विविध भारती का स्थापना दिवस है। हम सभी VBS के स्थापना दिवस के 70वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। उस विविध भारती की सालगिरह जो सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं था आपके लिए, बल्कि करोड़ों श्रोताओं की जिंदगी का हिस्सा है, उनकी यादों का हिस्सा है, उनकी जिंदगी का जीवन संगीत है ये विविध भारती। तो आज दोस्तों हम और आप मिलकर मना रहे हैं विविध भारती के इस खूबसूरत सफर का जश्न। और इस जश्न में हमारे लिए एक बेहद खास तोहफा है, एक ऐसी आवाज जो अपनी पहचान के साथ साथ बरसों से श्रोताओं के दिलों में राज कर रही है, श्रोताओं के दिलों में बसी हुई है। हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका, अभिनेत्री और लेखिका इला अरुण। इला जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत नमस्कार। और आप सभी को विविध भारती के जितने भी अनाउंसर्स हैं

0: हैं स्टेशन डायरेक्टर और श्रोता,
1: जी
0: 70 साल की ये जो वर्षगांठ आप इतने जोश से मना रहे हैं,
1: जी
0: मतलब इतनी सजी धजी इतनी महिलाएं, तो मैंने मुझे लगा दिवाली है और मेरे लिए एक यादों का दरिया बह गया
1: जी।
0: क्योंकि विविध भारती का जब आपने कहा 70 साल मना रहे हैं, तो हमारी और विविध भारती की उम्र तकरीबन आसपास ही है और बहुत यादें हैं। और आपने, विविध भारती ने मुझे मेरी जवानी के दिन भी याद दिलाए, फौजियों से प्यार करना भी सिखाया, किसानों से बात करनी भी सिखाई, और विविधता जो भारत की एक धरोहर है उसके सारे रंग आपकी विविध भारती पे मुझे मिले, तो बहुत मुबारक।
1: तो आप समझ आए, आपने कहा कि फौजियों से प्यार करना सिखाया, तो आपका इशारा कहाँ था? कहीं ना कहीं प्यार आपको भी हुआ किसी से?
0: कहीं ना कहीं नहीं, मैं ऐसी लड़की, मुझे कई बार हुआ और जो जवानी के दिन थे ना
1: जी,
0: उसके प्यार का तो सारा मतलब जिम्मेदारी विविध भारती की है। गाने ऐसे थे
1: जी
0: बिल्कुल, प्यार जिससे हो रहा है उसकी शक्ल दिमाग में, मतलब विविध भारती देखी रे, टीवी तो था नहीं
1: जी बिल्कुल,
0: तो उस समय की बात कर रही हूँ कि वो जो मोहब्बत थी ना इतनी पाक साफ
1: जी,
0: और आप अपना दिल लुटा देते थे। ऐसे कई गाने हैं जो मैं चाहूंगी कि आप बजाएं, अगर वो लोग जिंदा हैं तो याद करेंगे नहीं है तो उनकी याद में मैं गाने पेश करूंगी।
1: बिल्कुल, तो हम एक कार्यक्रम की शुरुआत में ये गीत सुन लेते हैं और उसके बाद श्रोता समझ जाएंगे कि आज हम क्या क्या बातें आपसे करने वाले।
0: जी जी, आपका जो मन में आए
1: जी।

0: तो देखिए यहाँ बैठी सभी महिलाओं की चूड़ियाँ भी खनक गई हैं आपके इस गीत से।
1: मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये गाना मेरी जिंदगी का, मतलब मैं क्या कहूँ, एक ऐतिहासिक गाना है
0: जी।
1: जब पहली बार मुझे भारत की कोकिला लता जी के साथ लाइव,
0: बिल्कुल
1: देखिए उस जमाने में ये था कि ऐसा नहीं था कि 100 साजिंदे आके पहले बजा के चले गए, आज तो सब कुछ वैसे भी कीबोर्ड पे हो रहा है
0: जी।
1: पर तब इतने म्यूजिशियंस और ये लाइव, एक तरफ लता जी और एक तरफ मैं, और जिसने कभी कुछ ज्यादा गाया ना हो, सीखा ना हो। और मैं शिव जी को भी याद करती हूँ, पंडित शिव जी को भी, और अपने हरिप्रसाद चौरसिया जी को भी याद करती हूँ, और सबसे पहले यश जी को और श्रीदेवी जी को और सरोज खान जी को। देखिए मेरे लिए बड़ा इमोशनल मामला है, इनमें से आधे लोग रहे नहीं है, पर गाना कैसे बनता है, कैसे पकता है, और

0: एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब सरोज जी ने देखा कि मैं डांस भी कर रही थी, सर्दी का मौसम था और धौरों पे मतलब रेगिस्तान के टीलों पे, तो उन्होंने कहा ये तो ज्यादती है कि गाना इन्होंने गाया है और ज्यादा हिस्सा श्रीदेवी जी के पास है
1: जी।
0: तो उन्होंने एक लता जी की लाइन पे मुझे डांस करवा दिया। अब मुश्किल ये थी कि इसको डब करना था, तो कैसे ये गाना बाद में हरी जी ने, और उनका सुर बहुत हाई है
1: जी
0: और मेरा ऑक्टेव नीचे है, कैसे ये हुआ? वो है सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी
1: जी।
0: और ऐसे गाना बनता है जो कि टीम वर्क है। तो आज मैं समर्पित उन हमदम परिंदों को जिनके दम से जिंदगी के लम्हे महक गए, मगर उन परिंदों की याद बहुत आएगी जो मेरे गुलशन में दो पल को चहक गए।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो लता जी के साथ बिताए पल के बारे में आप बताना भी चाहती थी, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा मैं जरूर बताना चाहूंगी, तो बताइए ना कि इस गाने को गाते वक्त लता जी के साथ क्या माहौल रहा आपका?
0: पहले तो मैं ऐसे कांप रही थी, मैं क्या बताऊं आपको कि जिनको जिंदगी भर आपने, आपके लिए तो मतलब ऐसा है कि
1: भगवान
0: जी। उनके दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, और वो सादगी का एक ऐसा सरस्वती रूप, तो वो आई और शिव जी हरि जी ने मुझे कंफर्टेबल कर दिया क्योंकि मैं जानती थी। अब जब मैंने उनका सुना तो मेरी तो आवाज ही नहीं निकली, वैसे भी थी नहीं और भी गड्ढे में गई। फिर जब रिकॉर्डिंग करने गए तो बाद में उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आपके गुरु जी कौन है? बस इस बात से मैं मतलब सोच रही थी या तो गुरुजी की मार पड़ेगी गुरुजी को, और या फिर ये उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है क्योंकि मैंने सीखा नहीं था कहीं। उनके साथ गाने में बहुत अच्छा लगा, मैं जो कुछ मैंने सीखा मजदूरों से बंजारों से सुन सुन के, मेरे पास कान है आवाज का पता नहीं तो
1: अरे आपकी आवाज में पूरी राजस्थान की मिट्टी है।
0: तो लता जी के साथ दो गाने हो गए, ये भी था और रैना बावरी भाई अनु मलिक जी, मैंने सुना आपके साथ आने वाले तो उनके साथ जाल फिल्म का एक गाना था वो भी मैंने लता जी के साथ गाया था
1: जी।
0: पर ये सिर्फ एक बहुत ही इमोशनल यादगार है, बहुत सुरीली गायिकाओं को भी मौका नहीं मिलता है कि लता जी के साथ गाए, और मुझे मौका मिला इसके लिए मैं यश जी की और हरि जी और अपने शिव जी की बहुत बहुत मैं उनके आभारी हूँ, शुक्रगुजार।
1: और हम भी ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपसे हमें आज मिला दिया हम उनके आपकी आंखों से या आपके मन से उन तक पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ा पल है हमारे लिए, विविध भारती के लिए, सभी विविध भारती के परिवार के सदस्यों के लिए कि आज इला जी दोस्तों हमारे स्टूडियो में पधारी हैं, अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिता रही हैं। तो इला जी आप गायिका हैं जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अभिनेत्री हैं और आप लेखक हैं। आपकी अभी अभी एक किताब आई पर्दे के पीछे,
0: जी जी
1: है ना,
0: भलाई की लोग देख तो नहीं सकते
1: हाँ,
0: पर मेरी किताब ये है
1: क्या
0: पर्दे के पीछे,
1: बहुत सुंदर पर्दे के पीछे, और आप भी कितनी खूबसूरत लग रही है पर्दे के पीछे देखिए। तो इसमें आपने अपने जीवन को खोल कर रख दिया है
0: जी,
1: क्या कहना चाहती हैं आप, मतलब ये आपका आत्म कथात्मक एक कहने की
0: जिंदगी पूरी है कि क्या हुआ। देखिए गाना मैंने गाया था तो लोग बाग जो होते हैं ना कलाकार को कलाकार नहीं समझते हैं और गायन को भी, क्योंकि फिल्मों में सिचुएशंस होती हैं। एक गाना मैंने गाया था, मैं तो कह सकती हूँ चोली के पीछे, तो उससे लोगों ने मतलब उसको जैसे ऐसे मान लिया जैसे कोई बहुत बुरा गाना गाया हो, जबकि इसमें लड़की की तो कोई बुराई नहीं है, ये लड़के हरकतें करते हैं जो ऐसी बातें पूछते हैं, बट एनीवे वो मेरा एक मेरे लिए झंडा हो गया कि मतलब ये तो यही गाना गाती है, पर मेरी जिंदगी पर्दे के पीछे। मैंने रंगमंच किया अपने बचपन से, जिसके आगे आपको याद हो बचपन में मखमल का पर्दा हुआ करता था
1: जी बिल्कुल,
0: फिर छोटा स्क्रीन फिर बड़ा स्क्रीन तो पर्दे, और फिर जहाँ राजस्थान से हूँ वहाँ लाज का भी पर्दा है, घूंघट का भी पर्दा है। तो पर्दे के पीछे जो मेरी ये ऑटोबायोग्राफी है उसमें ना केवल मैं हूँ वो भी तमाम औरतें हैं जो मेरे इर्द गिर्द मुझे मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा देती रही। इसमें बहुत कहानियां हैं और खास तौर से औरतों, क्योंकि औरत की नफ्स को मैं समझती हूँ, उसके दर्द को समझती हूँ, उसकी अंदर के जोश को मैं अपने गानों में सेलिब्रेट करती हूँ, पर उसके दर्द को मैं अपने नाटकों में निकालती हूँ। तो पर्दे के पीछे मैं एक माँ भी है, एक जवान लड़की भी है, उसकी मोहब्बतों का भी, स्कूल की शैतानियों का भी जिक्र है, फिर एक नानी का भी जिक्र है, बहुत सारी चीजें, एक मदर भी हूँ। तो औरत तो बहुत दौर से गुजरती है
1: और आपने औरतों पर बहुत काम किया, इस पर भी हम आपसे एक सवाल करेंगे, लेकिन क्या पर्दे के पीछे ये जो किताब आपने लिखी है इसे लिखना अपनी जिंदगी को दोबारा जीने जैसा था आपके लिए, कि कलम हाथ में लेने की जरूरत आपको कब महसूस हुई?
0: देखिए, वैसे तो मैं काफी लिखती रही, लोगों को पता नहीं है, कभी कभी कविताएं लिखती थी, कभी मैं नाटकों का अनुवाद मैंने बहुत किया है, नाटक लिखे
1: जी, जी।
0: पर जहां तक पर्दे के पीछे के लिए मुझे जो पब्लिशर थे वो पीछे पड़े थे, आप तो जानते हैं आजकल वो स्टार से उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, पर मुझे तो ऐसा था कि कलम जैसे हाथ में आई ना तो मेरे लिए एक संवेदात्मक जर्नी हो गई, बचपन को पुनः जीना,
1: बिल्कुल
0: अपने आप में एक एक हिंडोला, जैसे कहते हैं ना झूले पे गए और झूले से वापस आप आए, तो वो उस दौर से दोबारा गुजरना मेरे लिए एक उपलब्धि थी। भावनाओं को मैं ऐसे समेट पाऊंगी, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, तो मैंने एक जगह किसी और का ही था कि जिंदगी गुजर गई है किरदार निभाते निभाते, मैं कौन हूँ ये सवाल आज भी है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने इस किताब में उन महिलाओं का भी जिक्र किया है जो आपके अनुभव में रही, आपके साथ रही।
0: बिल्कुल, जो मेरे साथ काम करती थी, जैसे पूरी की एक अधूरी कहानी, पूरी उसका नाम था, पर उसकी जिंदगी में वो जिस जाति से आती थी, बंजारन थी, उसका क्या था, उसके पीछे क्या कहानियां थी, या फिर मेरी दोस्त मानू ने सुसाइड क्यों किया, पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे मैंने अभी नाटक किया है, पर तब औरतों को आधा हिंदुस्तान नहीं समझता है कि जब वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके लिए एक जीवन को पुनः पाना है और जीना है, उसमें हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, तो ये सब चीजें, मानु का मरना या पुष्पलता का कैसे भगना, ये सब ये किरदार मेरी मस्तिष्क में समाते रहे। और सबसे बड़ी बात तो है मेरी माँ, जो जिनका एक चीज है मेरी किताब में लिखी हुई है, आवेश में कभी विवेक मत खोना, ये क्लैपर बोर्ड था, यानी आवेश तो जवान होंगे तो आएगा ही आएगा, पर जब भी ऐसी बात आती थी तो क्लैपर बोर्ड गिर जाता था, आवेश में कभी विवेक। सो मदर, उनकी लोकोक्तियां बहुत कुछ है, मतलब मैं सोचती हूँ पढ़ना चाहिए लोगों को, मेरे लिए नहीं पढ़ना चाहिए, औरत को
1: समझने के लिए पढ़ना चाहिए। तो हमारी जो श्रोता इस वक्त आपसे आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे
0: हैं, सुंदर महिलाएं बैठी
1: हैं सामने, जो खूबसूरत महिलाएं बैठी हैं, उन सबसे हम अनुरोध करते हैं कि और मैं भी ये किताब जरूर पढ़ूंगी और इसका इसके बारे में आपसे विचार विमर्श भी करूंगी, जिस किताब को पढ़ने के बाद क्या महसूस हुआ। अब एक गाना जो आप सुनना चाहती थी, आपने कहा कि मैं पुराने दौर में लौटना चाहती हूँ क्योंकि विविध भारती में लोग पुराने गानों को पसंद करते हैं, तो आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा दें, फिल्म ताजमहल से।
0: अरे बिल्कुल, ये तो मेरा पहला रोमांस था। करिए करिए
1: जी, सुनते हैं।

0: बताइए
1: तो ऐसा हुआ
0: जी
1: कि देखिए, उस जमाने में आप तो कह नहीं सकते थे ना माँ बाप से कि हमें कुछ हो रहा है। तो गर्मियों की छुट्टियों में
0: जी
1: एक हमारे दूर के रिश्तेदार, रिश्तेदार भी ना कहें कम्युनिटी के कुछ, तो बड़े हैंडसम से थे, सफेद चिकन का कुर्ता पजामा पहन के आए और बहुत अच्छा गाते थे।
0: जी जी
1: और मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए गाया हो।
0: अच्छा
1: अच्छा, जो कुछ भी था उसके बाद सारी दोस्ती विविध भारती ने निभाई। यानी कि जब कोई खतों किताबत ना हो सके और ये गाना आपकी भावनाओं को मतलब कहीं ना कहीं आपको सहारा दे,
0: जी
1: तो क्या होता है उसी वक्त आप चिट्ठी लिखने बैठ जाते हैं
0: हाँ
1: और आपके आंसू टपक रहे हैं और आप चाहते हैं टपके
0: बिल्कुल
1: ताकि अगले वाले को पता पड़े कि हम कितने रो रहे हैं। पर ये गाना वाकई में, मुझे पता नहीं भगवान वो जिंदा हो जहां भी है, पर वो एक वो जो जवानी में जो म्यूजिक जो काम करता था वो
0: जी
1: भी
0: जी
1: विविध भारती का,
0: जी बिल्कुल
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी में तो क्लासिकल और ये सब कुछ चलते थे। तो आप लोगों का बहुत सहयोग है कि आपने हमें उस आयु को जीने का
0: मौका
1: एक
0: दिया
1: मौका दिया
0: बिल्कुल
1: और हमारी भावनाओं को समझा।
0: समझा बिल्कुल
1: हर गाना लगता था जैसे आप हमारे लिए बजा
0: बजा रहे हैं बिल्कुल सही कहा इला जी। हमारे श्रोता भी लगातार सुबह से लेकर रात तक विविध भारती सुनते हैं और इस वक्त भी आपको देख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इला अरुण जी का हार्दिक स्वागत है, साथ ही विविध भारती परिवार के साथ विविध भारती के स्थापना दिवस की भी हम हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष बधाई दे रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इला जी भी ओल्ड इज गोल्ड है, जियो हजारों साल, हम श्रोताओं की लख लख दुआएं हैं इला जी के नाम भी और विविध भारती को भी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि इला अरुण जी इज ऑफ माई फेवरेट गायिका, बेस्ट ऑफ इंडिया रेडियो चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जहां पर आज इला जी पधारी हैं और इला मैडम का हम स्वागत करते हैं। और लिख रही है कि आज मंदाकिनी जी और इला जी को विविध भारती के स्टूडियो में साथ देखकर बहुत ही आनंद की जो हमें प्राप्ति हो रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है।
1: मुझे भी आनंद आ रहा है आपको देख के। आप तो मुझे साधना की याद दिला दी, साधना कट।
0: अरे
1: और 70s में जो आप लोग तैयार हुए हैं ना, वो कमाल है। किसी ने, दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी ने पोलका डॉट पहना है, किसी ने सीक्वेंस पहना है, किसी ने, सब चमकीले बढ़िया भड़कीले लग रहे हैं और पुरानी तारिकाओं की याद दिला रहे हैं
0: जी। और ये सब आपके लिए है, हम सब आपके लिए तैयार हुए हैं और विविध भारती
1: हमारा काम है, ये काम, ये महिलाओं का काम क्या है, हर उत्सव को मनाना
0: जी। तो इला जी आज हम उत्सव मना रहे हैं विविध भारती के स्थापना दिवस के रूप में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके गले में जो राजस्थान की मिट्टी है, आपके गाए गीतों में जो आपकी आवाज में एक अलग ही धमाल है, जैसे कि रेशम का हा, ये जो आप करती हैं, ये है क्या? हुल्लड़, एक ठसक, एक देसी अंदाज, ये क्या है? मतलब आपने इस अंदाज को कैसे बनाए, कुदरती था आपके अंदर या आपने इस अदा को कहीं से संवारा? क्योंकि हमारे श्रोता आपकी इस अदा के कायल हैं और हम भी कायल हैं।
1: मैं इसमें राजस्थान की शुक्रगुजार हूँ। वो जो बेझिझक पना है, जो उनमें, जो उनका फड़त का लहंगा और उनके चूड़े और उनके उनकी आवाजें और उनका निसंकोच होकर के गाना, ये शायद कहीं कानों में पड़ता रहा। हमारी माँ तो हमेशा ये कहती थी, तुम हर वक्त मत गाया करो, अगर उनका बस चलता तो मैं आज यहाँ होती नहीं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक एप्रिसिएशन की एक कान दिए थे और कहीं ना कहीं मैं उनको जैसे गेहूं वाली हैं, जैसे कोई भी वहाँ भीख जो है वो मांगता नहीं है, वो भी कलाकार ही होता
0: जी,
1: है
0: बिल्कुल, वो उनमें भी ही।
1: और उनमें हमें क्या फर्क है, हम परफॉर्मेंस करते हैं, पैसे लेते हैं, वो उनके पास स्टेज नहीं, तो वो सड़क पे आते हैं, गाते हैं, उनकी जो धुने हैं, उनकी जो मस्ती है, वो कहीं ना कहीं मैं राजस्थान कि को इस मामले में मानती हूँ कि राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और ये खराश या जो कुछ भी है, मुझे ईश्वर ने अगर गला ऐसा दिया होगा, जो कि मम्मी कहती थी कि क्या तुम्हारी भारी आवाज है, बट

0: यही आवाज आपके लिए वरदान बन गई
1: जी। जो कई कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने उसे प्यार किया, या उस समय जिस समय पतली आवाजें हर जगह थी, या पार्श्व गायिकाएं या प्लेबैक सिंगर,
0: पतली आवाज को
1: उस समय कभी भी ऐसा नहीं था कि मोटी आवाजें आए। तो फिर हमारी रेशमा जी तो मेरी रोल मॉडल रही है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। फर्क इतना है कि वो सब एक गायक घरानों से थी, उनके कहीं ना कहीं उनके खानदानी सारंगी और सब था। मैंने एक्वायर किया है, मैंने उन लोगों को अपना एक, जिसको कहते हैं वो मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं, और मैंने उनसे कहीं ना कहीं फेस्टिवल से, उनके अंदाज से कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हुई। और फेस्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने चाहे पूरा भारतवर्ष देख लीजिए, राजस्थान नहीं है, कोई भी फेस्टिवल बिना संगीत के अधूरा है। और अगर आप फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे, आज मैं कह सकती हूँ कि मैं न केवल राजस्थानी बल्कि शादी जिनके घरों में होती है उनकी मैं एक महानायिका रह चुकी हूँ।
0: बिल्कुल,
1: अगर 5 फंक्शन होते हैं, एक इलार उनका जरूर होता था।
0: बिल्कुल,
1: तो वो हमेशा था कि वो ट्रेडिशनल, लोग चाहते थे कि कुछ ट्रेडिशन आए। तो हमें अपने जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए, और ट्रेडिशन ही है जो आज दोबारा फैशन में आ गए हैं।
0: और ये हमारी हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, जो कहीं नहीं जा
1: कहीं नहीं जाएगी।
0: और आपने कहा कि हर फेस्टिवल में आपका एक गाना जरूर होता है, एक गाना जो अब हम लेकर आए हैं आप ही की पसंद का, उसको सुनकर भी हमारे श्रोता जो है झूम उठेंगे। और मुझे लगता है खासतौर से महिलाएं आपके गानों को सुन सुनकर अपने घाघरे के जो स्टाइल है ना वो बदलती रही है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत आप ही की आवाज में।

बोली।

सारी चर्चा निकला घना मोर्चा, कोई प्रेस वाला कोई मोटा लाला, कोई संतरी जी कोई मंत्री जी, कोई या बोले कोई वाह बोले, मैंने उठे ले गया मैंने भटे ले गया, मैंने रुपया खिलायो मैंने बड़ा दमकायो, मैं फिर भी ना मानी।

0: वाह वाह, क्या घाघरा घुमाया आपने।
1: देखिए ऐसा है कि ये इसके पीछे की जो कहानी है ना वो गजब की है
0: जी।
1: एक छोटी सी कहानी है, एक लड़की है वो गांव में खड़ी है और खीरा खा रही ककड़ी
0: जी।
1: उतरे मिनिस्टर का लड़का था और वो आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसको लकड़ी मार देती है। वो कहता है कि देखो भाई मैं मिनिस्टर का लड़का हूँ, तुम नहीं जानती हो। वो कहते होगी। बात यहाँ से बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो लड़की स्वाभिमानी है, वो कहती है ये मेरा वस्त्र नहीं है, ये मेरा शस्त्र है। अगर मैंने 20 मीटर का घाघरा घुमाया तो जैसे कि रेगिस्तान में आंधी आती तुम सब उड़ जाओगे।
0: अरे वाह।
1: उसके बाद प्रेस आती है, उसके बाद पूरी जर्नी है। उसके बाद कोई आया मोटा लाला, प्रेस लाला, सीटी सर सर बजाती, पुलिस दौड़ी चली आई, कंगन मारा उतारा, हथकड़िया पहनाई थानेदार के आगे। फिर मैं मुस्काई, मैंने दियो धच को, उन्हें खायो लच को, थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ी मेढ़ी हुई, मारी कमर को मैंने जरा सी लचकाई। तो अपना जो उसका
0: एक
1: दूसरा, एक तरफ तो स्वाभिमान है, दूसरा जानती आदमी को कहां मैं गिरा सकती हूँ, ल्योर कैसे कर सकती हूँ। और एंड में फूलन देवी की तरह से होता है, इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ले बना। सो दिस इज नॉट पॉलिटिकल, इट इज अबाउट विमेन। औरत को कमजोर मत समझना।
0: बहुत
1: तो ये गाना उस पे था, इसकी रिदम अच्छी है। ये पहली बार राजस्थानी में रैप, या
0: सबसे बड़ी बात,
1: नहीं लड़की में ऐसी, नहीं लड़की में वैसी, हमारे सामने तू क्यों अकड़ी, क्यों तू क्यों झगड़ी, ये सारा कुछ जो है 7.5 मिनट का रैप मैंने लिखा है।
0: ये राजस्थान का पहला रैप,
1: पहला रैप
0: जो इलाजी की आवाज में है। श्रोताओं आप इस वक्त इलाजी से रूबरू हैं और हम आप सभी श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि अपने संदेश हम तक पहुंचाएं। इलाजी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कम शब्दों में अपनी बात रखें, इलाजी से हम जरूर वो सवाल पूछेंगे और वो उसका उत्तर देंगी। तो चूंकि बात चल रही थी आपके लोक गीतों की, अभी इन दिनों एक बहुत खूबसूरत लोकगीत आपका बहुत चर्चा में है, चरखा
1: जी।
0: जिसका जिक्र आप भी करना चाहती थी। तो ये गीत जो चरखा है, अगर सोशल मीडिया में जाएं तो लाखों फॉलोवर इसको,
1: 1 करोड़ हो चुका है,
0: 1 करोड़ हो चुका है,
1: 10 मिलियन।
0: क्या है इस चरखा लोकगीत में जो आपके दिल के इतना करीब है? और आपने मुझे कई बार कहा कि चरखा लोकगीत पर हम जरूर बात करने वाले हैं और अपने श्रोताओं को सुनाएंगे।
1: इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं सारी स्त्रियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि खुल के सामने आई, चाहे वो पुलिस की हो। आप शॉक्ड रह जाएंगे, वो शायद इंदौर था या बंगलोर था, वो सिक्योरिटी की लेडी थी और अपनी ड्रेस में थी, उनको अलाउड नहीं था कि वो सेलिब्रिटी से बात करें। उसने कहा मैडम आप मेरी रील देखिए, मैं जब घर जाती हूँ तो मैं नारी हो जाती हूँ। ये चरखा है वैसे 400 साल पुराना है
0: जी।
1: इसे आदिवासियों ने भी गाया है, पर जब मेरे सन इन लॉ ध्रुव घानी करने इसको, क्योंकि देखिए लोक संगीत को अगर जिंदा रखना है तो उसको हमें एक नया पैकेज लाना पड़ेगा, वरना वो क्या होगा, चौपाल जैसे हम करते थे
0: जी, जी।
1: कि ये तो किसानों का नहीं है। जो ताकत लोक संगीत में, हर म्यूजिक डायरेक्टर लोक संगीत को ही चुरा रहा है क्योंकि वो धुने, वो आवाज। तो ये जो चरखा मैंने जब दोबारा गाया तब यंगर जनरेशन को समझ में आया कि लोक संगीत क्या है। मैं तो चरखे से वैसे भी, चाहे कबीर ने चरखा कहा हो, चाहे वो हमारे सूफी गानों में आया हो, पर ये चरखा औरत की बात करता है कि औरत जब सूत काटती थी, गांधी जी का चरखा तो
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: पर ये औरत का वो चरखा है कि पहले वो अपना धागा बुनती थी, उसके बाद वो उससे अपना वस्त्र बनाती थी। और वो कहती है कि चरखे की कमाई से मैं ननदल ने परणाई, चरखी एक जो
0: को मैंने ब्याह
1: किया है
0: इसकी कमाई,
1: ये
0: यानी एक औरत की कमाई,
1: कमाई जो है वो ये। हमारे यहाँ जोधपुर की भी एक आपकी अनाउंसर है जो मुझे मिली थी और मैं चाहूंगी कि वो जहाँ भी बैठी इस गाने पे डांस करें, क्योंकि चाहे वो जोधपुर है, चाहे बीकानेर, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई सा भी हिस्सा है, चरखे ने जो दोबारा एक
0: क्रांति
1: लाई है और औरत को जो एक फ्रीडम दी है, यानी जिन पोशाकों में उन्होंने डांस किया है वो कॉम्बिनेशन तो मुझे भी नहीं पता थी
0: जी,
1: कि क्या पर्पल के साथ चटनी ग्रीन हो सकता है, क्या कत्थे रंग के साथ बैंगनी आ सकता है, ऐसे ऐसे बेस पहन के ट्रेडिशनल चूड़े, ये सब चीजें जो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ वो पहन के औरतें आई। तो आप ये चरखा गाना मेरी तरफ से मेरे श्रोताओं को 70वीं वर्षगांठ विविध भारती पे मैं भेंट करना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल हम सुनवाने वाले हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप ध्रुव का नाम ले रही है इस संगीत से, लोक संगीत के साथ, तो ध्रुव ने किस तरह से लोक संगीत की जड़ों को समकालीन संगीत के साथ जोड़ा, आप क्या सोच रही हैं?
1: अब उनके जीवन में एक पुरातन आ चुकी थी इलारून, जो कि उनकी मदर इन लॉ हैं और वो वर्ल्ड म्यूजिक करते हैं, मैंने उनके साथ एक जो आजकल नया ट्रेंड चला है कोक स्टूडियो में निमरी निमोली भी मैंने गाया है. ही इज वेरी गुड क्योंकि वो खुद भी गायक भी हैं तो वो गाने की ताकत को समझते हैं और ये भी समझते हैं हमें कहाँ तक पहुंचाना है. इंटरनेशनली हमारी ऑडियंस तो इंटरनेशनल भी है तो वो जो उन्होंने भरा है ना और उसकी चरखे की मादकता को रखते हुए जो इसका ग्रूव बना है
0: जी
1: ग्रूव इसकी ताकत है. मतलब अगर ध्रुव मेरी ताकत है तो ग्रूव इस गाने की ताकत है.
0: जी जब ध्रुव की बात चली है तो ये गीत तो हम आपको सुनवाएंगे. हम लगे हाथों आपकी बेटी इशिता जी की भी बात कर लेते हैं.
1: जी
0: ध्रुव और इशिता की बात इस वक्त हम कर रहे हैं. वो भी कला और अभिनय की दुनिया से जुड़ी हुई है.
1: जी वो गाती भी बहुत अच्छा है पर पता नहीं क्यों नहीं पब्लिकली गा रही है पर गाती भी बहुत अच्छा है.
0: तो क्या कभी ऐसा हुआ इला जी की पुरानी कला और नई कला के बीच में या जो बदलते तौर तरीके हैं युवा पीढ़ी की ओर से उस सोच को लेकर कभी आप दोनों में कोई टकराहट हुई?
1: किस वक्त नहीं हुई, हर वक्त टकराहट होती है क्योंकि वो ट्रेडिशनल में वो तो उन्होंने देखा है कि मैं मेरी माँ को पुणे जी रही हूँ पर वो महाराष्ट्र में रही हैं और मराठी तो आपने देखा फरफट बोलती हैं वो तो बहुत ज्यादा बिंदास भी हैं, ह्यूमर भी अच्छा है पर मैं उनसे बराबर ये बात कहती हूँ कि मैं पुराने को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती हूँ. पुराने ने जो दिया वही हमारी ताकत है. टकराहट होती है पर वो वाद विवाद अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं इतनी भी ना मैं अपने अंधकूप में घुस जाऊं कि मैं कहूं नहीं हम ही अच्छे हैं. तो ये जो समन्वय है ये नए और पुराने का, इशिता का मतलब ही है गॉड गिफ्टेड पावर विच कैन अट्रैक्ट एनीबॉडी, ईश्वर प्रदत्त शक्ति जो सबका मन मोह ले. तो मुझे लगता है कि टकराहट के साथ भी कहते हैं ना पहला नाद आया था टकराहट से, तो मेरी जीवन का नाद है, नाद स्वर है और ये टकराहट मुझे पसंद है.
0: जी और ये टकराहट होनी चाहिए,
1: होनी चाहिए,
0: हेल्दी टकराहट.
1: ना वो दबी रहे ना मैं दबी रहूं और इससे कुछ अच्छा निकल के आए तो अच्छी बात है.
0: चलिए तो पहले चरखा लोकगीत सुन लेते हैं.
1: जी
0: चूंकि बात ध्रुव और इशिता की हमने की तो आप अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं भूल सकती है. आपने बातचीत करते समय उनका जिक्र किया था,
1: उनका एक गाना बाद में सुनाइएगा
0: और उस पर आपके विचार भी लेंगे कि किस तरह से आप गीतों को जीती है.
1: जी
0: तो अभी एक चरखा लोकगीत सुनते हैं
1: जरूर.

0: मुझे ये कहना है केक तो बड़ा अच्छा है
1: जी,
0: लोग पता नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ जो 70 साल मन रहे हैं
1: जी,
0: यानी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, कोई अनाउंसर है, कोई स्टेशन डायरेक्टर है, सब डांस कर रहे हैं इस पे, वैसे ही जैसे राजस्थान में चरखी पे डांस होता है। पर यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं जितने भी शोज बाहर भी मैंने किए और यहाँ भी किए हैं, मैं लंगा और मांगणियार
1: जी,
0: ये जो हमारी कम्युनिटी है, ये जो आपने आलाप सुनी होगी,
1: बिल्कुल,
0: तो जब ये पहली बार रिकॉर्ड कराए ना, तो मैं तो इनके बाप दादों के साथ कर चुकी हूँ। तो जब एक लड़का आया, उसको मैंने कहा, उसने कौन सा गाना है, अरे मैंने कही तो तुम्हारा ही गाना है, तुम्हारे दादाजी गाते थे
1: जी।
0: तो देखिए मैं उनके गाने को प्यार कर रही हूँ, और वो लोग जो हैं, वो लोग सब कुछ आज के पॉप पॉप बनना चाहते हैं, सनग्लासेस लगाना चाहते हैं, जर्सी पहनना चाहते हैं, और मैं चूड़े पहनना चाहती हूँ, मैं टैटू कराना चाहती हूँ, चाहती नहीं हूँ, ये फैशन नहीं है,
1: नहीं ये आपके अंदर है।

0: मैंने मुझे अगर मैं ना पहनू सॉरी बच गए होंगे ये तो मैं उतारने वाली थी पर मैंने आज क्यों नहीं उतारे। हर स्टूडियो में मेरा झुमका छूट जाता है क्योंकि वो टन टन करता है। फिर वो स्टूडियो की इंजीनियर जैसे अभी आई थी उन्होंने कहा आपका कुछ बज रहा है तो मैंने कहा ठीक है पर उतारूंगी नहीं। हर बार उतारती हूँ वो वहीं रह जाता है।
1: बहुत अच्छी बात लेकिन आज आपको नहीं उतारना है। और पता है अभी जब सभी लोग डांस करने लगे थे तो लगा कि हम जैसलमेर आ गए हैं, रेगिस्तान के धुरों में आ गए हैं। आपने विविध भारती के स्टूडियो को एक तरह से रेगिस्तान के धुरों में तब्दील कर दिया।
0: मुझे बहुत मजा आया एक्चुअली उन्होंने मुझे जोश दिलाया।
1: जी तो हमारे श्रोता भी कह रहे हैं कि आज एला जी को लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में दूरदर्शन पर इनके गाने बहुत देखने सुनने को मिलते थे। और लिखते हैं कि आप भी एक गीत गाकर हमें बताइए क्योंकि हम आपको सामने से गाता हुआ देखना चाहते हैं। तो एक गीत आपसे हम गवाएंगे लेकिन चूंकि
0: ये मत करिएगा क्योंकि क्या है कि ये जो उम्र का एक वफा गुजर गया तो उसके बाद मैं अब गाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कहे अब आप गाइए ही मती अब आप बंद कर दीजिए।
1: नहीं नहीं हमारी श्रोता बिल्कुल आप सुनेंगे और एक ही लाइन आपसे सुनेंगे लेकिन अभी नहीं।
0: हाँ अभी मुझे थोड़ा रेस्ट दीजिए क्योंकि कल ही मुझे डॉक्टर ने कहा था कि देखिए आपको कुछ दिन का क्योंकि परसों मैंने एक नाटक किया था लाइव है ना तो सच बोलना चाहिए तो मैंने बहुत जोर का बोला तो उन्होंने कहा कि आपने थोड़ा उसको डैमेज किया या तो आप थोड़ा वॉइस रेस्ट लीजिएगा और कुछ नली दी मुझे ऊं करके पानी में करना है वो सब हुआ। दूसरा मैं गांधारी का रोल बहुत अच्छा करती हूँ तो जब मैं श्राप देती हूँ ना तो कृष्ण जी अगर होते उससे मेरी आवाज श्राप से जाती रही तो कोई बात नहीं देखते हैं आगे क्या होता है।
1: बिल्कुल हमारे पास वक्त कम है और हमारे श्रोता बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपके पति पर हम बात करते हैं आपके जो अधिकारी नेवी अधिकारी रहे अरुण जी उनकी जिंदगी जो है समुद्र और सफर से जुड़ी रही हमेशा और आपकी दुनिया गीत संगीत की मिठास से लगातार जुड़ी रही। तो कभी ऐसा हुआ कि समुद्री सफर में और आपके सुरों के सफर में कभी टकराव हुआ हो भूचाल आ गया हो या फिर किस तरह का योगदान आपके अरुण जी का आपके जीवन में रहा?
0: अरुण जी मैं बताऊं जैसे कि जहाज पे लंगर कहते हैं ना एंकर एंकर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है नहीं तो जहाज हिलने लगता है।
1: जी बिल्कुल
0: अरुण जी मेरी जिंदगी के बहुत ही सशक्त एंकर रहे हैं। ही हैज ऑलवेज एडमायर्ड और एक आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्पेस की और उन्होंने मुझे ये स्पेस दी। अगर आप खुला छोड़ेंगे तो जैसे मम्मी कहती थी कि जैसे जहाज को पंछी पुनः जहाज पर वापस आए वो हाल है। उन्होंने मुझे उड़ने दिया और मैं कभी भी इस बात को भूलूंगी नहीं। सो दैट्स अ वेरी गुड एडजस्टमेंट। वो आर्टिस्ट नहीं पर आर्टिस्ट की कद्र करते हैं जैसे मैं अपना उठती हूँ मेकअप होता है ये करते हैं ही ऑलवेज एडमायर्स और हो सकता है अभी सुन रहे हो तो शायद अरुण का मतलब अगर मुझे करेक्ट करिए जैसे सूर्य पृथ्वी का होता है पृथ्वी उसकी धुरी पे पृथ्वी की धुरी पे सूर्य घूमता रहता है तो वो ही हमारा संबंध है। और मैंने अरुण जी के साथ तीन चार वॉयज भी किए मतलब मैं 35-35, 40-40 दिन उन दिनों में जब मैं बहुत यंग थी तो मैंने दुनिया के तीन चार चक्कर काटे हैं।
1: आप अभी भी उतनी ही यंग हैं
0: तो वो जो अकेलापन होता है ना वो आपको और मौसिकी आपके अंदर की कवित्री जगती है आपके अंदर के सुर जगते हैं। बट ही हैज बीन नेवर हर्डल ये तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हर औरत को जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो उसको उसके लिए थोड़ी सी स्पेस दे।
1: जी जी
0: क्योंकि औरत जो है ना वो खिलती है
1: जी।
0: अगर आपको वो हर मिनट क्वेश्चन करते रहेंगे आप सब भी आ रहे हैं काम पे आ रहे हैं तो फिर बात बिगड़ जाती है
1: जी।
0: या हो सकता है अगर कलाकार से शादी की होती कहीं हमारा ईगो ही ना टकरा जाता तो अच्छा है मतलब सब कुछ ठीक है। हाँ श्रोता हूँ मेरी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है
1: बिल्कुल आपकी जिंदगी में बिल्कुल सही चल रहा है और चूंकि आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है आपने अभी अपनी बेटी और दामाद को लेकर बात की अभी हमने अरुण जी के बारे में बात की और आप हमसे जब फोन पर बात कर रही थी तो बार बार अपनी ग्रैंड डॉटर की बात कर रही थी कि उन्हें नए गाने बहुत पसंद है। आपने कहा टंटन तारा और इससे के गाने
0: अरे मैं इसका जो किए बता रही हूँ उनका नाम है एक का नाम है अमाला एक का नाम है अलाया। अमाला जब पैदा हुई थी ना तो ये गाना कोई मान नहीं सकता कि इलारू बजाएगी यानी इतना बड़ा उनका खोपड़ा था और उस समय उनके बाल नहीं थे। दिल ने मारी टंक मारी टन टन टन टन तो वो मुझे अभी तक याद है। पर दोनों बच्चे उनके क्योंकि पिताजी म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं दोनों पियानो बजाते हैं दोनों गाते हैं। अब मेरी ये कोशिश

0: होते थे और उसमें हम प्रेम करने लग जाते थे। लेकिन आजकल तो टन टना टन टन टन तारा करते हुए हम गर्दन हिलाते हैं और हमें नायक या नायिका से प्रेम हो जाता है।
1: शब्द और लिरिक्स रहे नहीं है ना।
0: जी जी, तो आप इस पर भी चाहती थी कि मैं कुछ कहना चाहूंगी कि कितना अंतर आ गया इन गीतों में। एक जमाने में महान गीतकार किस तरह की गीतों को रचा करते थे और आज थोड़ा
1: क्योंकि उसके पीछे की जो टीम होती थी, जहाँ इंदिवर जी लिख रहे हो, आनंद बख्शी लिख रहे हो, नीरज जी लिख रहे हो, और उस समय की हमारी सोशल वैल्यू भी ऐसा था कि कलम से और हारमोनियम तक पहुंचने का जो एक वो था, जर्नी थी, वो बहुत ही भावनात्मक स्तर थी। समाज ही बदल गया ना, कहते हैं समाज साहित्य का दर्पण है।
0: बिल्कुल।
1: तो अभी जब सारे लोग इस पे डिस्को पे डांस कर रहे हैं तो वो धुने हैं। और मैं चाहूंगी कि एक गाना आप जरूर सुनाएं कि वो है मैं ना पहनूं थारी चुनरी, जो मैंने लिखा है और उन कुंवारी लड़कियों के लिए लिखा है जो अपने घर से विदा होती हैं। मारे बाबू सा ने चुनरी रंगाई, मारो जियो उस चुनरी में जाए। मैं ना पहनूं थारी चुनरी, जो चुनर तुम लाए हो वो नहीं पहनूंगी, मैं बाबू सा की चुनरी पहनूंगी।
0: तो
1: मैं अभी तक पुराने शब्दों को लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर उल जुलूल शब्दों में भी कुछ तो है। किसी को कमेंट करने की स्थिति में नहीं है, जो चल रहा है उसे चलने दो और जीवन को जियो, यही मेरा कहना है।
0: तो अभी आपकी ग्रैंड डॉटर की पसंद का गीत
1: टन टन
0: टन टन टन
1: ठीक है।

0: मेरी आंखों के आगे ना उनका बिना बालों का सर याद आ रहा है। वो तो लिटरली कार में मारती थी।
1: जी जी,
0: टन टन टन।
1: दिल में घंटी तो हमारी बजी चुकी है और आपने तो कहा कि आपकी घंटी दिल में बहुत बार बजी थी।
0: क्या करूं, कलाकार ऐसे होते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और राजस्थान लोग की बात करते समय दो राजस्थानी महिलाएं, अरे विविध भारती के स्टूडियो में अगर आज है तो इससे बेहतर और क्या होगा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही बिंदास हैं इला जी और बहुत अच्छा लग रहा है उनका ये बिंदास रूप देखकर, आज तो बड़ा सुंदर समा बंध गया है।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: तो इला जी, जब बात चल रही थी कि दिल में घंटी कब बजती है आपसे, जब हम पर्दे के पीछे बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, तो आपने कहा था कि प्रेम और जवानी इस विषय पर हम जरूर बात करने वाले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मैं भी, कि लापसिंह ठक्कर का एक नाटक किया था मैंने, पीला गुलाब और मैं। उसमें नायिका कहती है कि जब मैं अपने डायलॉग्स बोलती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो अपने पति से कहती है कि वही डायलॉग जब मैं रात को तुम्हारे साथ बोलती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे वो असल का एहसास क्यों नहीं होता कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी उधेड़बुन में लगभग पगलाई सी हो जाती है कि ये क्या है, सच्चाई क्या है। तो अपने पति से सवाल करती है कि क्या सच है, मतलब मैं नाटक के डायलॉग बोल रही हूँ या सचमुच मैं तुम्हें
0: रियल एंड रियल।
1: तो आपके जीवन में आपने पर्दे के पीछे प्रेम के कितने ही रंग जिए होंगे और आपकी आवाज में भी जो मोहब्बत का एक पैगाम लोगों को तो पहुंचता है, महिलाओं तक पहुंचता है। एक कलाकार जब जिंदगी भर प्रेम का अभिनय करता है, प्रेम भरे गीत गाता है, तो क्या सचमुच वो प्रेम को महसूस करता है या उनके अपने जीवन में प्रेम उसे एक रटा रटाया वाक्य सा लगता है या रटा रटाया सा भाव लगने लगता है, आप क्या सोचती हैं?
0: ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। पर सवाल है कि हम नाटक में ही कहते हैं कि जब भी अपनी लाइनें कहो

0: तो ये मत सोचो कि तुमने पहले कही है।
1: जी, जी
0: अगर पहले रटा रटाया करेंगे ना तो वहां भी एक स्टैग्नेशन, एक आपका मतलब वो फीलिंग होगी नहीं। हम जब कोई नाटक करते हैं, खास तौर से मैं, तो उस पल को मैं जीती हूँ। वो हर पल नया होता है, चाहे नाटक का 200
1: एपिसोड
0: नाटक किया जा चुका हो, पर ये बात वास्तविकता में आप कहेंगे कि क्या यही डायलॉग, क्या मैं कहूंगी अपने आप बताइए कि मैं घर से निकलूंगी, लो मेरे लाल गुलाब मैं निकल रही। धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ जब जिंदगी शुरू की जाती है तब वो रोमांस होता है, सभी की जिंदगी में हुआ होगा, मेरा भी हुआ होगा। फिर धीरे धीरे जीवन सामने आता है और जीवन में जितना एडजस्टमेंट हम करते हैं वो हमारा रोमांस है। आई कैन नॉट बी ड्रामेटिक विद माई हस्बैंड। अगर वो ये सोचे कि वहां ये कह रही थी, यहाँ ये कह रही है कि वो गैस वाले का बिल नहीं आया, तो उसमें भी कंसर्न है ना। तो वो जितना रियाज करेंगे आप भावनाओं का, और वो कहीं ना कहीं आपके जेस्चर्स बोलने लगते हैं, डायलॉग नहीं होता है, जेस्चर्स आपके बोलते हैं कि आपका कंसर्न क्या है, जो भावनाएं क्या है। तो बड़ा डिफिकल्ट है। और एक मैंने पहले भी अपने हस्बैंड को कहा था और सबसे कहती हूँ कि कलाकार दरअसल एबनॉर्मल होता है। उसको आप थोड़ा तो सोच लें कि आम व्यक्ति जैसी नहीं है ये, थोड़ा अगर उसका
1: टेढ़ा होता है,
0: टेढ़ा होता है, वो सच्चा भी होता है।
1: जी, बिल्कुल।
0: वो कल्पना में भी होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और उसकी सच्चाई कभी कभी उससे टकरा भी सकती है। एवरीथिंग इज गुड विद मी, नो
1: जी,
0: ये सही नहीं,
1: उसको मैनेज करना,
0: उसको मैनेज करना
1: और
0: पड़ता है।
1: जी बहुत हम समय को भी अब मैनेज कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल के बाद एक लाइन आपको हमारे श्रोताओं को गाके सुनानी है, रेशम का रुमाल पर। अनु मलिक साहब हमारे जाने माने,
0: नहीं उनको मत आने दीजिए, उन्होंने गाना गवाया था दरवाजा खुला छोड़ा है नींद के मारे, मैं पूरे होश में हूँ, मैं आज दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छा नहीं, ये गाना मैं सुना नहीं सकूंगी।
1: अनु मलिक जी आने वाले हैं, उनके साथ बिताए पल आप याद करेंगी जब अभी आप उनसे मिलेंगी
0: जी।
1: तो दो शब्द अनु मलिक जी के लिए कहिए और फिर रेशम का रुमाल की एक लाइन गाते हुए आप इस।
0: दरअसल मेरा, मैंने जैसे कहा, गला बहुत खराब है, पर आप कहेंगे तो मैं गाने की कोशिश करूंगी, और क्योंकि मुझे वाकई में प्रॉब्लम है। अनु मलिक जी के साथ पहली फिल्म मैंने करी थी जाल, और वो शायद आज कह भी सकते हैं कि पहला ब्रेक उन्होंने कमर्शियल फिल्म में दिया। वैसे जगजीत सिंह जी के साथ मैंने आशियाना की थी, तो वो बड़े अच्छे, इज ए नेचुरल पर्सन, मतलब वो भी हुड़क में रहते हैं और उस हुड़क में हमारा समय समाप्त हो गया शायद।
1: तो रेशम का रुमाल की एक लाइन हो जाए,
0: आप गाना सुना दीजिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: चलिए,
0: रेशम का रुमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ।

नमस्ते दोस्तों, हमारे दरवाजे पे बहुत सारे कलाकार अनु मलिक साहब भी आ गए हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग अंदर आ गए हैं। आज का ये मैटिनी शो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का साथ बना रहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मैटिनी शो से अब अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान यह बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा

0: किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, जाने माने संगीतकार अनु मलिक के साथ लाइव कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। विविध भारती के स्टूडियो से लाइव है मेरे साथ अनु मलिक। 70वें वर्ष में विविध भारती प्रवेश कर रही है और इस समय अनु मलिक हैं विविध भारती के स्टूडियो में बिल्कुल लाइव। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई।
1: अनु जी, आपसे बातें करने के पहले जरा एक बार आपका एक प्रोफाइल प्ले कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो कौन से अनमोल गाने हैं जो आपके इस सफर में आपने हमें दिए हैं और विविध भारती से पिछले कई सालों से बजते रहे हैं। उन्होंने बनाए हैं कुछ बेमिसाल गाने।

0: अनु जी, इतने सारे गाने और ये सारे एक से बढ़ के हिट हैं और विविध भारती जो है वो इस समय विविध भारती का ये कार्यक्रम दुनिया के कोने कोने में सुना जा रहा है। न जाने कितने देश हमें सुन रहे हैं और जिस तरह की हमने पब्लिसिटी की थी कि आप विविध भारती पर आ रहे हैं। विविध भारती देश का सबसे पुराना एंटरटेनमेंट रेडियो चैनल है और 70वें साल में प्रवेश कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे और रेडियो से क्या नाता रहा है आपका?
1: देखिए, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं
0: जी
1: कि विविध भारती ने मुझे याद किया। विविध भारती एक ऐसा शब्द है जो हमारे नस नस में, रग रग में है
0: जी।
1: अब आप पूछेंगे ये कैसे? मैं उनका बेटा हूं जिनका नाम है सरदार मलिक साहब,
0: मशहूर संगीतकार सरदार मलिक,
1: जिन्होंने कमाल कमाल के गाने बनाए। बचपन से ही मुझे उनसे सुनने को मिलता था। और ये कहा उन्होंने कि जब भी विविध भारती ने याद किया है मैं वहां गया हूं और आगे चलकर तो कितना भी नाम कमा ले, याद रखना ये वो जगह है विविध भारती जहां ऐसे ऐसे संगीतकार आके अपनी कहानियां सुना के गए हैं, ऐसा कमाल का काम किया है, उन्हें कभी नाम मत कहना।
0: वाह,
1: आज मैं यहां बैठा हूं तो एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, मेरा 100 बार ये दिल से एक आवाज निकल रही है कि आप कितनी भी मेरी तारीफ करो, ये कहो कि आप आए हैं, अनु जी आए हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूं और कहता हूं कि थैंक यू, आपने मुझे यहां बुलाया।
0: क्या बात है,
1: आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को एक अंदाजा होने लगेगा मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी जान तोड़। आप जो गाने सुना रहे थे मैं अपनी यादों में चला गया
0: जी बिल्कुल,
1: और वो यादें हैं उन निर्माता की, ज्यादातर निर्देशक का नाम लेते हैं लेकिन निर्माता जो प्रोड्यूसर होता है
0: जी
1: कम लिया जाता है उनका नाम, वो निर्माता सब याद आते हैं। जब आपने रफी साहब का गाना सुनाया अभी, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, मेरी उम्र थी 16 साल
0: जी,
1: 16 साल जब मैंने ये गाना बनाया था
0: पूनम फिल्म के लिए
1: जी, और ये हरमेश मल्होत्रा साहब ने मुझे मौका दिया था। फिर आपने सभी गाने सुनाए और सभी मेरे निर्देशक निर्माता सब याद आए, मेरे गायक याद आए, मेरे लेखक याद आए जिन्होंने गाने लिखे हैं
0: हाँ जी,
1: मेरे साजिंदे याद आए।
0: बिल्कुल, क्या बात है, ये कितनी प्यारी बात है कि आप म्यूजिशियंस को भी याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि संगीत एक संगत का काम होता है यूनुस जी
0: जी,
1: आपको ये सब लोग सही मिल जाएं तो गाने बन जाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने पिताजी को याद किया। हम यहाँ ये दावा कर रहे हैं कि विविध भारती ने 70 बरस का अपना सफर पूरा किया
1: जी,
0: और इन 70 सालों में हमने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लेजेंड्स को रिकॉर्ड किया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेडियो चैनल है जिसके पास यादों का एक बहुत बड़ा खजाना है, और आपके लिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूं। ये तोहफा है पिताजी की आवाज। मुझे सौभाग्य रहा है कि मैं पिताजी से मिला हूं, विविध भारती में ही मिला हूं जब वो विविध भारती में आए थे, और आज मैं आपके लिए खास तौर पर पिताजी की याद, उनकी आवाज लेकर आया हूं। बरसों पहले की ये रिकॉर्डिंग, 1 मिनट का टुकड़ा मैं आपको सुनवाता हूं।

ये गाना के जिसने गाया वो भी उतना ही बड़ा आर्टिस्ट था। उन्होंने कहा, मलिक साहब मैंने बहुत अच्छे गाने गाए, लोगों ने पसंद भी बहुत किए, लेकिन हर एक ने कहा कहीं ना कहीं आप फीके पड़ते हैं। मैंने कहा अगर आप मेहनत करें, जी मैं करूंगा, तो आप 10 से लेकर 12 बजे तक मेरे पास रोजाना इस कुटिया में आकर बैठिए। 1 मंथ आप बिलीव करिए कि वो इंसान मेरे पास बैठा और हर वक्त ये पूछता था क्यों कोई कसर तो बाकी नहीं।

0: जी कैसा लगा पिताजी की आवाज सुन के?
1: मैं एक्चुअली भावुक हो गया हूं क्योंकि मैं ये गाना मेरी मां कहती हैं और तुम मां भी नहीं रही। मां कहती थी कि तू 4 साल का था जब मुकेश जी घर पर आया करते थे, तू डैडी की गोद में बैठता था।
0: अच्छा।
1: और रिहर्सल होती थी सारंग तेरी याद में, तो वो दिन ऐसे अब याद आ रहे हैं।
0: जी जी।
1: और जिस अंदाज से डैडी ने ये गाना बनाया और जो गाया है मुकेश जी ने, और मैं उनका भी तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने गाना लिखा, भरत व्यास साहब का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो अंबुवा का झूलना, वो पीपल से छाव, घूंघट में जब चांद था मेहनती लगी थी पांव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गांव। डैडी एक महान इंसान थे, भरत व्यास जी, मुकेश जी, और ये गाना आज ऐसा लगता है कल रिकॉर्ड किया गया है।
0: बिल्कुल।
1: इतनी ताजगी है इसकी इसकी तर्ज में कि वो कूट कूट कर मेरे अंदर भरी हुई है। जो को सीखा वहीं से आया है, और मैं अपने फादर को नमन करना चाहता हूँ और उनकी यादों में ही मैं रहता हूँ और आज भी काम करता हूँ। बल्कि मेरी जंग भी उनकी वजह से हुई।
0: जी।
1: जब उनको वो मुकाम नहीं मिला तो मैंने कहा मैं नाम कमाऊंगा डैडी आपके लिए।
0: बिल्कुल। और आपने वो करके दिखाया, और मुझे याद है कि जब मुलाकात मेरी हुई थी तो वो इतनी आपकी तारीफें करा करते थे और एक गर्व से भरे हुए थे कि मेरे बेटे ने वो मकाम हासिल किया जो जिंदगी ने मुझे मौका नहीं दिया हासिल करने का।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और चूंकि यादों की बात है तो वो गाना जो आपने इसलिए बनाया शायद ताकि जब भी कभी हम पुराने दौर को याद करें तो इस गाने को दोहराएं कि यादें याद रह जाती हैं।

0: अनु जी बिल्कुल जज्बाती मोड पर हम पहुंच गए, पिताजी को याद किया और
1: बिल्कुल
0: ये गाना आया सुभाष घई की फिल्म यादें। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरोज के गाने आपने बनाए। एक वो दौर था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक वो दौर था जब आपने अमिताभ बच्चन के लिए लगातार गाने बनाए, आगे भी बनाए, तो वो यादें बांटिए, यादें हैं।
1: देखिए ये मां सरस्वती की कृपा है। मैं बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट था
0: जी
1: ऐसे महान सुभाष जी के साथ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करना। उसकी जद्दोजहद बहुत हुई
0: जी,
1: आसान नहीं रहा, क्योंकि हमारे सामने बड़े जबरदस्त संगीतकार थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब
0: जी,
1: आर डी बर्मन साहब, कल्याण जी आनंद जी साहब, जो कमाल कमाल के गाने बना रहे थे। उनके सामने फिल्म मिलना भी बड़ा मुश्किल काम था
0: जी जी।
1: लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर गाने बनाने की एक चाह है
0: जी।
1: मैं गाना बनाता था, उसे कैसेट्स में रिकॉर्ड करता था, बाजा लेकर चल पड़ता था।
0: यस,
1: सुभाष घई साहब का म्यूजिक बड़ा कमाल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: उनकी हर फिल्म का म्यूजिक कमाल रहा है। तब जाके जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, अब ये जो गाना है नगमे हैं शिकवे हैं, इसमें आनंद बख्शी साहब बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बख्शी साहब ने कहा कि सुभाष जी सुनाओ ये लड़के ने क्या बनाया। मैंने जब ट्यून सुनाई उनको
0: जी,
1: मैंने ऐसे सुनाया।

0: अचानक वो रुक गए, बख्शी साहब कहते हैं अन्नू मुखड़ा यहीं खत्म हो रहा है। मैंने कहा कुछ और आ सकता है, मार्जिन ने भी ये कहा, मैंने और क्या लिखे है कि अचानक मैं समझ गया बख्शी साहब क्या चाहते हैं, वो लिखना और चाहते थे।
1: हाँ उसके आगे
0: तो मैंने आगे ऐसे ऐसे गाया डा डा डा डा डा डी डा डा डा डा डो डो डो डो डो डो डो। और उसके बाद जो तर्ज उनको इतनी पसंद आई, लिखने के बाद गाना वो सुभाष जी की तरफ देखते हैं आनंद बख्शी।
1: हाँ हाँ
0: बख्शी साहब बोलते हैं सुभाष ये तेरा लक्ष्मी है।
1: वाह वाह वाह क्या स्टेटमेंट है ये।
0: ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि ये कहना सुभाष जी को
1: हाँ
0: अन्नू तेरा लक्ष्मी है,
1: वाह वाह,
0: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बख्शी साहब बड़े बड़े उस वक्त भी संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे, जो लाजवाब काम कर रहे थे।
1: जी जी
0: उन्होंने कहा ये बैठे बैठाए मेरे सामने अगर इस लड़के ने डा डा डा डाडी डा डा डा डा। अब ये आप सवाल बहुत से लोग पूछते भी हैं, बहुत से लोग पूछते भी नहीं है, ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। इतने संगीतकार है दुनिया में
1: जी।
0: और गुनीजन है, गुनीजन मैं क्यों बोलता हूँ उनको, सीखे हुए लोग हैं।
1: हाँ जी
0: मैं एक नेचुरल म्यूजिशियन, मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज अ नेचुरल म्यूजिशियन। नेचुरल म्यूजिशियन वो होता है जो चीजें आमद होती, सरस्वती माँ की कृपा है।
1: जी जी
0: मैं बाजे पर बैठा हूं और बाजा बजा रहा हूं और ये नोट साक्षात अंदर आते हैं।
1: क्या बात है।
0: जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैंने बहुत इंटरव्यू में कहा, अब आप पूछेंगे अनु जी आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बात करते करते भी एक दिमाग में, एक सेक्शन ऑफ मेरे दिमाग में ट्यून चल रही है।
1: अच्छा
0: एक लय चल रही है। तो मैं कभी फुल, मैं ये कहूंगा कि एक तो मेरे फादर
1: जी,
0: एक तो बड़े बड़े महान संगीतकार जिनको मैं बहुत, मैं सभी संगीतकार ने बहुत अच्छा काम किया हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मैं दीवाना हूं शंकर जयकिशन का, आर डी बर्मन का। इसलिए दीवाना हूं मैं क्योंकि मैं समझता हूं कि शंकर जयकिशन आर डी बर्मन एक कंप्लीट लोग थे।
1: जी जी
0: उसके बाद फिर लक्ष्मीनाथ प्यारेलाल साहब, और उसके बाद आप गिनते जाइए, मदन मोहन जी के गाने सुन लीजिए,
1: वाह
0: सलील दा के सुन लीजिए, सचिन देव बर्मन की सुनिए, नौशाद साहब की सुनिए, क्या काम किया लोगों ने। अभी भी मुझे लगता है मुझे और मेहनत करनी है, और काम करना है। बल्कि आपको मैं न्यूज बताना चाहता हूं कि जब आपके 70th ईयर है ये
1: जी
0: भारती का,
1: जी
0: जनवरी 11 को 2027 में मैं 50 साल काम, आई विल बी कंप्लीटिंग 50 ईयर्स।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: 14 साल की उम्र में शुरू हुआ था, फिल्म थी 100 वाली 77।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: आपको याद होगा।
1: बिल्कुल
0: मैंने काम किया है लता जी के साथ, आशा जी के साथ,
1: रफी साहब के साथ,
0: किशोर दा के साथ और मोहम्मद रफी साहब के साथ, यहां तक कि मन्ना दा के साथ भी काम किया है, बस मुकेश जी के साथ नहीं किया। एक बेबाक लड़का 14 साल की उम्र में बाजा लेकर पहुंचता था सबके पास, बोलते मेरे पास तर्ज है सुनोगे, मेरे पास तर्ज है। कुछ लोग हंसते भी थे, कुछ लोग मजाक भी बनाते थे, लेकिन मैं हारा नहीं और आज भी मुझे लगता है कि मैं फिर से काम शुरू करने को तैयार हूं।
1: क्या बात है। रफी साहब से जुड़ी कोई याद?
0: बहुत सी यादें, खास करके इसी गाने की, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता। हुआ यूं कि मैंने उनको अप्रोच किया, हरमेश मल्होत्रा साहब ने कहा कि अन्नू रफी साहब से गवाते हैं।
1: हाँ जी।
0: मैं जाता हूं उनको मिलने के लिए, तो उनके ब्रदर इन लॉ थे जहीर भाई, उनको फोन किया, मैं रफी साहब से मिलना चाहता हूं। तो रफी साहब से उन्होंने बात की।
1: हाँ जी।
0: और कहा कि कौन है आप? मैं बस, मैंने इतना कहा मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं। तो वो बहुत खुश हो गए कि मलिक का बेटा मुझसे मिलना चाहता है। किस सिलसिले में? मैंने एक फिल्म साइन की है, आपसे गाना गवाना चाहता हूं।
1: हाँ
0: उन्होंने कहा कल सुबह 9 बजे मेरे घर पर आ जाना।
1: क्या बात है।
0: मैं पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात, और सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली कि मुझे रफी साहब को मिलने जा रहा था। मैं भूल गया वक्त, कितने बजे बुलाया था, मैं 6 बजे पहुंच गया।
1: अरे बाप रे, इतने सुबह
0: 6:15 बजे मैं पहुंच गया और बाहर खड़ा हो गया उनके दरवाजे के, बंगला था उनका ये बैंड्रा में।
1: हाँ
0: अभी वहां बिल्डिंग बन गई है
1: जी।
0: और रफी साहब, मुझे पता नहीं था कि रफी साहब भी जल्दी उठते थे, वो सुबह अपने गार्डन में बैठते थे
1: जी,
0: और झरोके से जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो दरबार रो रहा था, तो उन्होंने देख लिया, तो देखकर हैरान हो गए, अरे भाई मैंने आप बहुत सॉफ्टली बात करते थे।
1: हाँ
0: कौन हो? मैं बोला अन्नू मलिक हूं, सरदार मलिक साहब का बेटा। अरे मैंने तुम्हें 9 बजे बुलाया था। नाराज होने के बजाय उन्होंने मुझे इशारा किया अंदर आओ, मैं अंदर चला गया।
1: हाँ
0: 6:30-7 बजे ही मैं जाके लॉन्च में खड़ा हो गया। वो उठे, कुर्ता पहना हुआ था, लुंगी पहनी हुई थी और अचानक मुझे रूम में बुला लिया। जैसा मैं रूम में गया मैं क्या देखता हूं कि चारों तरफ अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं, एसी ऑन है, खूबसूरत समार खुशबूदार रूम था। रफी साहब सामने बैठ गए, बोला गाना लेके आए हो? मैंने हाँ, सुनाइए। और मैंने बाजा खोला और अपना गाना सुना। तो सबसे पहले बोलते अरे तुम बाएं हाथ से बजाते हो?
1: हाँ
0: हाँ मैं लेफ्टी हूं। अच्छा अच्छा सुनाओ सुनाओ। अब मैं गाना गा रहा हूं, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता जैसे रंग लाती है शराब। उनके जो ब्रदर लॉ थे वो गाना लिखते जा रहे थे।
1: जी
0: मैंने एक चीज नोटिस की कि रफी साहब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे,
1: ओ
0: चुप थे।
1: हाँ हाँ
0: मैं गा रहा हूं। अचानक एक चीज मेरे दिमाग में, मैं बोला चलो अंतरा गाते हैं। अब जैसे मैंने अंतरा गाया, अभी कम सिन हो क्या जानो, तो मुझे कहते हैं वापस गाओ। मैंने कहा अभी कम सिन हो क्या जानो, तो वहीं रफी साहब से एक चीज सीखा मैं। बोला ये जो तुम गा रहे हो
1: जी
0: थोड़ा गलत है।
1: ओ
0: तो मैं बोला सर क्या गलत है? तुम गा रहे हो अभी कम सिन हो क्या जानो, इसको मिला दो, तुम एक शब्द को दो टुकड़े कर
1: दो टुकड़े करे
0: कर दो अभी कम सिन हो क्या। और मैं उनके पांव पर गिर गया।
1: वाह वाह।
0: मैं अपने आप को भाग्यशाली क्यों मानता हूं, ऐसे महान लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला। फिर जब गाना रिकॉर्ड हुआ वो दिन अच्छी तरह याद है, मैं जब कंडक्ट कर रहा था, मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर मतलब जो अरेंजर थे वो वहां थे, तो एक पीस आया और मुझे नोटिस कर रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बोला फर्स्ट म्यूजिक ऐसा करते हैं, डंग डंग डंग डंग डंग डंग, मैं खुद ही गा रहा था तो मैं साजिद को समझा रहा था, डंग डंग डंग डंग डंग डंग, मुझे इंटरलूड बनाने का बड़ा शौक है।
1: जी
0: तारा तीरा तीरा भी कम से, तो बोला अरे क्या अंतरा उठा है, आके मुझसे गले मिले। और मुझे अच्छी तरह याद है जब गाना जब खत्म हुआ तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा।
1: क्या बात है।
0: और जो इस यहां उनका हाथ था लेफ्ट मेरे हाथ पर कंधे पर, और मुझे ऐसे पकड़ा।
1: वाह।
0: और उसी शाम को उन्होंने डैडी को फोन किया था, मलिक तेरे पास एक संगीत का नग है।
1: वाह।
0: एंड डैडी की आंखों में आंसू थे कि रफी साहब ने मेरी तारीफ की। ये मैं लम्हा कभी नहीं भूल सकता हूं। और वही रिकॉर्डिंग जब खत्म हुई, इतने महान इंसान थे, अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था।
1: हाँ
0: तो मुझे आगे कर दिया कि भाई इनसे कुछ रिक्वेस्ट करो। तो बोले मैंने गाना गा दिया, पैसा तो चाहिए मुझे। बोले रफी साहब वो कह रहे हैं कि ही इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, पैसा है नहीं। तो मुझे मुड़के देखते हैं और बोलते हैं अनु एक काम कर, पैसा तो मैं लेके ही जाऊंगा। अब मैं डर गया।
1: बिल्कुल।
0: मैं बांद्रा से आया हूं।
1: हाँ हाँ
0: घर वापस जाना है। प्रोड्यूसर को बोलो मुझे 50 रुपए दे दे, पेट्रोल का पैसा तो दे दे। सिर्फ 50 रुपए लेकर उन्होंने वो गाना गाया था, मोहब्बत रंग लगी जनाब आहिस्ता, इसलिए लोग उनको फरिश्ता बोलते थे।
1: क्या बात है। अब एक मोमेंट आएगा, एक ऐसा गाना आएगा जो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो कौन सा गाना है, और उसके बाद मोहब्बत रंग लाएगी आएगा।
0: जी जी।
1: लेकिन कमाल यह है कि पहले आता है पिताजी का गाना, रफी साहब की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल।

सरदार मलिक का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज और यहाँ से आता है अनु मलिक का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम पूनम, साल 19

0: क्या कमाल, क्या कमाल जी, कहिए।
1: ये जो आप पीस सुना रहे हैं ना
0: जी,
1: दा दा दा दा दा,
0: इसी की बात हो रही थी।
1: इसी की मैं बात कर रहा था कि जब मैं बना रहा था ना ये पीस,
0: हाँ,
1: उस वक्त रफी साहब फेमस था जो
0: जी जी बिल्कुल
1: स्टूडियो में,
0: हाँ,
1: क्यूबिकल के सामने खड़े थे,
0: हाँ,
1: और मुझे सुन रहे थे बनाते हुए।
0: बताइए।
1: तो इतने खुश हो गए थे वो कि तुझे शौक है इंक्लूड बनाने का, बड़ा जी बहुत शौक है।
0: जी जी जी।
1: तो उसके बाद ही उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा।
0: बताइए।
1: और फिर डैडी को फोन किया था। मैं ऐसे इंसान को भूल नहीं सकता।
0: बिल्कुल
1: ऐसे इंसान थे, इतने इनकरेजिंग थे मोहम्मद रफी साहब, इतना प्यार करते थे कि चंद शब्दों में उनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा।
0: अब मैं एक और गायिका की तरफ आ रहा हूं, लेकिन यहां भी जो बात है ना वो गाने के सिरे को पकड़कर होगी, और वो गाना है ये।

विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। अनु जी, बातें रफी साहब से चल के और आशा भोसले तक आ गई। शुरुआती दौर था उमेश मेहरा की फिल्म, और ये जो म्यूजिक है ये पूनम से बिल्कुल अलग है। इसमें पूरा एक पंजाबी फ्लेवर है। सोनी महिवाल, और क्या तो गाना, यहां सब लोग उस गाने की मस्ती में डूब गए।

0: तो आपने जो अभी बात कही कि ये बिल्कुल अलग है उस गाने से,
1: हाँ जी,
0: तो इसकी इंस्पिरेशन कि मैंने कसम खाई थी कि मैं वो संगीतकार बनना चाहता हूं जो हर किस्म के गाने बनाए,
1: हाँ।
0: उसके पीछे थे आर डी बर्मन साहब
1: जी।
0: मैं जब छोटा था मैंने एक गाना सुना था, डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग, ये दम मारो दम, ये सुना था,
1: हाँ हाँ,
0: उम्र थी 10 साल,
1: हाँ।
0: वही इंसान बनाता है चिंगारी कोई भड़के, अभी वही इंसान, इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। मैंने बोला कि मैं आगे चलकर ऐसा संगीतकार बनना चाहता हूं कि मैं सिचुएशन में अपने आप को ढाल लूंगा, अगर रोमांटिक गाना है तो मैं वो बनाऊंगा, अगर पंजाब पर बेस्ड है सोनी मेवाल लव स्टोरी पर मैं वैसे गाने बनाऊंगा, अगर जुड़वा है जिसमें मस्ती वाले गाने चाहिए जैसे कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है मैं वो करता हूं, तो आर डी बर्मन साहब ओ हसीना जुल्फो वाली भी कर देते हैं, आर डी बर्मन साहब चिंगारी कोई भड़के भी बनाते थे, और मैंने अपने आप को कसम दी कि आई कैन कंपोज ऑन एनी सिचुएशन एनी टाइम एनी वेयर एज लॉन्ग एज माई डायरेक्टर इज विद मी।
1: और ये आपने किया है
0: एक बार नहीं हजारों बार और अभी भी कर रहा हूं।
1: बिल्कुल, मैं ये सोच के बड़ा हैरान हूं कि एक पूरा 80s का दौर था जहां बहुत अलग तरह का म्यूजिक बन रहा था, और कमाल की बात यह है कि उस पूरी धारा में भी आप 80s के हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो के लिए ये गाना बनाते हैं। और देश के गली गली शहर शहर चौराहे चौराहे पर गूंजता है ये गाना।
2: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला हे, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला।
1: बच्चन साहब के लिए गाने बनाना कोई छोटा काम नहीं था,
0: बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे साथ एक महान निर्माता निर्देशक साहब थे मनमोहन देसाई, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि अन्नू मलिक आप सोचिए नसीब गोली अमर अकबर एंथनी जैसे एक आउटस्टैंडिंग म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और एक नए लड़के को चांस देना
1: जी
0: अमिताभ बच्चन साहब के साथ
1: इतनी बड़ी फिल्म,
0: तो ही हैड फुल कॉन्फिडेंस। और मैं बताना चाहता हूं संगीत बनता है कॉन्फिडेंस से।
1: हाँ हाँ,
0: संगीत अगर आपका निर्देशक आप पर भरोसा करता है कि दिस मैन कैन डिलीवर, तो हजारों चीजें होती है। और मनमोहन देसाई साहब से जब मैं मिला भी था तो उन्होंने बहुत से मुखड़े सुने मुझसे, बहुत से मुखड़े, लेकिन मुझे मुखड़े लिखने की भी आदत है, मैं मुखड़े की जो फ्रंट पहली जो चार लाइनें होती है मैं लिख देता हूं। तो मैं बोला सर कैरेक्टर का नाम क्या है, बोला सोच रहा हूं मैं पिक्चर का नाम सोच रहा हूं मर्द। तो मुझे टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव लगा मर्द, बोला वेरी गुड टाइटल। तो मैं बोला सर एक मुखड़ा दिमाग में आ रहा है कैच करता है यार वो टांगा चलाता है, तो बोलता हुआ मुखड़ा ये मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला, और वहीं से वो मेरे गले लग गए। और फिर मैंने कुछ 200 300 400 500 कितनी ट्यून सुनाई उनके दना दन, और एक दिन उन्होंने कहा चल आज सिटिंग करते हैं, और बच्चन साहब के साथ सिटिंग हुई।
1: हाँ,
0: बच्चन साहब ने रिएक्शन तो कुछ दिया नहीं, वो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बस चुपके सुनते जा रहे थे। लेकिन आधे घंटे के गाने के बाद, 1.5 घंटा गाया मैंने, उन्होंने बोला, फिर अचानक मनमोहन जी ने बोला उनसे कैसा लगा, बाहर आके मुझे बोलते हैं तू अपनी शर्ट तो नहीं फाड़ेगा, यौन यू आर नाउ साइन फॉर मर्द।
1: क्या बात,
0: तो आई वुड थैंक अमिताभ बच्चन साहब फॉर एक्सेप्टिंग मी अ न्यू बॉय, आई वुड थैंक मनमोहन देसाई साहब, अगर बच्चन साहब ने हाँ नहीं बोला होता, मनमोहन जी ने हाँ नहीं बोला था, अन्नू मलिक आपके सामने बैठे ये बातें नहीं कर रहा होता।
1: बहुत सही बात है।
0: उमेश मेहरा साहब ने मुझे सोनी मेवाल दी
1: जी,
0: राजीव मेहरा साहब ने मुझे एक जाने हम दी
1: जी,
0: एफसी मेहरा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी जिंदगी में, जैसे हरमेश बल्होत्रा, उससे पहले सलीम अख्तर साहब,
1: बिल्कुल
0: ये सब लोग बड़े।
1: एक चीज मुझे याद आ गई, मर्द में कुछ बड़े म्यूजिक बड़े लिरिसिस्ट थे जैसे राजेंद्र कृष्ण।
0: बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, वो थे ज्यादातर एक्चुअली

0: वो तूफान में थे, अल्लाह रखा तूफान में।
1: हाँ,
0: लेकिन इसमें
1: प्रयागराज जी,
0: प्रयागराज जी थे, किकला साहब थे, मिलजुल कर मैं जब ट्यून सुना रहा था सब अपने करते जा रहे थे कि अन्नू की ट्यून इतनी अच्छी, हम कैची वर्ड लिखेंगे। मनमोहन देसाई वॉज अ फैबुलस डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर दुनिया में नहीं आएगा।
1: कभी कोई खींचतान हुई किसी ट्यून को लेके किसी?
0: बहुत बहुत बहुत, मैंने तो बैकग्राउंड भी किया था इस फिल्म का। खींचतान इसलिए हुई क्योंकि मेरे अंदर तो ये था ना कि मैं जिस बैनर पे काम कर रहा हूँ वह एमकेडी फिल्म्स है।
1: हाँ।
0: और जिसका संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हमारे गुरु। और अगर अच्छा संगीत होता तो अलग बात होती, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने तो लाजवाब संगीत दिया था, लाजवाब। अमर अकबर एंथनी देख लो, नसीब देख लो, कूली देख लो, कोई भी फिल्म उठा लो उनकी।
1: हाँ।
0: मतलब सुपर ड्यूपर हिट गाने। अब मनमोहन देसाई साहब अन्नू मलिक को ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो बहुत
1: हाई
0: हो गया था।
1: यस,
0: अब मैं गाने क्या बनाऊं? तो मैंने बड़ा अतरंगी उल्टे स्टाइल के गाने बनाए।
1: हाँ,
0: अगर आप मर्द के गाने सुनोगे, मैं बोला हटके बनाना पड़ेगा।
1: और वो
0: दिमाग में ये बात थी कि वेरी जस्ट 22-23 इयर्स ओल्ड, सामने मनमोहन देसाई बैठा है। इट इज नॉट इजी, क्योंकि मनमोहन जी के कानों में कल्याण जी आनंद जी के सुर थे।
1: बिल्कुल,
0: मनमोहन जी के कानों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुर थे, मनमोहन जी के कानों में रफी साहब की आवाज थी। अनफॉर्चुनेटली रफी साहब चले गए थे उस वक्त
1: जी,
0: हमारे पास वो सिंगर नहीं था जो, और उन्हें रफी साहब की आवाज से ज्यादा किसी की आवाज पसंद नहीं थी
1: बाकायदा।
0: तो उस वक्त मैं मुखड़े सुनाता था जो मैंने अपने मुखड़े लिखे हुए थे, कैची मुखड़े, लाइक सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करें, मैं तेरी टांगे वाली। मन मुझे उछल गए, बोला तू मेरी, तू गाना नहीं बना रहा है सिर्फ।
1: हाँ।
0: तू मेरे सीन लिख रहा है। दैट वॉज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मनमोहन देसाई कि मेरा सीन है कि टांगा वाला कौन है?
1: हाँ।
0: अमिताभ बच्चन।
1: हाँ।
0: इश्क करता है इस लड़की से, तो उसका आपने ये नहीं कहता कि तू मेरी जान है या मेरी जानम है।
1: हाँ।
0: तूने कहा सुन रूबिया, लड़की का नाम रूबिया, तुमसे हाँ। प्यार हो गया, डायरेक्ट है।
1: हाँ।
0: प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करें, या छोड़ दिया।
1: हाँ।
0: तो मन में सोचा आगे क्या आएगा।
1: हाँ।
0: और सर ये लाइन डालता हूं, मैं तेरा टांगे वाला, तू मेरी टांगे वाली, मैं तेरा टांगे वाला, मतलब टांगे वाले की शादी टांगे वाले से हो रही है।
1: हाँ।
0: मैं टांगा चलाता हूं, तू मुझे इश्क करती है, एंड वो उछल गए। या फिर वो गाना था, कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी। उस जमाने में टू गेट अ न्यू इंग्लिश वर्ड अभी ट्रेंड हो गया है।
1: हाँ।
0: उस जमाने में बड़ी नई बात थी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: यार वाइज सिंग विल यू, ऐसे सर क्या मुझसे शादी करो, मैंने नहीं सर ऐसा मत करेंगे। सर कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी। और लड़की कहती है नो नो सॉरी जी। So every song became a chart buster because of its freshness, of its newness. और बच्चन साहब then carried it to a different level. अमृता जी थी उसके अंदर,
1: yes.
0: उसमें दारा सिंह साहब थे, उसमें क्या क्या गाने पिक्चराइज किए गए,
1: yes.
0: माहौल क्या था वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है बातचीत को फिर से बदलते हैं, और अब मैं एक ऐसे गाने के साथ बात को आगे बढ़ा रहा हूं जिस गाने में एक नशा है, इस गाने में एक तरंग है। फिल्म में अलग गायक की आवाज में आता है, रिकॉर्ड पर अलग, लेकिन इस फिल्म के तमाम गानों के बीच इस गाने ने अपना जादू बनाया है। अस्सी के दशक से नब्बे के दशक में आ गए विविध भारती लाइव, सत्तरवें वर्ष में प्रवेश और प्यार का इजहार।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: अनु जी, बाजीगर फिल्म का ये गाना, मैंने बाकी तमाम गानों को छोड़कर इस गाने की बात की है, कोई तो बात होगी।
2: मैं समझता हूं इसलिए बात होगी, मैं देखिए ये जो फिल्म का गाना आपने बजाया है
1: जी,
2: पंकज उदास जी की आवाज में बजाया है आपने, और इसको बाद में गाया था विनोद राठौड़ ने।
1: हाँ,
2: सो क्या हुआ, महान रतन जैन, मैं उनको महान रतन जैन बोलता हूं, वीनस के जो मालिक हैं
1: जी जी जी,
2: और महान गणेश जैन, दो भाई, इनकी वीनस टेप्स एंड रिकॉर्ड्स
1: जी,
2: सात भाई, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक चले गए, हमारे प्यारे चंपक जी
1: जी जी,
2: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस वक्त जब मैं 80s में से निकलकर 90s की तरफ जा रहा था, 80s का दौर बदलता जा रहा था, आप समझ गए, नए नए संगीतकार फिर अपना अपने कदम जमा रहे थे
1: जी,
2: उस वक्त धीरे धीरे मेरा काम जाने लगा
1: जी,
2: एंड मेरी जिंदगी में इस गाने से पहले एक इंसान आए जिनके बारे में हम जरूर बात करेंगे, जिनका नाम है महेश भट्ट साहब
1: जी जी जी।
2: उसके बाद ये पिक्चर आई, मैंने एक एल्बम किया रतन जैन साहब के लिए
1: जी जी,
2: उसमें ये गाना था
1: जी।
2: तो एक दिन रतन जी कहते हैं, यार मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं।
1: हाँ,
2: फिल्म का नाम है बाजीगर।
1: वाह,
2: इसमें एक नया लड़का है शाहरुख खान।
1: हाँ,
2: नई हीरोइन है काजोल, और डायरेक्टर भी वर्चुअली न्यू है, एक फिल्म इनकी हिट हो चुकी है। तुम आओगे? मैं बस सर डूबते हो गए, तिनके का सहारा वाली बात है, मेरे पास काम ही नहीं है, नई नई शादी हो चुकी थी मेरी। उन्होंने कहा काम करते हैं। मैंने जब ये मुखड़ा सुनाया इतने खुश हुए। फिर हमने यही गाना विनोद राठौड़ से गवाया था
1: जी।
2: जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, तालियां बज रही थी।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि 90s की एंट्री
1: हाँ
2: का ब्यूगल बज चुका था, सिर्फ अनु मलिक का नहीं।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: जितने भी संगीतकार 90s में थे
1: जी,
2: वो अपना नया रंग लेके आ रहे थे
1: जी जी जी,
2: और इसे एक था अनु मलिक।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इन्हें बहुत अच्छा काम किया। जितने भी अगर 90s का म्यूजिक सुनोगे तो लोग कहते हैं दैट्स द रेनेसांस ऑफ, जैसे 60s का म्यूजिक था।
1: हाँ,
2: नए म्यूजिक के बारे में बात करते हैं।
1: हाँ,
2: उसके बाद ऐसा म्यूजिक बना ही नहीं है
1: जी।
2: एवरी कंपोजर, एवरी लिरिसिस्ट, एवरी प्रोड्यूसर, एवरी डायरेक्टर
1: जी,
2: एवरी म्यूजिशियन, एवरी सिंगर्स हो, लिरिसिस्ट हो, संगीतकार हो, म्यूजिशियंस अपने उस जमाने के क्या थे, लाइव म्यूजिक चल रहा था
1: जी जी,
2: एंड उसका नतीजा है 90s का म्यूजिक। जब ये बाजीगर के गाने बने थे तो लोग दीवाने हो गए थे, बोलते कैसेट्स में फ्लाइंग लाइक हॉट केक्स।
1: हाँ,
2: मुझे लोग आके बोलते हैं कैसेट्स बिकते थे, हर दुकान के कैसेट बिक रहे थे, मतलब अगर बगल में चार कैसेट बेचने वाले बाजीगर के हो तो चारों दुकान से बिक रहे थे, ये देखिए एक दुकान में।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो उसका नतीजा ये निकला कि आज टुडे जब ये गाने लोग सुनते हैं तो मुझे मैसेजेस लाके देते हैं, कहते हैं अनु जी ये गाने ऐसे लगता कल रिकॉर्ड किया आपने।
1: हाँ,
2: इतनी फ्रेशनेस कैसे है। आई वुड से उस वक्त ऐसा एक सर पे एक जुनून सवार था कि कुछ अच्छा करना है।
1: बाजीगर में तो आपने वो रैप भी किया था, में
2: वो काली काली आंखें में, उसकी भी स्टोरी है, अब गाना बजाए तो बताऊंगा।
1: अच्छा, गाना बजाना पड़ेगा, ठीक है, गाना बिल्कुल बजाएंगे, और बाजीगर का वो गाना भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं ये चाहता हूं अनुजी के

हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम विविध भारती के स्टूडियो से फेसबुक पर लाइव देखा जा सकता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: यस अनु जी, ये काली काली आंखें,
2: ये जो काली काली आंखें का गाना है, इसमें जो आज इतना ट्रेंडिंग हो गया रैप
1: जी,
2: उस वक्त ये सब नहीं था
1: जी।
2: हुआ यूं कि गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मुखड़ा बन चुका था, सेट पर सब थे, अचानक 16 बार का एक फर्स्ट म्यूजिक में टेम्पो बज रहा था, टक टक टक चिटक टक टक चिक टक टक टक चिटक टक टक टक टक टक टक। बहुत कुछ ट्राई किया, उसमें कुछ हो रहा नहीं था। मैं बोले ये खाली जा रहा है, ये खाली जा रहा है पूरा जगह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने एक दिमाग में आइडिया आया, मैं चला गया सेट के ऊपर, मैं बोला यार एक काम करते हैं, माइक पर जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये खाली जगह को मैं कवर करना है। अभी मुखड़ा खत्म हो चुका है, अंतरा आने वाला है, अंतरा आने से पहले म्यूजिक पीस है, लेकिन ये 16 बार मैं करूं तो क्या करूं, बहुत सोच रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा मैं ये वर्ड डालता हूं
1: जी,
2: मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली मैं मिला, दुनिया चले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे, राम पाम पाम पारा पाम पाम। अब पूरा ब्रास आता है वहां से।
1: हाँ।
2: तो पूरा मैंने टाइमिंग कवर किया उसके अंदर।
1: हाँ।
2: एंड वहां अब्बास मस्तान, रतन जैन ऑल जंप्ड अप, ये बहुत अलग चीज की तूने। और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, उन्होंने कहा मुझे लगता है बहुत अलग चीज हो गया, मैं मिला और जो तेरा अंदाज है ना तू मिली, तो वहां देव कोहली साहब भी थे लिरिक राइटर। मैं बोला देव जी पहला हाफ तो मैंने लिख लिया है, दूसरा हाफ को लिखे देते हैं, सेकंड अंतर में भी डालते हैं। मैं तो कर झटपट, मैं तो कर खटपट, मेरे आचा तो निकट। वो देव जी ने वही लिख दिया, वो भी कमाल के इंसान थे देव कोहली साहब,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: महान राइटर थे वो,
1: महान राइटर।
2: तो वो उन्होंने, मैंने बोला सर ये जो मैंने टैटू लिखा है फर्स्ट, मैं मिला तो मेरा, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? बोला अनु जी गो हैड रिकॉर्डेड, बहुत अच्छा लग रहा है, देव जी की परमिशन मिली मुझे और मैंने कर दिया। बट जो नेक्स्ट उन्होंने लिखा वो भी मैंने बोल दिया, ना तू कर खटपट, तू आजा तो निकट, तेरे प्यार झटपट, न तो जुल्फ झटक, न तू पैर पटक, न डा, ऐसा ये सब किया था मैंने। आज वो गाना लोग बोलते हैं वो ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग, वन फॉर इट्स साउंड,
1: बिल्कुल
2: द म्यूजिक प्रोडक्शन वॉज वेरी न्यू।
1: यस यस,
2: डेढ़ महीना लगा था उस गाने को बनाने के लिए, डेढ़ महीना टू गेट द म्यूजिक राइट, पाम पाम पारा पाम पाम पाम। तो करते करते बहुत टाइम लगा, आई वांटेड टू सेट अ ट्रेंड। और आज लगता है लोग मुझे बोलते हैं कि यार इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, AI आ चुका है, लेकिन लगता है ये गाना कल रिकॉर्ड हुआ है। मैं 3 बार ये लव्स यूज कर चुका हूं, बिकॉज आई बिलीव अ सॉन्ग शुड साउंड एज फ्रेश एज इट वॉज रिकॉर्डेड यस्टरडे इवन टुडे।
1: बाजीगर के टाइटल सॉन्ग में आपने वायलिन

0: प्यारे इस्तेमाल किए हैं, वो क्या था मामला?
1: कहानियां बहुत हैं इसके उसके बारे में। लोग बोलते हैं अनु जी आप ये बताइए कि ये गाना बना कैसे? बाजीगर इज अ वेरी टफ वर्ड, बाजीगर। अगर इस पर आपको बोला जाए गाना बनाओ, हाउ डू मेक अ सॉन्ग?
0: जी जी।
1: तो मेरे दिमाग में एक दिन मैंने रतन जी को फोन किया, सर एक मुखड़ा है दिमाग में, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। तो बोला सुना? तो मैंने ऐसे सुना है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, ऐसे सुना रहा हूं। बोला बहुत कैसी मुखड़ा अप्रूव हो गया, लेट्स रिकॉर्ड द सॉन्ग।
0: जी जी जी।
1: मेरा अब ये जो लाइन आती है ये सुनने वाले में, सेट पर हम पहुंचे, सिंगर्स आर ऑन द माइक।
0: हाँ हाँ।
1: ना तो सिंगर्स आर ऑन द माइक, अब्बास मस्तान खड़े हुए, पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा, 60 वायलिंस, वियोलास, चालोस, एवरीवन, रिदम फॉर्मेशंस, एवरीथिंग इज रेडी। अब सब बोल रहे कि अनु मलिक इज रिकॉर्डिंग फॉर अ न्यू हीरो, अ न्यू हीरोइन, सबके फैमिलीज आए हुए हैं
0: जी,
1: सब सुन रहे हैं और मैं सेट पर हूं। अचानक जब गाना रिकॉर्ड करो, जो आपने पूछा कि वॉयलेंस आए कैसे, ये मैं बोला यार 1 2 3 4 गाना शुरू होता है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, टन टन टन टन, सीधा फर्स्ट म्यूजिक आ रहा था, टम पम पुम बम बम तरम पम तम दम दम दर। मैं बोला कुछ कमी है यार, गाने में दम नहीं है। लोग हैरान हो गए, बोला सेट पर हो आप, गाना हमने अप्रूव कर लिया है, अब्बास मस्तान कह रहे हैं। सर ये गाना उठ रहा नहीं है,
0: कुछ करना पड़ेगा।
1: मैंने बोला एक इंट्रोडक्शन बनाते हैं।
0: हाँ।
1: वही सेट पर इंट्रोडक्शन बनाया तो मैं चाह रहा था ब्रास शुड बी कमिंग डाउन, ये सुन रहे वॉल्यूम चल रहे हैं, अभी भी कुछ कमी है, मुखड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। तो वहां मेरे एक सोलोइस्ट थे हमारे, उनको मैंने बोला यार एक काम करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग्स लेके आएंगे, या रोक देंगे,
0: ओ वाह भाई,
1: और वहीं मेरा मुखड़ा बजाओ।
0: ओके।
1: मेरा ही मुखड़ा बजाओ, तारी रारी रारी राम ता। तो ऑल वे लुकिंग एट मी, ये क्यों किया? फिर बोला इसके बाद मुखड़ा नहीं उठ रहा है।
0: हाँ
1: हाँ। सडनली आई गॉट एन आइडिया, मैंने गाना यहां से शुरू करते हैं, वहीं लिखा गया है।
0: अच्छा।
1: मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर, डाराडाम ब्रेक, बाजीगर ओ बाजीगर। तो गाने किस तरह बनते हैं, गाने का चेहरा बदल जाता है सेट के ऊपर,
0: क्या बात।
1: एंड आई बिलीव इन इंस्टिंक्टिव क्रिएशन। उस वक्त अब्बास मस्तान, रतन जैन मेरे पास आए, बोला तुमने चेहरा बदल दिया गाने का, मुखड़ा उड़ गया, एंड बाजीगर वॉज बॉर्न विद दैट सोलो वॉयलिन पीस एंड द सिंगिंग एंड द राइटिंग। क्या मतलब उसका अंतरा भी क्या बना था, धक धक धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है, मेलोडी थी। तो सिंगर सैंग विद अ लॉट ऑफ लव, सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड द रिजल्ट कि आज भी गाना बजता है। और पिक्चराई भी शाहरुख पर और काजल पर इतना ब्यूटीफुल किया था सरोज जी ने कि लोग याद करते हैं उस पिक्चराइजेशन, और क्या शाहरुख लगा और काजल लगी उस गाने के अंदर, लाजवाब पिक्चराइजेशन।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट प्लेस टू प्ले दिस इंट्रोडक्शन म्यूजिक, जिसके बनने की कहानी अभी आपने सुनाई है। विविध भारती पर फेसबुक लाइव भी है ये कार्यक्रम। और हां, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसमें से कुछ चुनिंदा सवाल हम अनु मलिक से पूछेंगे। ये है वो म्यूजिक जिसके बनने की कहानी अभी सुनाई अनु मलिक ने।

0: अनु जी, यहाँ यादों की महफिल जम गई है।
1: क्या बात है, क्या क्या गाने आप सुना रहे हैं, मुझे घबराहट भी हो रही, कैसे गाने
0: जी।
1: उसकी मेहनत याद आती है मुझे।
0: मुझे याद है कि मैं जेपी दत्ता साहब से बात कर रहा था और उन्होंने बताया था कि इस गाने की बनने की जो कहानी है, उनको भी विविध भारती से बड़ा प्यार है और काफी काफी दिलचस्प कहानियां उन्होंने बताई थी बॉर्डर की। आप बताइए इसकी सिटिंग की बेमिसाल कहानी।
1: ये जो कहानी है इसकी, ये जो ट्यून है
0: जी,
1: ये जो जगह है, ये मैंने एक जगह, मैं जावेद साहब के साथ बैठा था एक सिटिंग में, एक डायरेक्टर के साथ।
0: हाँ,

0: अनफॉर्चुनेट वो जो डायरेक्टर था उसे समझ नहीं आई।
1: ओके
0: ये जगह
1: जी,
0: बोला नहीं यार मुझे नहीं जम रही। ठीक है हम भूल गए, हम निकल गए। उन्होंने फिर किसी और संगीतकार को ले लिया
1: जी।
0: और हमारे मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें प्रॉमिस किया गया ये फिल्म आपकी है, फिर ड्रॉप कर दिया है
1: जी।
0: तो ये तो कहानी सभी सभी की होती है स्ट्रगल की
1: जी,
0: वो अलग बात है। एक दिन मेरे घर में जावेद अख्तर साहब और जेपी दत्ता साहब आए ओपी दत्ता साहब के साथ।
1: हाँ
0: ओपी दत्ता साहब उनके फादर
1: जी जी।
0: मुझे साइन कर लिया था बॉर्डर के लिए। जावेद साहब ने बोला सिटिंग रूम का दरवाजा जो है अन्नू मलिक का उस पर कुंडी लगा दो।
1: अच्छा बंद कर दो।
0: हाँ क्या हम चेक करते हैं कि भाई ये लड़के में कितना दम है। मेरा इम्तिहान तो जिंदगी में चलता ही आया
1: जी जी,
0: जब से मैं पैदा हुआ मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है
1: जी जी जी।
0: कोई बात थी, कुंडी लगा दी आपने, बंद कर दिया।
1: हाँ।
0: बोला कि आप कुछ सुनाइए। मैं फिर सोचता रह गया कि इतने शब्द हैं, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। ए गुजरने वाली हवा जो बता, जो लाइन आई
1: हाँ,
0: वहां जाकर मैं इतना इंप्रेस हो गया। मैंने क्यों वहां से शुरू की।
1: हाँ
0: ए गुजरने वाली हवा बता, यहां से जावेद साहब का रिएक्शन आया, जेपी साहब का रिएक्शन आया और दोनों उठे और उन्होंने गले लगा लिया। बोला ये जो इतना बड़ा गाना है तूने यहां से शुरू किया, फिर वो ट्यून जो याद आई थी मुझे, मैं जावेद साहब उसको मिला के देखते हैं।
1: हाँ
0: मिलाया तो जावेद साहब उछल गए और जेपी दत्ता साहब ने गले लगा लिया। सी हाउ सॉन्ग्स आर बॉर्न।
1: जी जी जी।
0: दिस सॉन्ग वॉज बॉर्न आउट ऑफ इंस्टिंक्ट के इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया यूनुस जी,
1: जी
0: कि हमारे देश की रक्षा करते हैं और अपने मां बाप से दूर
1: जी,
0: अपने फैमिली से दूर, पत्नी से दूर, बच्चों से दूर, वो इमोशन
1: जी
0: मेरे अंदर आया। एंड द सॉन्ग संदेश से आते वॉज बॉर्न, संदेश से आते हैं वॉज बॉर्न बिकॉज आई मैडली एंड डीपली लव इंडिया।
1: क्या बात है।
0: आई लव माय ग्रेट कंट्री भारत। मैं दीवाना हूं इस देश का
1: जी।
0: मैं समझता हूं कि भगवान ने मुझ पर एक बहुत बड़ा मतलब एक एहसान किया कि मुझे ऐसे देश में जन्म दिया जहां इतनी मोहब्बत है। और अगर मैं अन्नू मलिक बना हूं तो इस मिट्टी की वजह से बना हूं
1: जी।
0: और
1: जी।
0: अगर अगला जन्म होता है, अगर कहते हैं है नहीं है पता नहीं, तो मुझे फिर से आप हिंदुस्तानी बनाना।
1: वाह।
0: मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं।
1: ये गाना तो अपनी लेंथ में, अपने अंतरों में भी
0: 11.5 मिनट का गाना है।
1: बताइए
0: 11.5 मिनट का गाना रिकॉर्डिंग, और एक अंतरा जेपी साहब ने नहीं काटा। और जेपी साहब ने जो फिल्म बॉर्डर बनाई है जेपी दत्ता साहब ने, जितना उनकी तारीफ की जाए कम है।
1: एक और बात है कि लंबे गाने बनाने के भी आप मास्टर हैं, इसके भी इतना ही बड़ा गाना फिर से आपने एक बनाया।
0: कौन से गाने की बात कर रहे हैं।
1: ये जो एलओसी कारगिल वाला।
0: हाँ एक सीमाएं बुलाएं भी लंबा गाना है।
1: हाँ।
0: एक मैं कहीं भी रहूं
1: जी, जी।
0: ये भी मैंने देशभक्ति गाने बहुत बनाए हैं, देशभक्ति गाने।
1: हाँ।
0: तो मेरा जो प्यार है अपने देश के प्रति वो मेरे गानों से नजर आता है। कोई मुझे पूछे आप कितना अपने देश से प्यार करते हो तो मैं जवाब देता हूं मेरे गाने सुन लो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये जरूर ये बात कहनी पड़ेगी कि सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही एक ऐसा गाना है जो अमूमन ज्यादा सुनाई नहीं देता, तो थोड़ा सा ये गाना सुनाते हैं। क्योंकि संदेशे आते हैं और सीमाएं बुलाएं, अगर ये दो गाने बजाएं रेडियो पर, कुछ प्रोग्राम आधे घंटे के होते हैं, एक घंटे के होते हैं, आपके दो ही गानों में आधे घंटे का प्रोग्राम निपटाया जा सकता है। सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही और संदेशे आते हैं, खत्म। दो आधे घंटे का प्रोग्राम खत्म। इतने बड़े गाने बनाना आसान काम नहीं है। तो सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही भारतीय सेना को समर्पित, बॉर्डर और उसके बाद एलओसी करगिल। अनु मलिक ने अपने आप को बार बार साबित किया है। 70 के दशक के अंत में शुरुआत होती है, 80 के दशक में करियर शबाब पर चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होते हैं और उसके बाद मोह मोह के धागे के जरिए नए संगीतकारों को बताते हैं कि गाने कैसे बनाए जाते हैं।

विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग। अन्नू मलिक, कहानी बाकी है। 12 बजे से लाइव शुरू किया है, 2 बजे तक चलने वाला है। 2:30 पर तिग्मांशु धूलिया लाइव विविध भारती 70वें साल में प्रवेश कर रहा है और जश्न हो रहा है लाइव प्रोग्राम में। ये वो गाना है जो हमारी तन्हाइयों का साथी है।

महेश भट्ट के बारे में भी बातें करनी बाकी हैं अभी अनु मलिक से। क्या आप पहचान पाए कौन सा है ये गाना?

विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। और ये गाना जिसमें एक फलसफा है, जिसमें एक नाजुकी है, ये गाने हमें गुजरे वक्त में ले जाते हैं, स्वीट 90s में।

0: यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, बहुत कम लोगों को पता है ये कैफी आजमी का लिखा हुआ गाना है।
1: बहुत याद करता हूँ कैफी अंकल को
0: जी।
1: एक्चुअली जब मैं मिला था उनको, उनकी तारीफ करने पहुंचा था जानकी कुटीर में।
0: अच्छा,
1: कि अंकल आपने जो मदन मोहन जी के साथ काम किया है,
0: वाह वाह वाह,
1: क्या क्या गाने लिखे, तो बड़े मुस्कुराए थे। और एक सिचुएशन है जो भट्ट साहब पिक्चर बना रहे हैं, फिर तेरी कहानी याद आई, तो कहते हैं कि मैं, मेरा टीवी की फिल्म है, उस जमाने में इतना अटेंशन नहीं दिया जाता टीवी को, तो भट्ट साहब का नाम सुनकर बड़े खुश हो गए, महेश भट्ट साहब का नाम। महेश भट्ट साहब की बड़ी अपनी एक, उनका एक मुकाम है, उनकी बड़ी इज्जत है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो बोला तुम संगीत दे रहे हो, बोला तो ये मुखड़ा सुनो।
0: अच्छा,
1: मेरे दाएं में बैठे हुए थे वो।
0: हाँ हाँ,
1: मैं बैठा हुआ था आराम से, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी
0: जी,
1: फिर भी बोलते हैं सुनो ये लिखो। आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ पल अपना है, हम गुजरे हुए पल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। तो मैंने उसी वक्त उनकी बोल सुनते सुनते ये ट्यून बनाई थी। जब वो ट्यून बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे थे, ऐसे बैठे थे, सामने देख रहे थे, अपनी तरफ मुझे देखा, शाह जी भी थी।
0: हाँ,
1: और कहते हैं यार मेरे सामने तुमने बनाई है,
0: बिल्कुल
1: ट्यून। मैं नहा बाजा भी नहीं था उस वक्त, वैसे गुनगुना रहा था
0: जी,
1: इसको फौरन रिकॉर्ड करो। मैंने रिकॉर्ड कर ली कैसेट प्लेयर के ऊपर, छोटा सा उस जमाने में कैसेट प्लेयर होता था, उसने रिकॉर्ड कर ली। और महेश जी को बोला उन्होंने कि इसने कोई ट्यून सुनाई आप सुनो।
0: हाँ,
1: और वो ट्यून इतनी पसंद आई क्योंकि बोल कमाल के थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: ट्यून तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो शब्द थे उनके, कैफी साहब के, वो ऐसे लाजवाब वर्ड थे, वो दोनों का तालमेल हो गया। और महेश जी ने बोले यही गाना रिकॉर्ड करेंगे, और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और आज भी ऐसा लगता है कि ये गाना, यही बैठे हैं कैफी अंकल और यही बैठे हैं महेश भट्ट साहब, और ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है।
0: कितनी प्यारी बात है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे
1: और यादों के हर जंगल में रहते हैं। ये जो लाइन है, यादों के जुगनू के जंगल में रहते हैं,
0: वाँ वाँ।
1: ये पेंट करना शब्दों के जरिए,
0: बिल्कुल
1: वो कैफी साहब ही कर सकते थे।
0: अच्छा, मैं एक और शायर का जिक्र करना चाहता हूँ, और वो इसलिए भी कि उनसे आपका एक ताल्लुक भी है, वो आपके मामा रहे, मामा है।
1: बिल्कुल, वो ऐसे ऐसे गाने लिखे उन्होंने, उनका जो एक कॉम्बिनेशन था, मैं देखिए मेरा बचपन बीता है
0: जी
1: लिस्निंग टू शंकर जयकिशन, क्योंकि मेरे मामा ने गाने लिखे थे, अब एक अरार है छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है।
0: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं अनु मलिक जी के मामा जी, यानी जाने माने गीतकार
1: हसरत जयपुरी साहब,
0: हसरत जयपुरी की।
1: और हसरत साहब हमारे मामा ही नहीं थे, वो कमाल के एक इंसान थे। मैं उनके पीछे पड़ा रहता था, मुझे इस रिकॉर्डिंग पर लिखे चलो, बल्कि एक मेमोरी बड़ी ये है कि उनके जो रिकॉर्ड आते थे ना
0: जी जी,
1: तो उनके बेटे घर में बैठ के, मैं बोलता था यार ये शंकर जयकिशन गाना सुन रहा, आप 11 साल का बच्चा गाने सुन रहा है, जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, या फिर वहां से पुराने पुराने बरसात के गाने सुनते थे।
0: हाँ जी,
1: राज साहब के जितने भी गाने, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, फिर आजा सनम मधु चांदनी में हम, मुझे लगता है ये सब जितने भी गाने थे
0: जी,
1: क्या बनाने वाले क्या तेरे मन में समय, ये सुनते सुनते मेरे अंदर चले गए थे गाने।
0: हाँ,
1: और उसका नतीजा ये था कि जब उन्होंने भी मेरे गाने लिखे
0: जी,
1: आपको याद होगा राधा का संगम,
0: हाँ
1: ओ राधा तेरे बिना। अब यहां जो बातें हम करते हैं, हम लोग बात नहीं करते ऑफ ऑल दीज महान सिंगर्स, उनमें से आप, जैसे हमने आशा जी के बारे में, आपने मेरा गाना बजाया सोनी महिवाल का
0: जी,
1: तो आपने वो पूछा ही नहीं कि आशा जी का क्या योगदान रहा है मेरी लाइफ में।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, वो बात
1: पहला
0: है।
1: पहला मेरी लाइफ का पहला गाना
0: जी जी,
1: वो संग बाय आशा भोसले।
0: क्या बात है,
1: 1977 मतलब 1975 आई वॉज ओनली 14।
0: हाँ,
1: 1977 उस वक्त गाना जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, और ये अब नाम है अंटर वाली, ये सब ये मुझे याद है, जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, तेरा जमाना है मैंने माना, मेरे भी एक दिन आएगा। आशा भोसले जी ने भी डैडी को फोन करके बोला था ये आदमी सिखाए क्या।
0: हाँ हाँ,
1: आशा जी ने पूछा।
0: वाह,
1: तो डैडी ने बोला नहीं, ये क्या करता है कि मैं कोई शब्द देता हूं और ये अचानक गाने बना लेता है।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो आशा जी बोलती है खड़े खड़े बैठ ये लड़का ये कैसे कर लेता है, तो यहां सरस्वती मां ही बोल रही हैं, और वही नतीजा है कि आशा जी, लता जी, आशा जी, लता जी, रफी साहब, किशोर कुमार
0: जी,
1: ये सब मेरे गाने गाते थे और मुझे आशीर्वाद देके जाते थे।
0: क्या बात है।
1: यानी कि किशोर दा ने तो मुझे कंपेयर किया था, बोला तुझमें पंचमता की खुशबू आती है। जब मैंने गाना बनाया था बन के नजर दिल की जुबा,
0: हाँ,
1: कहने लगी एक दास्ता जो किशोर दा ने गाना गाया था,
0: यस, यस,
1: मैं बोला क्यों क्यों, बोले जितना तेरा मुखड़ा मीठा है,
0: हाँ,
1: उतना ही तेरा अंतरा मीठा है। अब ये भी मैंने सीखा,
0: हाँ,
1: कि मुखड़े पर दम मत तोड़ना, मुखड़े पर दम मत तोड़ना, मुखड़े पर अगर तूने दम तोड़ दिया तो अंतरा मजा नहीं आएगा। A good composer is one who makes a very good antara.
0: हाँ।
1: ये हमने सीखा था आरडी बर्मन से, ये हमने सीखा था कल्याण जी आनंद जी से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, ये हमने सीखा था शंकर जयकिशन से। आप जितने भी गाने सुनते हो,
0: हाँ,
1: सचिन देव बर्मन के गाने सुन लो, उनके मुखड़े अंतरे सुन लो,
0: हाँ, हाँ,
1: मदन मोहन जी के सुन लो, सलील दा के सुन लो, नौशा साहब के सुन लो, डैडी के सुन लो, रोशन साहब जिनके बारे में हम नहीं बोलते, सी रामचंद्र जी,
0: बिल्कुल,
1: ये ऐसे महान लोग हो चुके हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, यूनुस भाई आप मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है मुझे और बहुत दूर जाना है, बहुत मेहनत करनी है, अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूं जहां ये बड़े बड़े मास्टर्स पहुंचे हैं।
0: देखिए
1: मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कोई कमाल का काम किया। आप लोग मेरी तारीफ करते तो मैं हैरान हो जाता हूं। मैं तो ये बड़े बड़े गाने सुनता हूं तो मैं बोलता हूं कि क्या लाजवाब लोगों ने लिखा है, काम किया है, गाया है, मैं कैसे गाने बनाऊं ऐसे। आज भी मेरे अंदर ये एक आग लगी हुई है कि मैं ऐसा काम कैसे करूं और कब करूं।
0: जी, एक और शख्स के साथ आपने काम किया है जो बहुत ही जादू भरा काम है। ये वो शख्स हैं जिनके हम सभी दीवाने हैं और जो ये गाना लिखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस गीतकार की बात कर रहा हूं, पर इस गाने के जरिए आपको लगेगा अंदाजा। जहां तक मुझे अंदाजा है, इनके साथ चार फिल्में की हैं आपने।
2: मोहब्बतों में जीने वाले खुशनसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन
1: करें। उनके साथ मैंने गाना, सबसे पहली फिल्म थी वो थी अक्स, ये रात जल्दी की छिपकली रात,
0: हाँ,
1: ना निगली जाए ना उगली जाए,
0: हाँ,
1: गुलजार अंकल
0: जी
1: के बोल ही तरह छीन कर लेके आते थे। तू हवा है, फिजा है, जमी की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ। या फिर जो गाना मेरा फेवरेट है,
0: हाँ,
1: सौ दर्द है,
0: सौ राहतें,
1: सौ राहतें, सब मिला है मुझे एक तू ही नहीं।
0: क्या गाना बनाया
1: इसमें, मैंने जान लगा दी थी, ये वर्ड्स मुझे इतने अच्छे लगे थे, जाने मन का म्यूजिक था
0: जी।
1: अशोका में अगर आप सुनो गाने, रोशनी से भरे भरे,
0: बिल्कुल
1: भरे भरे नैना तेरे, छू कर बोले ना छूना मुझे, क्या लाइन है। तो अक्स हो या फिर फिलहाल उनकी,
0: हाँ,
1: मेघना गुलजार की पहली फिल्म
0: जी,
1: उसका म्यूजिक मैंने दिया। बल्कि मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि जितने भी मेजर डायरेक्टर्स लॉन्च हुए हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, ज्यादातर उनकी पहली फिल्म मेरे साथ रही है। ये लोग जानते नहीं है कि मेघना गुलजार की पहली फिल्म मेरे साथ थी
0: जी।
1: फिलहाल तनुजा चंद्रा की पहली फिल्म मेरे साथ थी
0: जी।
1: फराह खान की पहली फिल्म मैं हूं ना
0: जी,
1: जिसे गाने बड़े लोकप्रिय हैं, मेरे साथ थी। राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मेरे साथ थी।
0: मुन्ना भाई
1: MBBS
0: जी।
1: तो बहुत से डायरेक्टर्स हैव लॉन्च्ड द कैरियर्स विद मी एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत से सिंगल्स को हमने डिस्कवर किया है
0: जी।
1: और मैं अपने आप को इतना मतलब भाग्यशाली मानता हूं कि लोग कभी कभी कहते हैं यार तुमने इसको डिस्कवर किया, इसके साथ काम किया। मैं समझता हूं कि ऊपर वाले ने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे अच्छे अच्छे लोग से मिला है। ये बहुत नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा काम करूं अगर अच्छे लोग मेरे साथ नहीं आते। मैं बार बार कहता हूं संगीत संगत का काम है
0: जी। जी जी,
1: हर आदमी को समझना चाहिए कि संगीत एक आदमी नहीं बनाता
0: जी,
1: उसके साथ बहुत से लोग होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो मिलकर जान लगाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और एक ही प्रॉब्लम होता है संगीतकार की, जो मैं फिर आपके विविध भारती पर कहना चाहता हूं कि सबसे अकेला भी एक ही आदमी होता है जब गाना बनता है, वो है संगीतकार। अब आप पूछोगे अनु जी संगीतकार अकेला कैसे होता है, सुनने वालों को बताना चाहता हूं।
0: यस,
1: ये मैंने हर प्रोग्राम में बोला, अभी भी बोलूंगा कि जब निर्माता निर्देशक घर पर आते हैं और कहते हैं हमें आपको साइन करना है, फिर निर्देशक सिचुएशन बताता है, उस वक्त सबसे अकेला महसूस जो अकेला होता है वो आदमी वो होता है संगीतकार, उसके उस वक्त पर ना लिरिक राइटर होता है, ना उस वक्त सिंगर होता है, ना उस पर साजिंदे होते हैं, कोई नहीं होता, सामने डायरेक्टर बैठा होता है। हाँ। और बोलता है मेरी सिचुएशन, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं
0: जी,
1: फिल्म है मुन्ना भाई MBBS,
0: यस,
1: आना कहते हैं हमें एक गाना चाहिए। मैं बोला गाना पिक्चराइज कहां किया जाएगा।
0: हाँ।
1: और उनका डायलॉग आता है गाना अस्पताल में पिक्चराइज किया जाएगा। आप मुझे सोचिए, अगर आपको बोला जाए कि अस्पताल में गाना पिक्चराइज हुआ, हाउ वुड योर रिएक्शन, आप क्या गाना सोचेंगे? हॉस्पिटल रात को गाना है, अब क्योंकि गाना लोकप्रिय हो चुका है तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब वो संगीतकार के सामने वो सिचुएशन दी जाती है, और मैं ही नहीं, ऑल द कंपोजर्स इन द वर्ल्ड, द लोनलीएस्ट मैन ऑन द प्लैनेट वाइल मेकिंग अ सॉन्ग इज द कंपोजर,
0: यस यस,
1: और वहां डायरेक्टर बैठे हुए राजकुमार हिरानी, और मैंने गाना, मैंने तर्ज छेड़ी, तो राजकुमार हिरानी जी ने डॉक्यूमेंट किया है ये।
0: हाँ।
1: बोला भी है कि अन्नू मलिक उठे और अपने हॉल में 15 मिनट चले आए, मैं दरवाजे देख रहा था अन्नू मलिक यहां चल रहे हैं, और चलते चलते अचानक 15 मिनट बाद आए और बोलते हैं एक मैंने चीज सोची है।
0: अच्छा।
1: तो 15 मिनट में और मैंने ऐसे गाया देख ले आंखों में आंखें। अब ये गाना बना कैसे?
0: हाँ।
1: उन्होंने एक लाइन बोली थी राजकुमार हिरानी साहब ने कि एक आदमी 12 बजे और 4 बजे के बीच में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहिए उसको।
0: जी जी जी जी।
1: क्योंकि 4 बजे वो गुजर जाएगा, ही विल डाई, ही इज गॉट अ टर्मिनल डिजीज,
0: राइट राइट,
1: मगर उसको वो हर खुशी मिलनी चाहिए बिटवीन 12 और 4। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं सॉफ्टली शुरू करूं और भी पेशेंट्स हैं, तो मैं लाउडली शुरू करूं, लाउडली बात होगा, तो मैंने ऐसे शुरू कर, देख ले आंखों में आंखें डाल, सीख ले जीवन के पल है चार, याद रख मरने से पहले जीना
0: सीख ले,
1: सीख ले। तो आज ये गाना लोग सुनते हैं तो पूछते हैं बना कैसे, तो उस वक्त जो संगीतकार अकेला होता है वो संगीतकार ही जाता है, और वो मेरी बात नहीं है, पंचमदा भी अकेले होंगे, शंकर जयकिशन भी अकेले होंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी अकेले होंगे, मेरे फादर भी अकेले होंगे, और इनको मैं इसलिए सलूट करता हूं, बार बार घूम के इसी बात पर आता हूं कि आप दुआ करो कि मैं इनके करीब थोड़ा भी आ सकूंगी, ये महान लोग हैं। आप आज भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि मैंने ऐसा कमाल का कुछ काम किया है जो इनके करीब आ सके।
0: मुन्ना भाई MBBS, ये वो गाना है जो विविध भारती पर अक्सर सुबह बजता है और लोगों से ये कहता है कि सुबह हो गई जाग जाओ, अनु मलिक का गाना सुन लो, जॉगिंग करो, चाय पियो।

0: शुरू हो गई मामू।
1: सुबह हो गई मामू, मामू, मामू।
2: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: गुलजार साहब के साथ के चार गाने बजाए मैंने,
2: बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि गुलजार साहब जितने अच्छे राइटर हैं उतने ही आउटस्टैंडिंग लाजवाब इंसान हैं, और इतना इनकरेजिंग लिरिक राइटर, इतने इनकरेजिंग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा
1: जी।
2: बहुत ही प्यार करने वाले हैं
1: बिल्कुल,
2: और इतना कुछ कर चुके हैं, इतना उनसे मैंने चीज सीखी रहा हूं, नम्रता, मोहब्बत, अपने काम को कितना प्यार करना चाहिए, कितनी शिद्दत से, लगन से काम करना चाहिए। जितने भी गाने, और मुझे बहुत प्यार करते हैं वो, आज भी मेरा फोन उठा लेते हैं।
1: हाँ।
2: और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुलजार साहब डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं।
1: कितना बड़ा चैलेंज था कि उनके अल्फाज आपके पास आ रहे हैं और ट्यून बनाना है,
2: क्योंकि मेरे दिमाग में तो अचानक मदन मोहन जी याद आ गए,
1: बाबा
2: पंचमदा याद आ गए, और मैंने बोला कि ऐसे लोगों के साथ काम करने वाला इंसान सामने बैठा हुआ है, खुद एक कमाल के डायरेक्टर हैं, स्टोरी स्क्रीन पे उनके आंधी फिल्म की आप फिल्म देखो, म्यूजिक सुनो, तब मुझे पता लगा कि मैं जिसके सामने बैठा हूं मुझे जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मैं बार बार कहता हूं उनके बोलों में इतनी ताकत और शिद्दत है।
1: हाँ।
2: कि बोलों में तर्ज छुपी हुई होती है।
1: क्या
2: उन्होंने लिखा कि तू हवा है, फिजा है, जमीन की नहीं तो घटा है तो फिर

0: बरसती नहीं, अचानक मेरी ट्यून को सुनते सुनते तू हवा है फिजा है जमी की नहीं तू घटा है, तो फिर क्यों बरसती नहीं उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ टूररूरा
1: बाबा।
0: और गाने बनते गए, रिकॉर्ड होते गए, और आज भी अक्स फिलहाल फिजा जाने मन अशोका जब बजते हैं गाने तो लोग उनको अपने सीने से लगाते हैं। ये जो गाना भी आपने बजाया चित्रा जी याद आ गई, क्या गाया,
1: बिल्कुल
0: रात का नशा अभी आंख से गया नहीं तू, जो हमने फ्लूट्स यूज किए इसके अंदर,
1: हाँ।
0: तो माय गॉड आज भी, और क्या गाया, क्या क्या जान लगाई
1: अनु जी ने। अब जो मैं बजाने वाला हूं ना, जितने लोग यहां मौजूद हैं और जितने लोग कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, ये सारे लोग झूम उठेंगे,
0: डडांग
1: डडांग, इसके बाद आएगा
0: माय गॉड,
1: डडांग इसके बाद आएगा।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनू मलिक के संग।
1: अनू जी, एकदम अलग दौर के गानों की बात मैं करने
2: जी सर,
1: ये जो कमाल है ये क्या था? एक तरफ अगर तुम मिल जाओ, दूसरी तरफ भीगे हो तेरे।
2: वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है
1: जी,
2: वक्त के साथ इंसान को तर्जे बनानी पड़ती है। नए निर्माता आते हैं, नए निर्देशक आते हैं, अपनी अपनी अपने अपने इमोशंस लेके आते हैं।
1: हाँ।
2: नए हीरोज आते हैं, एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं।
1: हाँ।
2: वो अपने एक अंदाज लेके आती हैं। जनरल पब्लिक जो है एक चेंज मांगती है। हमारे अंदर एक कहावत है ना, आपको परिवर्तन ही संसार का नियम है
1: जी।
2: और अगर आप अपने आप को उन्हीं यादों में रखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: आपको हर वक्त बदलना पड़ता है, हर वक्त नई चीज करनी पड़ती है, हर वक्त ऐसे गाने पब्लिक के लिए बनाने पड़ते हैं जो उनको, देखो हर हिंदुस्तानी के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की है, बड़ा मेलोडिक होता है। वो गाना गा सके या ना गा सके लेकिन वो गाना समझता बहुत है।
1: बिल्कुल,
2: वो गुनगुना लेता है उसके अंदर। अगर आप ऐसा गाना बना दो जो उनके दिल की बात है तो वो गाने को सीने से लगा लेंगे।
1: एक चीज जो मैंने देखी है कि आपकी पूरी संगीत की यात्रा में जहां मौका मिलता है वहां मेलेडी का दामन पकड़
2: वही वही बिल्कुल गुनगुनाने लायक वाले गाने नहीं होंगे तो गाना में दम ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा, फिर बार बार कहूंगा, हर हिंदुस्तानी के अंदर संगीत कूट कूट के भरा हुआ है।
1: यस,
2: किसी भी प्रांत में चले जाओ, महाराष्ट्र में देख लो।
1: हाँ।
2: गुजरात में देखो।
1: हाँ।
2: लोकगीत जो है,
1: बिल्कुल
2: गुजरात में भी क्या टैलेंट है।
1: यस,
2: आप चले जाइए साउथ में।
1: हाँ।
2: आप चले जाइए पंजाब में, आप चले जाइए राजस्थान में, आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आप कहीं भी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं इस देश में कि जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं समझता हूं कि लाजवाब सिंगर्स, लाजवाब कंपोजर्स, लाजवाब म्यूजिशियंस, लाजवाब टैलेंट है हमारे देश में। हिंदुस्तान एक ऐसा महान देश है जहां इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है, गली गली में है। उनमें से मुझे चुनकर सरस्वती माँ ने अगर अनु मलिक बनाया है तो मैं उनका जितना शुक्र करूंगा कम है।
1: बिल्कुल,
2: मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं।
1: यस,
2: कान में 2 साल की उम्र से अगर आप सुरी सुर सुन रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
1: लेकिन अनु जी, एक गाना ऐसा जो 7 समुंदर पार तक भी गया था, जरा वो गाना बजा देते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी इंतजार कर रही हैं।

0: ये सनू जी चाइना गेट बहुत ही अलग तरह की
1: ये गाना एक ही गाना था चाइना गेट में एक ही गाना चाहिए था इट वाज अ मेल ओरिएंटेड फिल्म
0: हाँ
1: और बड़ा चैलेंज था राजकुमार संतोषी साहब ने कहा कि यार कोई ऐसा गाना बना दो
0: हाँ
1: उनके फाइनेंशियल भरत भाई भी आए थे
0: जी जी
1: कि बड़ा एक लोकप्रिय गाना बन जाए
0: जी
1: तो मैंने ये सोचा कि छम छम ये बना भी कैसे मतलब छम छम सब बोलते हैं
0: हाँ
1: चूड़िया खनकी खनखाने वाले आ गए छम छम बाजरे पाए लिए लेकिन मैं बोला राजी मेरे दिमाग में मुखड़ा आ रहा है छम को छम्मा कर छम्मा छम्मा लेकिन जब ट्यून बनी ना तो ट्यून सुन के वो गदगद हो गए
0: हाँ।
1: और समीर जी ने फिर उस गाने को जो लिखा है
0: जी जी
1: समीर अंजान साहब
0: बिल्कुल
1: और बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है तो गाना फिर जब बन गया और रिकॉर्ड हुआ फिर जो पिक्चराइज हुआ तो मेरा गाना ये मैंने आपको पता बड़ा शौक है आपने समिंदर पाल बोला मैडम एक्चुअली बड़ा इसमें मेरा ये अजीब बिटर स्वीट मेमोरी है
0: बिटर स्वीट
1: हाँ स्वीट मेमोरी है कि गाना इतना लोकप्रिय हुआ
0: बाद में हॉलीवुड की फिल्म
1: हॉलीवुड में जब गया वहां जब मैं एलए में था सैन फ्रांसिस्को में तो मैं एक थिएटर में जाके पिक्चर देखता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा गाना बज रहा है छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी बाजे रे निकोल किडमैन पर वहां सबका सिंगर का नाम दिया लिरिक राइटर का नाम दिया मेरा ही नाम नहीं है
0: अरे अरे अरे
1: और मुझे बड़ा रंज हुआ ये क्योंकि जब हमने इतना मेहनत की मुखड़े पर अंतरे पर ट्यून पर
0: हाँ।
1: कोई बात नहीं लेकिन हमें हिंदुस्तानियों का प्यार मिल गया वही काफी हमारे लिए
0: बिल्कुल
1: मैं बाहर नहीं देखता हूँ हमारा हिंदुस्तान इतना महान देश है कि या हर एक हिंदुस्तानी आपको सीने से लगा लेता है उससे बड़ा उससे बड़ी बात क्या हो सकती है
0: Yes, और अनुजी अब एक ऐसी फिल्म जिसमें इतनी स्वीटनेस थी इन गानों में और एक नई गायिका को लेकर आया

0: अनु जी, जोश फिल्म की बातें हो रही हैं, मंसूर खान की फिल्म, और संजीवनी को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, और
1: ये फिल्म थी करीब
0: जी, हाँ सॉरी करीब, करीब
1: हाँ, ये जोश की नहीं, ये फिल्म थी करीब, विधु विनोद चोपड़ा साहब की फिल्म थी।
0: हाँ,
1: और वीर चोपड़ा जी जो अभी नहीं रहे याद आते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो उन्होंने कहा कि हमारी नई हीरोइन है और एक नई आवाज चाहिए फीमेल के लिए, और बहुत ऑडिशनिंग हुई, और संजीवनी जी से मिलाया उन्होंने मुझे, इनकी आवाज बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इमोटिव आवाज है, बहुत शिद्दत से गाने वाली इंसान है, और नतीजा ये हुआ कि आज जितने भी गाने ये आज इतने चलते हैं गाने अभी भी, कि अगर मैं शो पर परफॉर्म करूं तो लोग चाहते हैं कि ये गाने सुनाए जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा असल में ये हुआ कि ये दोनों करीब और जोश इसलिए मिक्स हो गई कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं जोश और अकेले हम अकेले तुम की भी बातें करूं, और अकेले हम अकेले तुम में
1: बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं फिर तेरी कहानी याद आई, जोश और अकेले अकेले तुम की बात कीजिए, मंसूर खान साहब याद आते हैं मुझे फिल्म जोश के, उनकी पहली फिल्म मैंने की थी अकेले हम अकेले तुम, और उसके गाने बट यू लव मी डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, या फिर राजा को रानी से प्यार हो गया, या फिर दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, ये गाने सब आज इतने लोकप्रिय हैं। और मंसूर ने जो काम निकाला, नासिर साहब के बेटे हैं, सुरीले इंसान है, बहुत मेहनत करवाई, लेकिन मजरू अंकल ने भी जो काम किया है उसमें, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, जिनका आपने नाम अभी तक जिक्र नहीं किया
0: जी,
1: लेकिन अकेले हम अकेले तुम में जो मजरू साहब ने काम किया मेरे साथ, ओए हो क्या बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं।

एक तरफ मजरू साहब का ये गाना और दूसरी तरफ एक ऐसा गाना जो बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फिल्म का नाम है डुप्लीकेट।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न अनुजी के संग हो रहा है और दो गानों की बातें करेंगे और उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे। ये गाना जिसके गाने के बनने की कहानी चाहिए हमको, जिस तरह के तबले आते हैं हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक के लिए ये नया था। बताइए अनुजी,
1: ये आपने कमाल कमाल के सवाल किए हैं और मेरे जितने भी गाने आपने बजाए हैं उसकी कहानियां सुनी हैं आपने
0: जी,
1: इसका बड़ा कमाल काम है। ये पिक्चर बन रही थी फराह खान की पहली फिल्म
0: जी,
1: और फराह खान कम्स आउट विद एन आइडिया कि यार अन्नू इस फिल्म में
0: हाँ
1: कवाली करते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कवाली बनाना इतना आसान नहीं है, और कवाल को मैं जितने भी कवाल्स हैं हिंदुस्तान में उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि कवाली बनाना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
1: तो उसने बोला नहीं मुझे कवाली चाहिए
0: जी,
1: तो मैं बोला अगर कवाली करेंगे तो मेरे स्टाइल में करेंगे।
0: हाँ।
1: तो जावेद साहब सामने बैठे हुए थे
0: जी,
1: व्हाट इज योर स्टाइल, व्हाट डू मीन कवाली योर स्टाइल।
0: हाँ।
1: अरे सर लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्सअप।
0: अरे बाप रे
1: विकेड, मैंने ऐसे बोला जावेद साहब भड़क गए, उड़ गए वो। बोला मैं यहां से जा रहा हूँ, ये कवाली नहीं हुई।
0: हाँ।
1: तो फराह खान पकड़ के ले गए।
0: हाँ।
1: तो मैंने एक पीस सुनाया उनको।
0: हाँ।
1: डारे डांडी डारे डांडी डारे डांडी डारे डांडी डा डा डा डा डा डा, ये इतना सुनाया। तो जावेद साहब बोलते हैं ये तो म्यूजिक पीस है ना। मैंने सर नहीं सर, फरा बोलती इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा बता, बड़ी छोटी जगह स्टकाटो है ये।
0: हाँ।
1: लगाड़ो भी नहीं, लगाड़ो दारी रा रा रारी रा, ऐसा नहीं है तारी नांदी दारी नांदी दारी नांदी दान। तो इतनी छोटी जगहों पर उन्होंने जावेद साहब ने जो वर्ड लिखे, देखो बेहारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: एंड वहां पर वो लिखा है तुमसे मिलकर मैंने ट्यूसडे डा डा डा डा डा डा डा डा डा, तो उन्होंने लिखा तुमसे मिलके दिल का है जो हाँ, सामने लिखा उन्होंने। अब गाने की जब रिकॉर्डिंग आई तो मैं चाहता था, उस जमाने में बड़े बड़े कव्वाल थे उनके साथ मैं काम करना चाह रहा था
0: जी।
1: नई डायरेक्टर, बजट का प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये मुश्किल होगा कव्वाल्स को लेके आना। तो कुछ मैंने अपने साजिंदे को बोला कि उन्होंने बोला कि यार माही में कोई है साबरी ब्रदर्स बोलते हैं बहुत गुनी है।

0: बुलाते हैं।
1: हाँ हाँ
0: हाँ, तबले मतलब 20 तबले।
1: 20 तबले?
0: हाँ हाँ, मगर सिर्फ उनकी चाटियां बजाएंगे, बाया नहीं बजाएंगे।
1: ओके,
0: मैं तो बेस गिटार तनांग चिक दुंग तंग कुचिक दिंग तनांग चिक दिंग तंग कुचिक दिंग तनांग चिक दिंग। अब ये साउंड जब बजा है, रिकॉर्ड हुआ है, तो तारा नंद धारा नंद धारा नंद धारा नंद धाम बाम बाम बाम बाम बाम बाम रनांग कचिक दिंग तंग कचिक दिंग तना। और ये भाई साहब हमारे इतना गुनी इंसान रंजीत जी, उन्होंने बोला अन्नू जी आपने ये बात जो मुझे बोली है
1: हाँ,
0: इस पर छोड़ दीजिए, मैं लगता हूँ इसके पर
1: जी।
0: और फिर भाई साहब लगे उस पर
1: जी,
0: और हम बैठे हैं, रात से सुबह हो गई
1: जी।
0: ये आइडिया उनको बजाते बजाते उसके जो साउंड है था ना, उसके जो चाटी का साउंड है, उसको मुख ट्यून के सुर में लाना था। कौन से?
1: हाँ,
0: कौन सा जो मुखड़ा है? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल गया। अब ये इसी सुर में दूरी दूरी दूरी दूरी दूरी दूरी दारी रारी रा राम ये तनांग चिक दिंग कचिक दिंग तनांग। तो बेस गिटार लेके साउंड लाके स्ट्रिंग्स डाल के अचानक फिर जो गाना बना, फिर वहां साबरी ब्रदर्स बा सोनू जी सब मिलकर जो फिर वो जो फरा नाची है,
1: क्या बात है।
0: हाँ, उससे बोले ये क्या गाना मिल गया। और गाना उसके बाद तो कवाली का ट्रेंड शुरू हो गया था।
1: वाह,
0: तो बहुत मेहनत की मैंने इस गाने पर। आई विल टेल यू समथिंग, उसके अंतरे बनाते बनाते जावेद साहब ने कमाल लिखा, पिक्चराइज मेरे ऊपर हुआ था और सब पर जो पिक्चराइज किया फरहान ने, इट बिकेम अ मैजिकल सॉन्ग।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये ओपनिंग पीस सुनते हैं और उसके बाद एक बहुत ही नशीले गाने की बात।

0: हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें।
1: विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। और अब इस गाने की बात, जिसके बिना ये गाना अधूरा, ये कार्यक्रम अधूरा। ये गाना ये दिखाता है कि अनु मलिक खुद को रीडिस्कवर करते रहते हैं, बदलते वक्त के साथ खुद को साबित करते रहते हैं। 70 के दशक के आखिर से शुरू हुआ ये सफर, 80 के दशक पर परवान चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होता है, 2000 के दशक में वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, और उसके बाद मोह मोह के धागे, यानी नई सदी में भी अनु मलिक का जादू कायम।

0: अनु जी, ये गाना तो मैजिक है। नए गीतकार वरुण ग्रोवर, शरद कटारिया की फिल्म, बताइए।
1: सबसे ज्यादा श्रेय जाता है YRF को
0: जी,
1: जिसके हेड हॉन्चो हैं हमारे फेवरेट, हम सबके फेवरेट आदित्य चोपड़ा साहब।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जिनका मुझे बुलावा आया। वो ज्यादा क्रेडिट लेना नहीं चाहते इस बारे में, बोलते मेरे बारे में ज्यादा मत बुला करो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उन्होंने मुझे फोन करके मैसेज देके बुलाया। और शरद कटारे साहब की स्क्रिप्ट सुनकर मैं गदगद हो गया, कमाल की स्क्रिप्ट
0: जी।
1: आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर ने जो काम किया है इसमें
0: जी,
1: मनीष शर्मा प्रोड्यूसर थे इसके, ये दोनों आए मेरे पास और आदित्य साहब ने बोला कि अगर आप इनको कन्विंस कर जाएं तो ये पिक्चर आपकी है ना, ये गाना करते हैं। मुझे जब सिचुएशन बताई तो मैं समझा, इन्होंने बताया कि हरिद्वार का सेटिंग है ये।

0: समझा, पता नहीं मेरे दिमाग में बनारस को चल रहा था और मैं अकेला रूम में बैठा हुआ
1: हाँ
0: तर सोच रहा था। 4 घंटे चले गए, 5 घंटे चले गए, 6 घंटे चले गए, कोई रिएक्शन नहीं।
1: हाँ
0: तब दरवाजा खुलता है और शरद कटारिया साहब आते हैं, मनीष शर्मा आते हैं। मैंने ट्यून सुनाई, पहले तो कुछ बोले नहीं। फिर शरद जी बोले, अगर हम कोई नया राइटर लाएं इसके अंदर तो आपको ठीक चलेगा। हमने पहले सोचा था, मैंने बोला गुलजार साहब होंगे,
1: जी
0: बोले नया राइटर जरूर ले आइए प्लीज, आई एम गेम टू वर्क विद एनीबडी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि ये जो शब्द वरुण ग्रोवर ने मुझे दिए हैं,
1: जी
0: ये मोह मोह के धागे थे।
1: बाद में तेरा चाव लगा कि जैसे घाव लगा, वो भी
0: वो
1: आपने
0: भी उन्होंने
1: बताया।
0: लिखा था।
1: जी
0: मैंने बोला ये लाजवाब राइटर है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे।
1: वाह वाह वाह,
0: और जब तर्ज बनी तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मुझे वो सिंगर्स चाहिए जो मेरे साथ बैठे हैं रिहर्सल करें। और इसका तो एक वीडियो भी बनाता है रिहर्सल का, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है।
1: जी जी
0: कितनी मेहनत की हमने इस गाने के ऊपर। गाना जब रिकॉर्ड हुआ और जो पिक्चराइज हुआ, और आज मैं आपको बहुत खुशी से कहना चाहता हूं कि 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले
1: बिल्कुल
0: इस फिल्म को, इस गाने को, वो द बेस्ट लिरिक्स इन द बेस्ट सिंगर मिला। ये अलग बात है कि अन्नू मलिक को भूल गए, मुझे नहीं मिला उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन बेस्ट फिल्म भी मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार,
1: यस यस यस।
0: एंड 2016-17 की बात है ये।
1: और उस फिल्म के एक गाने में आपने 90s को रिलीव किया था, एक झलक सुनवाता हूं।
0: तुमसे मिले दिल में हुआ दर्द करारा।

ये गाना भी अनुमलिक का। विविध भारती के स्टूडियो में ढोल बजने लगा।

0: अनुजी, अब बहुत कम वक्त बचा है। विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। इतने सारे लोग और सभी आपके दीवाने, बताइए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि मैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा आभारी हूं, जिन्होंने मुझे अन्नू मलिक बनने का मौका दिया। मैं अपने देश का बड़ा आभारी हूं, जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जहां मुझे ये कला मिली है। हर सुबह उठ के इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं और ऊपर वाले से कहता हूं कि भगवान, अगर दूसरा जन्म है तो इसी देश में हो, हिंदुस्तान में हो, क्योंकि सारी दुनिया में अगर नाम हुआ है तो इसी देश से हुआ है। मैं अपनी जनता का बहुत बड़ा आभारी, जिन्होंने मुझे हर तूफान में हर वक्त संभाला है।
0: अनुजी,
1: मुझे मेरे गानों को प्यार दिया है, मुझे इज्जत दी है। आज जितने भी मैं विविध भारती में आया हूँ, जितने भी मुझे यहाँ लोग

0: मिले हैं
1: जी,
0: ये सब मेरी बहनें जिनको मैं देख रहा हूँ, इतना प्यार से गाने नाच रहे थे और इतने दिल से रिएक्शन दिया है कि विविध भारती का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया
1: जी।
0: आपका यूनुस भाई जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और मेरा दिल कहता है कि हमारी जनता को ये प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा और जरूर सीने से लगाकर इसको एक यादगार प्रोग्राम समझेंगे। 70 years इज नो मीन अचीवमेंट।
1: यस,
0: तो मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी 11 को अन्नू मलिक 50 साल कंप्लीट कर रहा है इंडस्ट्री में,
1: तब भी बैठेंगे और तब और भी बातें
0: और करेंगे। 14 साल की उम्र से शुरू हुआ वह आदमी अपने बाजे को लेकर चला था मैं, और एक ही शब्द बोलता हूँ जो आज भी बोलता हूँ, मैं गलियों का राजा, मैं गलियों का राजा
1: जी,
0: मैं
1: गलियों का राजा,
0: गलियों का राजा, मैं गलियों का राजा, मेरी दौलत ये मेरा दिल है और ये मेरा बाजा।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक आवाज पर मेरी आप विविध भारती के स्टूडियो में आ जाते हैं और आप इस सम्मान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात, कभी भी आपको विविध भारती बुलाओ, बस एक बार कहना होता है अनु जी,
0: नाम क्या है इसका? विविध भारती
1: जी।
0: भारत जहां होगा, जहां भारत शब्द कहलाया जाएगा, वहां अन्नू मलिक जाके अपना माथा टेकेगा।
1: वाह, शुक्रिया। बिल्कुल समय खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत लेते हैं, आप आए, बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 3 अक्टूबर का दिन विविध भारती के लिए बहुत मायने रखता है। आज है विविध भारती का स्थापना दिवस। 3 अक्टूबर 1957 से शुरू हुआ ये सफर अब अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। विविध भारती ने स्वस्थ मनोरंजन की एक समृद्ध परंपरा कायम की है और कितने तो अलबेले हैं विविध भारती के कार्यक्रमों के नाम, जैसे फौजी भाइयों का कार्यक्रम है जयमाला। पूरी दुनिया में फौजी भाइयों को समर्पित ये अपनी तरह का इकलौता कार्यक्रम है। यही नहीं, जानी मानी हस्तियां विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश करती हैं, जिसमें वो फौजी भाइयों से अपने जीवन की कहानियां बताती हैं। चिट्ठियों का कार्यक्रम मन चाहे गीत, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार, नाटिकाओं का कार्यक्रम हवा महल। विविध भारती सिर्फ एक रेडियो चैनल नहीं है, बल्कि एक संस्कृति है, हमारे जीवन का हिस्सा है।

जाने माने फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि विविध भारती भारत के मध्यवर्गीय जीवन का पार्श्व संगीत है। कितनी सुंदर बात थी ये। अगर आप किसी शहर में हों तो आपको हर घर में विविध भारती गूंजता हुआ सुनाई पड़ सकता है। एक जमाना था जब विविध भारती आपके ट्रांजिस्टर पर गूंजा करता था। आज DTH, इंटरनेट स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, न्यूज ऑन AIR और वेव OTT के जरिए विविध भारती पूरी दुनिया में उपलब्ध है। यानी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, दिन के किसी भी समय विविध भारती आपका साथ निभा सकती है। इसके अलावा चिट्ठियां तो विविध भारती में आती ही हैं। अब विविध भारती ने सोशल मीडिया का हाथ भी पकड़ा है। कुछ कार्यक्रम सोशल मीडिया के सहारे पेश किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे फोन इन कार्यक्रम हैं, जिसके जरिए श्रोता हमसे सीधे जुड़ते हैं। यानी समय के साथ कदम ताल करती हुई आगे बढ़ रही है आपकी अपनी विविध भारती।

व्यक्ति अपने समय और समाज का बेमिसाल दस्तावेजीकरण कर रही है। न जाने कितने दशकों से हॉस्टल में रह रहे नौजवानों के लिए विविध भारती उनके परिवार की सदस्य है। न जाने कितने अकेले लोगों का साथ निभाती है विविध भारती। देश विदेश में विविध भारती की आवाज गूंजती है और यूं लगता है जैसे हमारा कोई अपना हमारे साथ है, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारा साथ निभा रहा है। 70 वर्ष का ये गौरवशाली सफर आपके बिना पूरा होना संभव नहीं था, इसीलिए हम विविध भारती नहीं कहते, हम कहते हैं विविध भारती परिवार। तो पूरे विविध भारती परिवार को विविध भारती की सालगिरह बहुत मुबारक।

संस्कृत भारती में गाने ही नहीं बल्कि समसामयिक जानकारियां पेश की जाती हैं, मशहूर हस्तियों से मुलाकातें, विविध भारती में साहित्यिक कार्यक्रम भी होते हैं। एक तरह से विविध भारती

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री

पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात

0: जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भील दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भील दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
3: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अभी था, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या GDP देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर GDP का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से।

0: प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
3: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पाता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये भी हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपका पास है ना नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CPS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमको ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
4: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना, अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
5: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहें expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
7: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में शुरू होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज लेकर आई हूं एक खास मेहमान। वो है जाने माने लेखक, निर्देशक और एक्टर तिग्मांशु धूलिया जी। तिग्मांशु जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं हम।
1: नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
0: तिग्मांशु धूलिया एक लेखक, निर्देशक और अभिनेता जिनकी कलम में यथार्थ की कहानियां हैं।
2: 28 बरियर, 7 पानिया गड्ढा पार करके सारा नेशनल चैंपियन माने। कौड़े ने पूछा, जब 3 स्टेट की पुलिस को चकमा देके एक किडनैपिंग कर लाई तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा।
0: जिनके कैमरे में जिंदगी की सच्चाई है, अभिनय में किरदार की धड़कन, गैंग्स ऑफ वासीपुर, शाहिद, माझी द माउंटेन मैन और भी बहुत सारी फिल्में।
3: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाए।
0: हासिल से हासिल हुआ कामयाबी का सफर।

0: पान सिंह तोमर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार का स्वर्ण कमल दिलाया। फिर तो साहब बीवी और गैंगस्टर, शागिर्द, बुलेट राजा, राग देश, मिलन टॉकीज जैसी बहुत सारी फिल्में उनके निर्देशन और लेखन से आईं। तो आइए एक बार फिर स्वागत करें तिग्मांशु धूलिया का। तिग्मांशु जी, विविध भारती का ये 70वां स्थापना दिवस है और रेडियो से आपको बड़ा प्यार है, तो बताइए आज इस जश्न के मौके पर हमारे देश भर के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो मुझको अपनी इस वर्षगांठ में बुलाने के लिए विविध भारती में बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सबका। ये मेरी पहली बार नहीं है, मैं कई बार 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ।
0: जी जी।
1: तो पता नहीं क्यों आप लोग मुझे बार बार बुला लेती हैं, इसका पता नहीं क्या कारण है।
0: क्योंकि आपको रेडियो से बहुत प्यार है और हम सबको आपसे।
1: हाँ, तो रेडियो का ये कि बचपन में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडियो ही था, ट्रांजिस्टर जिसको हम अपने सोते वक्त तकिए बगल में लगा के सो जाते थे, और हवा महल, और फिर बहुत सारे वो बिना का गीत माला, और फिर उसके बाद प्रायोजित कार्यक्रम भी होने लगे, मोदी कॉन्टिनेंटल और ये वो टायर
0: छाया गीत
1: और तमाम। और तो एक तो भाषा अच्छी होती थी बहुत रेडियो की उस वक्त, उसने बहुत दिया
0: जी।
1: और हमें सिर्फ अपने वक्त के गानों से, अपने वक्त में जो हो रहा है सिर्फ उससे ही नहीं, जो पहले भी हो चुका है, जो गाने या जो उस तरह के कल्चरल मोमेंट्स जो हैं, जो इतिहास में पहले भी दर्ज हो चुके हैं, उसके बारे में भी पता चलता था। संडे को कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे जो प्रायोजित होते थे
0: जी।
1: और बहुत बहुत इट वाज अ इट इज स्टिल अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बहुत कुछ सिखाया है रेडियो ने।
0: जी बिल्कुल। तो रेडियो सुनते सुनते आपने अपने भीतर सपना कैसे बुन लिया एक निर्देशक बनने का, एक्टर बनने का और लेखक बनने का, कैसे आपके भीतर बीज बनपा?
1: वो रेडियो की वजह से नहीं हुआ। रेडियो उस वक्त हम लोग जब छोटे थे तो हम इलाहाबाद में पढ़ा हुआ है, तो हमारा एक बैंड भी होता था, तो फिर वो युवाणी में पहले तो जो बच्चों का कार्यक्रम होता था संडे को,
0: बाल संघ, नन्ही दुनिया वगैरह,
1: उसमें उस पे छोटे छोटे हम लोग जाते थे वहीं पे आकाशवाणी, तो वहाँ पे भैया होते,
0: बड़े भैया जी
1: और दीदी होती थी
0: जी,
1: और सारे बच्चे होते थे, कोई कविता सुनाता था, कोई कहानी सुनाता था, कुछ क्विज होता था, वहां से शुरुआत की मैंने। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो युवाणी में कई बार पार्टिसिपेट किया
0: जी,
1: और उसकी वजह से फिर थिएटर में घुस गया। मैंने एक जरिया बना, पहला जरिया तो रेडियो ही बना कि अपनी अपने अंदर थोड़ी बहुत जो भी कला थी बचपन में जो होती थी उसको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म जो पहली बार मुझको मिला वो ये
0: जी रेडियो ही मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल रेडियो ही मिला।
0: और विविध भारती से हम सबको खासा लगाव रहा है, हम सबका बचपन ऐसे ही बीता है कि हम विविध भारती सुन सुन के अपने भीतर सपनों के बीज रोपते रहे हैं। आपने इलाहाबाद का जिक्र किया तो इलाहाबाद की बहुत सारी यादें हैं, हम तो सुनते हैं कि आप इलाहाबाद में ही रहते हैं, मुंबई में शूटिंग करते हैं, मुंबई आते हैं शूट करते हैं और इलाहाबाद चले जाते हैं, तो कोई खास याद इस वक्त हो आपके जहन में तो आप साझा करना चाहेंगे विविध भारती के श्रोताओं से?
1: मैं जो भी हूँ शहर की वजह से हूँ,
0: और
1: क्या बात है? वो शहर जो है, मैं एक सैकड़ों बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस शहर में पैदा हुआ, और जिस तरह का माहौल मिला दिया उस शहर ने मुझे, तो वो उसी की वजह से मैं जो

0: भी हूँ और भी सभी लोग को अपना शहर पसंद आता है मैं यहाँ, लेकिन इलाहाबाद बहुत खास है। तो जो लोग इलाहाबाद में नहीं भी पैदा हुए वो भी चुप हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं इलाहाबाद से, तो समझ जी, जाते हैं वो लोग बैकफुट में होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, इलाहाबाद संगम, नौका विहार, वहाँ का मन कामेश्वर मंदिर के किनारे से।
0: मैं तो अभी परसों ही लौटा इलाहाबाद से डुबकी लगा के।
1: अच्छा, तो अभी भी जाते हैं तो संगम तीरे जाते हैं और
0: पितृपक्ष शुरू हो गए थे इसलिए गया था।
1: जी जी, इलाहाबाद की एक बड़ी मशहूर शूटिंग है, बहुत ही मशहूर फिल्म है जिसने आपको बहुत कुछ हासिल कराया, और आप फिर कहेंगे कि हमने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं, जो आपकी ये बातें नहीं जानते हैं, उनके लिए बताइए कि फिल्म हासिल जो आपकी कामयाब पहली फिल्म थी, उसके पहले तो आपने शुरुआत कर दी थी।
0: नहीं नहीं, हासिल मेरी पहली फीचर फिल्म हासिल ही थी।
1: हासिल ही थी, अच्छा, तो हासिल से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, शूटिंग से जुड़ी हुई। हमने सुना है कि फिल्म हासिल ने आपको कामयाबी दी और साथ में उसने आपको रुलाया भी था, वो रोने वाली कौन सी घटना है, जरा वो घटना बताइए हमें।
0: जैसा मैंने कहा, इलाहाबाद टेस्ट करता है वो शहर, वो मुश्किल शहर है। अगर आप वहां पे किसी तरह का वृक्ष बोना चाहे या पौधा बोना चाहे, उस शहर की मट्टी पूछती है कि तुम्हारी औकात है करने की।
1: जी,
0: तो
1: क्या बात है।
0: उसने, उस शहर ने मुझे टेस्ट किया, तो मैं तो पहली फिल्म थी, तो मैं बहुत एक जवान, बहुत एक्साइटेड बच्चे की तरह अपने शहर जा रहा हूँ, शूटिंग करूंगा अपनी पहली फिल्म की। क्लाइमैक्स मैंने कुंभ मेले में ऑलरेडी सेट कर दिया था, इसको मैं पहले शूट कर चुका था 2000 वाला जो कुंभ मेला था। तो बट वहां के लोग जो थे उनको लगा कि मैं शहर को, वहां की यूनिवर्सिटी को एक बहुत गलत अंदाज से पेश कर रहा हूं, उनको ऐसा लगा।
1: जी,
0: तो मैं उनसे कहता रहा भाई रामायण में रावण भी है, राम भी है। मैंने रावण के सीन पहले शूट कर लिए, तो उन्होंने वो देखा तो उनको लगा कि ये तो ऐसी फिल्म है।
1: जी,
0: अब तो मेरा बड़ा विरोध हुआ वहां, बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे बहुत बेइज्जत किया गया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, और मैं पहली फिल्म थी तो उस तरह से लोग मुझे उस तरह से तब जानते भी नहीं थे, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। बट फिर उन्होंने, मैंने कहा कि ये शहर मेरा टेस्ट ले रहा है, तो जिस दिन उन्होंने रोकी मेरी शूटिंग, मैं कहीं और जाके गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह मैंने वहां शूटिंग की। मैंने एक भी दिन काम नहीं रोका, क्यों, मुझे था कि काम रुकेगा, प्रोड्यूसर रुकेगा, अपने शहर लेके गए उसका नुकसान होगा। तो मैंने कहा शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए, तो मैं भी, अगर वो इलाहाबादी मेरे खिलाफ थे तो उनको नहीं पता मैं भी
1: एक
0: इलाहाबादी से ही लड़ रहे
1: हैं,
0: और वो हार गए सब। मेरी फिल्म रिलीज भी बनी, उससे सब कुछ दिया, सक्सेसफुल रही
1: और लोगों ने बहुत सराहा, तो वो इसी वजह से रोए थे आप, मतलब ये।
0: हाँ, वो रोया तो
1: रोने वाले।
0: हाँ, मुझे वहां पे डीएम को दफ्तर में बुला लिया
1: जी,
0: और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने पुराने पुराने दिग्गज सब एक्स प्रेसिडेंट या नेता जो भी थे वो आ गए डीएम के ऑफिस में, और उन्होंने कहा देखिए ये तो शूटिंग वाले हैं, ये तो चले जाएंगे, आपको यही रहना है।
1: जी जी,
0: और ये लोग यात्री होटल में हैं, तोड़ देंगे उसका शीशा, उनकी गाड़ियां, उस लड़के को सर मुंडवा के गधे पे बैठा के शहर में घुमाएंगे।
1: ओ बाप रे।
0: तो मुझे तो आंसू आ गए मेरे, मैं अकेला हूँ, ये कम से कम 25-30 लोग डीएम ऑफिस में, मैं इसको डिफेंड करने वाला कोई भी नहीं। तो फिर मैं रो दिया, फिर लेकिन मैं निकला बाहर, मैंने शूटिंग नहीं रोकी। इवेंचुअली एक देर बात हुई, मुझे फोन करने पड़ा। तो
1: मतलब आंसुओं की उस उन लड़ियों ने मुस्कान की और खुशी के मोती आपके जीवन में दिए,
0: और ही है।
1: बहुत सारे मोतियां। तो यहाँ पर बात हासिल की चली है, तो क्या हासिल फिल्म का गाना सुन लिया जाए?
0: जी बिल्कुल,
1: और आपका पसंदीदा गीत है शायद ये।
0: जी जी,
1: सुनते हैं।

0: तो ये हासिल फिल्म का गाना था, उदित नारायण और साथियों की आवाजें थी, सोनाली वाजपेयी की आवाज थी साथ में, और जतिन ललित का संगीत था। और कुछ श्रोता भी तिग्मांशु जी लिख रहे हैं और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, ये चार शब्द सुबह सुबह घरों की खामोशी में पिछले 70 सालों से जीवन रस घोल रहे हैं। रेडियो की धीमी आवाज, शहनाई की मंगल धुन आज भी करोड़ों भारतवासी के हृदय में अपनी पहचान बनाए हुए। विविध भारती की खासियत ये है कि उसके दर्पण में हर किसी के सपनों की आहट, ख्वाहिश की झिलमिलाहट और दूर तक अपने साथ ले जाने की फितरत शुमार है। एक श्रोता की ओर से सवाल है आपसे, तो पहले मैं जतिन ललित के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं श्रोता का सवाल शामिल करूं?
1: सवाल ले लेते हैं पहले
0: जी। हमारी एक श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि तिग्मांशु जी, आपने इरफान खान के साथ काफी फिल्में की हैं, उनके साथ फिल्म मेकिंग से संबंधित ऐसा कौन सा लम्हा है, कौन सा पल है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है?
1: अब ऐसे मोमेंट्स और लम्हे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो खास बात हमारे कॉम्बिनेशन में ये थी कि आप जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं और ठीक है, आप उससे मिलते हैं पहली बार, उसको स्क्रिप्ट सुनाते हैं, तभी शायद आप जान पहचान होती है, और फिर शूटिंग के दौरान, लेकिन एक आप वो आपका दोस्त नहीं होता है।
0: जी जी,
1: वो एक साथ में एक फिल्म बनाने में जो एज ए टेक्नीशियन है, वो एक्टर है, वैसा ही रिश्ता रहता है। और एक्टर्स क्योंकि थोड़े नाजुक मिजाज होता है इनका
0: जी,
1: तो आप उनको बहुत सहम के उनके साथ बिहेव करते हैं
0: जी,
1: कि कहीं कुछ ना हो जाए। इरफान के साथ ये था कि मेरा दोस्त था वो, तो मैं दोस्त के साथ फिल्म बनाता था
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं अकेला नहीं बना रहा होता था, मेरे साथ वो भी रहता था, उसके साथ मैं कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकता था, बाकी एक्टर के साथ मैं ये फैसिलिटी नहीं है मेरी, तो उससे थोड़ी मेरी उसकी जो फिल्में रही हैं
0: जी
1: वो थोड़ी ज्यादा लोगों के
0: संवेदनशील भी रही।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बात लोगों तक पहुंची है
0: जी। और इरफान से आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो कुछ पारिवारिक इरफान की जो निजी बातें हैं, उनकी फिल्मों के अलावा कौन सी बात आपको याद आती है? आज इरफान नहीं है लेकिन हम सबके दिल के करीब हैं वो ऐसा लगता है कि एक्टिंग नहीं, सामने बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मेरे भाई जैसा था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो, जो कि दूसरा है नहीं उसके जैसा कोई
0: जी।
1: तो उसके जाने से मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ
0: जी,
1: और ये सच बात है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और फिर पारिवारिक जो आपने कहा कि मतलब घर बिल्कुल पारिवारिक माहौल बन, मतलब कि मेरी हम मैं इरफान हमारे और भी 2-3-4 दोस्त जो करीबी थे, ब्रिजेंद्र काला, ये सब जो थे, तब बहुत मिला करते थे हम लोग सब बाप बने हैं, मतलब सब 5-6 महीने के गैप में सबके सब
0: जी जी,
1: मतलब सबकी बीवियां मोटी मोटी,
0: अच्छा
1: स्वीट और इरफानी, उनको गाड़ियों में बैठा के घुमाना या उनको जैसे चाट वाट के खाने का बहुत मन करता है ना, तो वो सब इरफानी करता था
0: जी जी,
1: 3-4 महिलाओं को बैठा के और घुमाना, और फिर सबके 5 बच्चे हुए, सब 4-5 महीने 3 महीने के गैप में, तो इससे इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा
0: जी। बिल्कुल, ब्रिजेंद्र काला का आपने नाम लिया, तो वो तो आपकी फिल्म में भी पत्रकार की भूमिका निभाई थी।
1: हाँ, वो मेरा कजन ब्रदर है।
0: तो जो पत्रकार की भूमिका थी वो बड़ी अलग किस्म की थी।
1: हाँ।
0: तो क्या सचमुच वो ऐसे हैं या उस फिल्म में आपने शामिल किया था, उनका कैरेक्टर गढ़ा था?
1: तो बहुत अच्छा एक्टर है वो, थिएटर का एक्टर है, बहुत पुराना एक्टर है, और उसको कुछ बताने की जरूरत मुझे खास पड़ी नहीं, थोड़ी बहुत उसकी ये कि दीवार पे लग के लिखो वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और डायरेक्टर किस काम का है, नहीं तो अपने आप में बहुत ही माहिर एक्टर है वो
0: जी जी। एक्टिंग की बात चली कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप खुद भी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में की हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो किरदार है रामा धीर सिंह
1: जी जी,
0: तो वो तो नाम से ही मशहूर हो गया था, तो कैसे आप वहां पहुंचे? मतलब आगे एक्टिंग ही तो नहीं करना चाहते हैं?
1: नहीं,
0: मतलब हम लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्टर फिल्में देते रहे।
1: एक्टिंग में मुझको मतलब वो मैं ऐसी पता नहीं क्यों वो अपना अनुराग और कश्यप और जो कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे मुकेश छावड़ा साहब, उन्होंने पता नहीं क्या उनके जहन में आया कि ये रोल मुझसे कराना है, मैं एक्टर तो था नहीं, मतलब एक्टर पे था, ड्रामा स्कूल में मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग के परसू नहीं की, मैं फिल्म डायरेक्शन में आ गया, कंप्लीटली अलग
0: जी जी
1: स्ट्रीम। उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी, मुझको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा रोल है ये वो, तो ऐसे मिल गया और मैंने कर दी। अब हमेशा एक्टिंग में, कल भी बच्चों के साथ एक वर्कशॉप किया था, मैंने कहा एक्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कॉन्फिडेंस, वो बहुत तरह एक चीज नहीं होती, बहुत चीजों से आती है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है, थोड़ा रिस्पेक्ट से आती है, थोड़ा आपने अच्छा काम कर लिया हो तो उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुका था, तो उस यूनिट पे जब गया तो सब दोस्त थे, मनोज वाजपेयी हो, ये वो नवाज हो, तब सब दोस्त हैं
0: जी,
1: अनुराग कश्यप दोस्त है आपका, कैमरामैन को आप जानते हैं, तो मुझको कोई ऐसी जगह नहीं गिरी कि अरे मैं अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ कर रहा तो शायद मैं घबराता थोड़ा, तो इसलिए वो हो गया कॉन्फिडेंस में और
0: जी
1: तो हो गया।
0: वो जो थप्पड़ मारे थे आपने फटाफट, वो असली वाले थे कि नकली थे? क्या हुआ था फिर उसके बाद?
1: वो विपिन को जब मारता हूँ, कहाँ गाड़े थे उस तो मैंने विपिन को बोला, विपिन मेरा सीनियर है नेशनल स्कूल ड्रामा से, मुझसे तो 3-4 साल सीनियर है, तो मैंने विपिन को बोला, अभी मैंने विपिन यार से जैसे हम लोग फिल्म नहीं मारते हैं वैसे मार दो क्या? कह नहीं नहीं मारना मारना। मैंने कहा यार लग जाएगी, मेरा थोड़ा भारी हाथ है। कह नहीं नहीं कोई नहीं,
0: अच्छा
1: कह दिया तो मैंने मार दिया।
0: फिर बाद में झगड़ा नहीं हुआ?
1: नहीं नहीं झगड़ा बिल्कुल।
0: अच्छा ओके। और बात एक्टिंग की चली है तो शाहरुख खान के साथ भी तो आपने एक फिल्म की है दिल से?
1: हाँ डायलॉग्स लिखे थे उसके
0: जी,
1: तो मैं पूरी शूटिंग में था
0: जी
1: उस दिल से की जी।
0: तो शाहरुख खान के साथ लिखना आपके लिए एक अलग अनुभव रहा होगा, कुछ अनुभव?
1: मैं शाहरुख के लिए नहीं लिख रहा था, मैं मणि सर के लिए लिख रहा था, मणि रत्नम जी के लिए लिख रहा था, मैं लिख क्या रहा था, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था एक्चुअली में।

0: तो तिग्मांशु जी, ये गाना हमने आपकी ओर से नजर किया अपने श्रोताओं को, और आपकी एक लंबी यात्रा है, आपका परिवार इलाहाबादी है मन से, आप अक्सर कहा करते हैं, तो एक बार फिर इलाहाबाद की गलियों में चलते हैं और याद करते हैं आपकी माँ को। आपकी माँ से जुड़ी हुई कौन सी याद है जो आप साझा करेंगे? संस्कृत की प्रोफेसर थी वो?
1: जी जी मेरे पिताजी वकील थे, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने। वो बहुत ज्यादा दिन जी नहीं पाए वो, बट मदर मेरी पढ़ाती थी और दोनों चले जाते थे अपने वो हाईकोर्ट या अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए। हम तीन भाई थे तो हमारे घर में था आनंद कुकर, और वो चीज मैंने किसी और घर में देखी नहीं।
0: अच्छा,
1: इतनी खूबसूरत चीज थी कि जैसे उसके टिफिन बॉक्स होता ना, जैसे
0: जिसमें
1: हम लंच लेके ऑफिस में लोग जाते हैं, दो तीन उसमें वो होते हैं दाल चावल डब्बे होते हैं, उसमें वो बड़ा सा एल्युमिनियम का था और नीचे उसमें आप कोयला जला दीजिए।
0: अच्छा
1: हाँ।

0: अब इसलिए बड़ा स्मोकी फ्लेवर भी होता ना। और जो नीचे एक उसमें दाल रख लीजिए, फिर थोड़ा चावल रख दीजिए, फिर जो सब्जी उबल उबल जाए घर आए सीधे काटे छोंक दे बन गई, उस तरह की आलू या परवल या इस तरह की चीजें आप ऊपर रख दीजिए। और हम लोग आते थे 1:30-2 बजे स्कूल से तो, और फट से बना बना खाना मिलता है गरम गरम। तो ये आनंद कुकर बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी, वो पता नहीं गायब होगी, लोगों को रखना चाहिए अपने घर में उसको। तो फ्लेवर भी खाने का बहुत अच्छा आता है
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: तो कोयले में पका हुआ एक तो इधर ही बचता है और इतना डिलीशियस खाना बनता है। तो मदर फिर आती थी इलाहाबाद की गर्मी, तो आपको पता ही आप भी वहीं की हैं।
1: बिल्कुल भीषण गर्मी,
0: भयंकर गर्मी। तो तब वो रिक्शे में आती थी, एक रिक्शा वाला बेचारा उनको ढो के सबको, तब तभी रिक्शा ही चलता था
1: जी।
0: तो वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, नए नए फ्लैट सिस्टम इलाहाबाद में आया था, तो हमारे घर वालों ने खरीद लिया था एक फ्लैट, आज भी है वो फ्लैट। तो दिन में आती थी 3:30-3 बजे में, भीषण गर्मी, और रिक्शे वाले को ऊपर ले आता, रिक्शे वाला पसीने से लथपथ होता था
1: बिल्कुल।
0: लेकिन उनसे मैंने एक चीज की, जब वो आती थी मतलब रिक्शे वाले को पानी पिलाओ, पानी पिलाने के पहले उसको गुड़ दो।
1: क्या बात है, ये वहाँ का चलन है।
0: मैं बड़ा सा एक ढेला गुड़ का उसको रिक्शा वाले को देता था, वो पहले बेचारा गुड़ खाता था और फिर वो ठंडा पानी पीता था और बहुत दुआएं देके जाता था। ये हम हर रोज होता था।
1: क्या बात है।
0: तो ये चीज मुझे बहुत याद है अपनी मदर की,
1: ये सिखाया। और जी, और आपकी फिल्मों को जब उन्होंने देखा, निर्देशन किया, तो उन फिल्मों में कुछ बारीकियां वो समझाती थी।
0: उनको प्रॉब्लम होती है मेरी फिल्मों से कि उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा खून गोलियां बहुत चलती है, तो उनको भी इस बात का वो, उनको वो है, वो एतराज करती है, इस पे कैसी फिल्में बनाती हो।
1: तो आपने बात मानी नहीं उनकी एक कोई प्रेम कहानी लेकर आइए और बड़ी संवेदनशील, जहाँ प्रेमालाप हो, जो इलाहाबाद की गलियों में होता है।
0: हाँ नहीं, पान सिंह तोमर जैसी फिल्म तो उनको भी अच्छी लगी थी, उसमें फिर अवार्ड कभी मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाती है वो।
1: किसे नहीं अच्छा लगता है। पान सिंह तोमर एक बेहतरीन फिल्म थी, हम सब ने देखी है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सचमुच इरफान की एक्टिंग, जब भी पान सिंह तोमर की बात चलती है तो इरफान का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने तो ये इलाहाबाद का जिक्र किया, माँ का जिक्र किया, और आपके भाई भी अभी जज है इलाहाबाद में।
0: अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे और लास्ट ईयर अगस्त में रिटायर कर गया
1: जी। तो वो जो परिवार इतना आपका, क्या कहते हैं इलाहाबाद में जो भाषा कहते हैं दबंगई, तो वो दबंगई आपकी फिल्मों में भी कहीं आप लाते हैं। और छोटे शहरों के जो कस्बे के संवाद होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, किरदार होते हैं, वो आपकी फिल्मों में खूब दिखाई देते हैं। तो वो क्या इलाहाबाद की देन है कि आपके निर्देशक की कलाबाजी है?
0: नहीं, एक बचपन से मुझे फिल्में ही वो पसंद थी जिसमें थोड़ा से इस तरह के एलिमेंट्स हों, जो किसी के आदेश का पालन नहीं करते वाले किरदार जो जो किसी से दब के नहीं रहते हैं, क्योंकि इलाहाबादियों में एक बात होती है, दब के नहीं रह सकता किसी से। तो पता नहीं क्या बात थी, मुझे फिल्में भी ऐसी अच्छी लगती थी, मुझे लव स्टोरीज पसंद ही नहीं आती थी। तो ये टेस्ट वाली बात है कि आपको कौन सा खाना पसंद है, उसी तरह की चीज थी मुझको थोड़ा, जिसमें पोस्टर में अगर पिस्टल है तो वो पिक्चर देखनी है, इस तरह का था। वही चीज चली आ रही है, तो मैं बनाता भी वैसी फिल्में हूँ। लव स्टोरीज मैंने शायद एक ही बनाई, वो चली हुई नहीं
1: साहब वो जी, और उसमें वो गाना भी खूब मशहूर हुआ था, आंखें भी दिल की जुबान,
0: तो हासिल, तो
1: हासिल का है। और साहब बीबी गैंगस्टर में भी खूब गोलियां चली हैं
0: जी, जी, जी।
1: तो साहब बीबी गैंगस्टर से जुड़ी कुछ बात हमारे श्रोताओं को बताइए, शूटिंग के समय किस तरह का माहौल आप रचते हैं, आपका जो निर्देशक का?
0: साहब बीबी के मैंने 3 पार्ट बनाए थे, तो जो पहला पार्ट बन रहा था जब बनाया था तो हमारे पास कोई काम नहीं था किसी के पास, पान सिंह तोमर बन चुकी थी और फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। और मैं तो वेट करता था कि पिक्चर रिलीज होगी, अगर कुछ हुआ तो फिर अगली फिल्म मिलेगी, ऐसे ही चलता करियर। और फिल्म रिलीज ही नहीं कर रहे थे वो लोग, हम ऑफिस जाते थे, कुछ नहीं करते थे, फिल्में देखते थे और टीटी खेलते थे, चले आते थे। तो ऑफिस में कई लोग आते थे, रणदीप हुड्डा भी आता था, वो भी टीटी खेलता था हम लोगों के साथ, और जिमी तो खैर दोस्त तो आता ही था। तो फिर सोच, मतलब उसी वक्त ये डिजिटल नेगेटिव गया और डिजिटल आया हिंदुस्तान में, जब डिजिटल पे शूट करते हैं ना सब कुछ
1: जी जी,
0: तो उससे कॉस्ट बहुत कम हो गई फिल्म बनाने की, बहुत ज्यादा। तो मुझको लगा कि मैं डिजिटल पे, मैंने कहा 1.5 करोड़ में फिल्म बना दूंगा, किसी को देंगे नहीं पैसा, जो भी खाना वाने का खर्चा है लोग थोड़ा बहुत करके 1.5-2 में बना दूंगा। और उल्टी बही गंगा, हमको, हमने पहले टाइटल डिसाइड किया साहेब बीवी, और मुझको साहेब बीवी गुलाम का एक इंडियन मॉडर्न वर्जन बनाना था।
1: जी जी जी,
0: वो बहुत अच्छी फिल्म है, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो पुनः गया गुलाम नहीं गैंगस्टर, अच्छा टाइटल, पहले टाइटल आया, फिर उस तरह की लोकेशन ढूंढने गए, जब लोकेशन मिली तो लोकेशन के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी गई उल्टा, पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है फिर जाते हैं हम लोकेशन ढूंढने, यहाँ उल्टी भाई सब भाई गंगा
1: जी।
0: ये कहकर हमने वो फिल्म बना दी और वो पिक्चर ने बहुत क्रिटिकल अक्लेम और चली भी पिक्चर वो
1: जी,
0: और उससे उसकी वजह से फिर सेकंड भी आई और फिर थर्ड भी आई
1: जी। तो तीनों को बनाने में जो कि पहली फिल्म पहली से मतलब दूसरी फिल्म पहली से और अच्छी हो और उत्तम हो, तो उसके लिए क्या खास ख्याल रखा आपने?
0: कुछ ऐसा ख्याल, मुझको तो उसी दुनिया में बनानी थी, कहानी का ही हर पहले का ही एक्सटेंशन था, सेकेंड और थर्ड भी। तो उसे सिर्फ गैंगस्टर बदलते हैं, पहली वाले में रणदीप हुड्डा गैंगस्टर थे, सेकंड वाले में इरफान था। तो पहली भी चल गई थी और तो सेकंड वाले में थोड़ा हमको मिल गया स्टूडियो फट से, बहुत झंझट नहीं हुआ
1: जी जी,
0: थोड़ा बजट भी थोड़ा बढ़ गया। तो उसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया पोलो मैचेस, जितने प्रिंसली वाले जो पोलो खेलते हैं उस तरह के मैचेस, और ये वो थोड़ा गानों में खर्चा ज्यादा, वो सब किया आपने सेकंड में
1: जी। एक झलक सुनते हैं गाने की, साहबीबी और गैंगस्टर, नूरा सिस्टर्स की आवाज में।

ये साहा बीबी और गैंगस्टर फिल्म का गाना था नूरा सिस्टर्स की आवाज में, और तिग्मांशु जी की ही ये फिल्म है। तिग्मांशु जी, हमारे बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं और आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं। एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आपने अभिनय

0: और निर्देशन दोनों में काम किया है। कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे काम करने में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस होता है?
1: दोनों अलग अलग चीजें हैं, अंतर क्या बहुत ही दोनों, मुझे मजा कैमरे के पीछे ज्यादा आता है, मुझे डायरेक्शन करने में ज्यादा मजा आता है। एक्टिंग मैं करता हूँ क्योंकि मैं बाय मिस्टेक एक्टर बन गया किसी तरह से, और वो लोगों को पसंद आ गया, तो अब मुझे कभी कोई रोल ठीक ठाक होता है या पैसे थोड़े ठीक ठाक मिलते तो मैं रोल कर लेता हूँ। बाकी मुझे बहुत शौक नहीं है एक्टिंग करने का
0: जी,
1: दुनिया का सबसे आसान काम है एक्टिंग।
0: अच्छा, तो उस समय आपका निर्देशक भी काम करता है आपके भीतर कि जो निर्देशक बोलता है वही करते हैं?
1: जी नहीं, आप उसको स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते कि आप कंप्लीटली स्विच ऑफ, तो लेकिन ये है कि डायरेक्टर कोई और होता है तो मैं ज्यादा सवाल जवाब करता नहीं हूँ। अंटिल एंड अनलेस बहुत ही मेजर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि जो वो डायरेक्टर समझ नहीं पा रहा, तब मैं कभी कभी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर वो अड़ा रहे तो मैं डायरेक्टर की ही बात मानता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर भी ऐसा ही करें, तो मैं भी डायरेक्टर की ही बात मानता हूँ, तो माननी भी चाहिए
0: जी।
1: तो लेकिन एंजॉय मैं ज्यादा डायरेक्ट करना करता हूँ
0: जी। एक श्रोता कह रहे हैं कि अवधि में कुछ बोल के बताइए।
1: अरे कहा तो... बताई भैया एक सवाल बढ़िया से पूछो तो बताई फिर तुमको।
0: तो बतावे कोनो शूटिंग से जुड़ी हुई कोनो बात याद हो तो बताओ जे।
1: अरे अब शूटिंग इतनी पिक्चर बन गई, इतने इतने कांड हुए हैं और इतनी कहानियां हैं कि सुबह से रात हो जाएगी।
0: तो एक आध कोनो छोटा सा अंश बता दे ताकि हमारा श्रोता खुश हो जाए।
1: नहीं ऐसे जब बहुत कुछ होता था कि एक जैसे पान सिंह तोमर की एक बार शूटिंग कर रहे थे हम लोग चंबल में, तो बहुत खूबसूरत जगह है चंबल, बहुत ही वो नदी इतनी खूबसूरत है, इतनी साफ, इतनी आप उसको आप ऊपर से देखें बोट से तो आपको नीचे तक दिखाई देता है,
0: ट्रांसपेरेंट है
1: एकदम, आपको नीचे कछुए और ये सब चीजें तैरती हुई दिखाई देगी, ब्यूटीफुल रिवर, और साथ में वो चंबल के घाटियां और रमेंस जो है। तो शूटिंग करते थे फिर सोचते थे यार, क्योंकि सारे दोस्त तैयार है, इतनी 100-150-200 की यूनिट है, हम लोग सोचते थे यार एक जैसे की जगह शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो हमने कहा साहब मैं रिफान हूं, मैंने कहा यार रात को ना बैकअप के बाद यही मंदिर बनाएंगे।
0: क्या बात है।
1: तो यही बैठा जाएगा,
0: डर नहीं लगता था रात की शूटिंग में?
1: उस नहीं, तो पुलिस तो रहती थी हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग सोचा ना कि बैठेंगे अपना कुछ मजा वजा करेंगे, यही आसपास खाना वाना कहीं बनवा लेंगे गाँव में, और पूरी तैयारी के साथ सब बहुत कि कैसे जिस कैसे जल्दी पैकअप हो और कैसे हम लोग सब रिलैक्स करें नदी के बगल में, घड़ियाल बहुत है वहाँ चंबल जो नदी है उसके कट पे एलिगेटर्स जो है बहुत सारे हैं
0: जी जी,
1: अरे मुंह खुले हुए सब लेटे रहते हैं सब। तब तक खबर आई, हमने पूरा इंतजाम कर लिया कि आग वाग का सबका, हर तरह की आग का, तो फिर पाया कि देखो शूटिंग देखने के लिए आते हैं ना बहुत सारे लोग, कौन
0: जी,
1: क्या है उसमें क्या मालूम, कहते नहीं डकैत लग गए हैं यहाँ पे 3-4 और आप लोग ये सब एंजॉय करना भूल जाइए, चुपचाप गाड़ी में बैठिए होटल जाइए।
0: तो
1: वही किया, नहीं तो पता चला कि जो हीरो है उनको उठा के ले गए, पकड़ बन गए, वो हम उनकी रैंसम दे रहे हैं वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं शूटिंग के दौरान, आपको क्योंकि लोकेशन नहीं होती है, आप थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस होना चाहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे किस्से इस तरह के
0: जी जी
1: बहुत, लेकिन डाकू आते थे हमारी शूटिंग देखने।
0: अच्छा, तो कभी आपको उनसे डर नहीं लगा, डराया धमकाया नहीं?
1: इस तरह के थोड़ी होते हैं
0: जी,
1: इस तरह के थोड़े गधे बेवकूफ थोड़ी होते बाकी लोग
0: जी,
1: उनको अगर किसी को किडनैप करना हो तो पूरे प्लानिंग के साथ आएंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसे वो किसी को
0: हार्म नहीं पहुंचाते, नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
1: अब वो पूरे एरिया में सब घर हर घर में बंदूकें हैं, क्या करेंगे डाकू परेशान।
0: और आप जैसे जो इलाहाबाद की जो दबंगई है, दबंग किस्म के इंसान तो डर ही नहीं सकते हैं, ये भी बात
1: ऐसी बात नहीं है, डर तो लगता है, सबको लगता है, मुझको भी लगता है
0: जी,
1: और लगना भी चाहिए,
0: बिल्कुल सही बात है। खतरों से खतरों का सामना करना ठीक है, लेकिन खतरों के खिलाफ खड़े होके अनायास मोर्चा लेना भी ठीक नहीं होता जी। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आज के दौर में जब सिनेमा तेजी से बदल रहा है तो आपको लगता है कि कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसे प्रस्तुत करने का तरीका?
1: फिल्म चलने के पीछे, अच्छी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों पे बात बोल सकता हूं, देखिए फिल्म के चलने के पीछे अच्छी कहानी हो जरूरी नहीं है
0: जी, कौन सी फिल्म चल जाए कुछ पता नहीं,
1: नहीं नहीं, नहीं, नहीं, उस पिक्चर का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपको क्या चाहे कैसी भी कहानी हो, सिंपल कहानी हो, लेकिन उसको जिस तरह से आप कह रहे हैं वो अंदाज आपका, उस फिल्म की पैकेजिंग, किस तरह से टाइटल्स आ रहे हैं, किस जगह पे गाना आ रहा है, स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं हम, मंजर कशी जिसे जावेद साहब तो पूछा गया था कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में फर्क क्या है, तो स्टोरी इज व्हाट एंड स्क्रीन प्ले इज हाउ। तो आपका अगर हाउ बहुत अच्छा है तो एक कमजोर या बहुत ही सिंपल सी सामान्य सी कहानी भी अच्छी फिल्म हिट बन सकती है। लेकिन अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म में तो यह है कि कहानी अगर हो तो फिर वो यादगार बन जाती है अगर कहानी अच्छी है तो।
0: जी बिल्कुल। तो आपको बतौर, चूंकि आप लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं, तो कभी अपने लिखे को एक निर्देशक के रूप में खारिज भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, कोई ऐसे उदाहरण देके बताइए हमारे श्रोताओं को कि
1: लिखना तो एक्चुअली सबसे पहली, जब क्योंकि मैं लिखता भी सारी फिल्म खुद की, वो सारी जितना भी अब तक काम किया मैंने खुद ही लिखा है सब, तो वो एक बहुत ही पैनी और उससे स्क्रूटनी से होकर गुजरता है। बहुत आलसी लेखक भी हूँ मैं, मुझे जल्दी भी नहीं लिखा जाता।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत टाइम लेता हूँ मैं। तो मैं, मुझको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कभी कोई खराब, ऐसे नहीं, मेरी सारी पिक्चर लिखा, बहुत सारी पिक्चर फ्लॉप ही है मेरी,
0: ये आप कह रहे हैं ना।
1: नहीं, सच बात है, उसमें उसमें क्या है, हर पिक्चर तो हिट, किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर का जिसका भी आप बड़े से बड़े के नाम लें, पूरे फिल्मोग्राफी में 3-4 पिक्चरें होती हैं जो अच्छी होती हैं
0: जी,
1: बड़े से बड़े की। बहुत एक्सेप्शनल कोई केस हो गया तो उसकी बात छोड़ देते हैं, बिमल रॉय को हटा देते हैं स्फेरिस से, और राज कपूर साहब और गुरुदत्त इन जैसे लोगों को हटा देते हैं, वो लोग तो लेजेंड्स हैं, वो लोग उन्होंने ग्रामर लिखा है सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, तो उनसे तो हम कभी देख भी नहीं सकते, सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं उनके सामने। बाकी जो और लोग जिन पे हम लोग जैसे डायरेक्टर आते हैं तो उन सबकी फेहरिस्त में देखिएगा, तो अगर 15 पिक्चर हैं तो 4 ही पिक्चर होंगी जो सही पड़ी होंगी, बाकी तो आदमी फेल करता ही करता है।
0: आपकी ये बात बड़ी मन भाई कि इतनी ईमानदारी से अपनी फिल्मों की समीक्षा खुद ही कर रहे हैं, और पुराने दौर के गोल्डन इरा के निर्देशकों की बात की और फिल्मों की बात की, तो पुरानी फिल्में आप देखते हैं, उनके गाने
1: सुनते हैं? पुरानी ही देखता हूँ
0: जी,
1: मैं तो आजकल पुरानी फिल्में ही देखता हूँ, कई फिल्में मिस हो भी, अब सब पिक्चर तो अच्छी नहीं देखी, कई पिक्चर मिसिंग भी है कहीं आ जाती, तो मैं यूट्यूब में या कोच काच के वो फिल्में देखता हूँ। मैं
0: कौन कौन सी फिल्में देखी इन दिनों?
1: मैंने अभी ख्वाजा अदम अहमद अब्बास की एक दो फिल्में देखी जो कि नहीं देखी थी, देव साहब की एक दो फिल्में थी जो मैंने नहीं देखी थी, और जैसे मेरी बहुत अच्छी पिक्चर जो मैंने नहीं देखी थी, इसका नाम था शंकर हुसैन
0: जी जी,
1: जिसके गाने
0: बहुत ही खूबसूरत
1: गाने, तो मैं गाने तो बहुत सुने थे, पिक्चर नहीं देखी थी, वो देखी मैंने। तो ऐसे ऐसे कई फिल्में हैं जो कि मैं देखता रहता हूँ, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी।
0: तो गाने आपकी जिंदगी में कैसे जुड़ते हैं, क्या दखल रखते हैं आपकी जिंदगी में पुराने गाने?
1: अब गानों के साथ म्यूजिक के साथ, जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो हमारा बैंड था तो अंग्रेजी गाने बजाते थे हम लोग
0: जी जी,
1: मैं रिदम गिटार बजाता था और गाता था
0: जी,
1: और मैं गाता ठीक ठाक था, तो मुझे सब जगह जितने इलाहाबाद के लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल में कॉम्पिटिशन या सब फेस्टिवल्स होते थे सब स्टूडेंट्स का अपना, तो उन फेस्टिवल्स में मुझको हमेशा बेस्ट वेस्टर्न सोलो मेल अवार्ड हमेशा मिलता था, तो मैंने चैंपियन था मैं उसका।
0: क्या बात है भाई,
1: तो जी आपने, मैं गिटार कभी बहुत अच्छा बजा नहीं पाया, रिदम बजा लेता था, लेकिन मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बनना चाहता था जो मैं कभी कभी नहीं कर पाया, मैं आज भी सोचता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता है, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बन जाऊँ।
0: क्या बात है।
1: वहां से सिलसिला शुरू हुआ म्यूजिक का, और फिर मेरे जो मैंने वही किया जो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने किया, तो उन्हीं की नक्शे कदम पे मैं चला हूँ। बड़े भाई साहब मेरे वो डिफेंस में चले गए, वो नेवी में थे, रिटायर कर गए, बट अभी भी उनका आर्ट और पोइट्री वो परसू करते रहते हैं गोवा में। बीच वाले भाई साहब वो जुडिशरी में चले गए, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के, भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो उनकी पूरी जिंदगी जुडिशियल, लेकिन वो भी मुझसे अगर वो फिल्मों में आते तो शायद मुझसे बेटर फिल्में कर होते वो
0: जी जी।
1: अब ये था, मैं छोटा था, हम लोगों में एज डिफरेंस बहुत है, 7-8 साल का डिफरेंस है भाइयों में मेरे और उनमें, तो उन्होंने छोटे भाई को प्रमोट किया कि करने दो उसको, तो उनकी बदौलत में बढ़ गया आगे
0: जी जी जी। तो अब यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए, शंकर हुसैन का भी जिक्र किया आपने, आपकी पसंद का कोई और गाना?
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है दाग फिल्म का
0: जी जी,
1: विच इज अ वेरी अनलाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सॉन्ग
0: जी जी, तो वही गाना हाँ। सुनते हैं
1: ये दिल में आज का

0: साई साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी, किशोर कुमार की आवाज और दाग फिल्म। तो ये गाना तो हमने सुना और हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, तो वो उन्हें बड़ी जिज्ञासा है। तो उनकी ओर से एक सवाल है, वो ये कि आपका नाम तिग्मांशु है और धूलिया है, तो ये दोनों का मतलब क्या है? दो नाम है या एक ही नाम है?
1: नहीं, नाम तिग्मांशु है, धूलिया मेरा सरनेम है
0: जी।
1: तो तिग्मांशु संस्कृत नाम है, उसका मतलब है सूर्य, सूर्य। तिग्मांशु तो तेज, जिसकी अंशु है, किरणें हैं, वो है तिग्मांशु। जो तो सूर्य सहस्त्र नाम, अगर आप जो सारे नाम सूर्य भगवान के आप सुनिएगा तो उसमें तिग्मांशु भी आता है
0: जी जी।
1: तो मुझको नहीं लगता मेरा नाम किसी नाम का कोई और दूसरा है, बड़ा सोच समझ के रखा गया मेरा नाम।
0: बिल्कुल, शायद आहट मिल गई थी आपके माता पिता को
1: क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाइयों का नाम हिमांशु सुधांशु है, वो चंद्रमा से वो है, तो वो उनको लगा एक तो सूरज हो
0: जी।
1: तो और धूलिया का क्या है, मैं भी पूछता रहता हूँ कि क्या रब है। तो मुझे जो मुझे एकदम साइंटिफिक और हिस्टोरिकली थोड़ा रेलिवेंट और करेक्ट लगता है वो ये लगता है कि शायद हम लोग धूले से हैं, महाराष्ट्र से
0: जी जी।
1: वैसे तो मैं हूँ उत्तराखंड।

0: का हम लोग पहाड़ के रहने वाले, तो तब तो उत्तराखंड तो 2000 में बना, उसके पहले तो यूपी का
1: जी
0: ही पार्ट था सब। तो मुझको एक मेरी थ्योरी लगती है, जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जब पेशवा साहब
1: जी
0: वहां से चल के पानीपत मतलब हरियाणा लड़ाई करने आया अहमद शाह अब्दाली से,
1: जी
0: तो वह सिर्फ सेना नहीं आती ना, तब तो साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, पुजारी भी आते हैं और गाने वाले भी आते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक का ट्रेवल होता है। तो मुझको लगता है कि पानीपत के उसमें फिर कई पुजारी जो है रह गए वहीं, और ये भी होता था कि वहां तक जा रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण्स होते थे उनको ये लगता था काशी तो हो आए या बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लें, ये सब बहुत होता था ना, वहां से आए
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: यहाँ तो
1: जी
0: हवाई जहाज तो थे नहीं कि पहुंचे घटाघर, तब तो पैदल चल रहा है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग धुले से थे और हम लोग रह गए वहां, और उनको अच्छा लगा शायद पहाड़ में रहना,
1: जी
0: तो उत्तराखंड में सेटल हो गए, ऐसा मुझे लगता
1: जी बात उत्तराखंड की चली है। उत्तराखंड के बारे में हम जानना चाहते हैं। तिग्मांशु जी, एक टिप्पणी है, जानी मानी कथाकार है मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने अभी टिप्पणी की है और इस पूरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रही हैं और लाइव फेसबुक पेज पर देख रही हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं।
0: जी,
1: और
0: बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और एक श्रोता ने पूछा है आपसे, विविध भारती ने हिंदी सिनेमा के संगीत को घर घर पहुंचाया है, आपकी फिल्मों में जैसे पान सिंह तोमर है, हासिल है, साहबीबी और गैंगस्टर में भी संगीत का एक खास मिजाज है, रेडियो पर बजने वाले पुराने गानों ने आपके संगीत के सेंस को कितना प्रभावित किया है?
0: मुझे हिंदी फिल्म म्यूजिक मुझे को मैं एक बहुत ऊंचे लेवल पर रखता हूँ,
1: जी
0: इससे बड़ा बढ़िया हिंदी फिल्म म्यूजिक, एक फ्यूजन म्यूजिक का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता।
1: जी जी
0: बाद में सब जैज और फ्यूजन म्यूजिक आया कि इंडियन क्लासिकल और जैज को मिक्स, वो सब हिंदी फिल्म म्यूजिक ये काम 200 साल पहले से कर रहा था,
1: बिल्कुल
0: बहुत इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड हिंदी फिल्म म्यूजिक है।
1: जी जी
0: तो उसको पसंद अगर मैं करता हूं या जो भी लोग पसंद करते कई कारणों से करते, कई को लिरिक्स बहुत पसंद आती है। अब पुराने जमाने में क्या था, जो कि लिरिक राइटर जो थे वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और हिंदी फिल्म के जो राइटर्स थे सबसे ज्यादा, बाकी लोग इतने थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, चाहे वो डायरेक्टर्स भी ही क्यों ना हो। तो हमारी हिंदी फिल्म म्यूजिक को इतना पॉपुलर करने के लिए पीछे लिरिक राइटर्स का हाथ बहुत, और मैं आज एकदम पूरे दम से बात कहता हूं कि गाने कविता की वजह से ज्यादा चलते हैं बजाय उसकी मेलेडी की वजह से,
1: क्या बात कही आपने, सच
0: लिरिक
1: में।
0: जी बिल्कुल, लिरिक्स की वजह से ज्यादा चलते हैं आज, उनको हम याद ही इसलिए करते हैं बिकॉज वो लिरिक्स हमको समझ में आती हैं और हमारे दिल को छूती हैं, और डेफिनेटली उसके बाद एक मेलेडी कॉम्पोजिशन का हाथ तो होता ही है, लेकिन इट्स फर्स्ट थिंग आई थिंक इट इज ऑल पोएट्री।
1: जी बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कविता होती है वो गाने खूब चलते भी हैं, इसीलिए शायद हमें पुराने गाने कंठस्थ होते हैं और नए वाले गाने हम बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे भी लगते हैं तो भी हम याद नहीं कर
0: बहुत
1: पाते हैं।
0: कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आजकल गाने को, उनको लगता है हम कोई बड़ी बात बात कह दें, अरे महसूस जिंदगी में किया नहीं से बात करने से थोड़ी होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ इश्क करना सीख लेना आसा, कि इल्म से शायरी नहीं आती है, इश्क तो कर। तो
1: जी बिल्कुल, तो
0: पुराने राइटर से जैसे हिंदी फिल्म म्यूजिक राइटर बहुत ग्रेट ग्रेट राइटर्स हैं, लेकिन जो सब वो राइटर जिनकी फिल्मोग्राफी बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा भी है परसेंटेज, वो मजरूह सुल्तानपुरी है, वो आनंद बख्शी जी हैं, सिंपल राइटिंग है एकदम,
1: जो सबके समझ
0: पिक्चरें
1: में।
0: देखती हूँ उनकी पहले सबसे ज्यादा है ना।
1: जी
0: तो उसका हिंदी फिल्म गाने लिखने का एक जो शऊर है वो सबको नहीं पास नहीं आता।
1: जी जी तो इस समय आप जो नए दौर

0: वो हिंदी गानों से कैसे जुड़ा?
1: देखिए, कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि मीडियोक्रेटी ही ज्यादा है। अच्छा काम तो कम ही होता है,
0: जी
1: बुरा काम ही होता है ज्यादा। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोशिश करते रहो, बस
0: जी
1: कोशिश करते रहो, भले ही हम लोगों की संख्या कम हो लेकिन फिर इवेंचुअली हम ही लोग असरदार बनेंगे। तो इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो, हार मत मानो कि यार ये गाने चलते नहीं है, कौन सुनेगा मेरे गाने, नहीं लिखो वही, इवेंचुअली कुछ ना कुछ मिलेगा।
0: बिल्कुल, आज के दौर में भी इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे जैसे गीतकार जो कविता रचते हैं अपने गानों में और हम सब पसंद करते हैं।
1: तो ये दिक्कत ये है ना कि हमारे फिल्मों में गाने खत्म हो गए।
0: जी,
1: प्रॉब्लम ये है, हम क्यों ये सारे जो हम भी गाने सुन रहे हैं पुराने गाने हैं, नया गाना को तो कोई सुनता भी नहीं है।
0: जी,
1: और पिक्चरों का जिस तरह से बजट हो गया है, जिस तरह की चीजें हो गई, आप गाना रख नहीं सकते कि तो गाने को रिकॉर्ड करने में पैसा खर्चा होता है, फिर उस गाने को पिक्चराइज करने में 3-4 दिन, एक अच्छा गाना हो तो 3-4 दिन तो जाएगा ही जाएगा।
0: जी,
1: तो वो बजट में बहुत बड़ा एक पैकेट सा बन जाता है म्यूजिक। तो सबसे पहले सोचा म्यूजिक को हटाओ, बैकग्राउंड में रख दो गाने, थोड़ा यही हो गया है। सिर्फ बड़ी फिल्मों में गाने होते हैं, बाकी छोटी फिल्मों में तो बैकग्राउंड में कुछ गाना, वो गाना चलते वलते भी नहीं है कुछ।
0: जी जी,
1: पहले जमाने में तो जैसे मैं हमेशा कहता था, अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर भी आती थी कोई मुकद्दर का सिकंदर, तो साथ में अमोल पालेकर साहब की भी गोलमाल आती थी, उसके गाने भी अच्छे थे।
0: जी जी बिल्कुल, और वो गाने याद किए जाते थे, गुनगुनाए जाते थे। और आज भी जो म्यूजिकल शो होते हैं, चाहे वो अंताक्षरी हो निजी तौर पर या कहीं, तो वहाँ पुराने गाने ही गाए जाते।
1: और देखिए बात ये, उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो बड़ी पिक्चर भी करते थे और वो छोटी पिक्चर पर, ये जानते थे कि छोटी पिक्चर का बजट कम होगा। आर डी बर्मन के आप मैक्सिमम गाने जो अच्छे हैं वो छोटी पिक्चरों के, आप उठा के देख लीजिए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो गोलमाल, बुड्ढा मिल गया, मासूम, ये सब पिक्चर छोटे बजट की पिक्चर है। फिर उन्होंने बड़ी, रमेश सिप्पी शोले, ये सब किया, लेकिन उनकी जो छोटी जो कम बजट की पिक्चर है, ऋषिकेश मुखर्जी की सारी पिक्चरें बेमिसाल, देख लीजिए कितनी फिल्में देख लीजिए, सब में म्यूजिक उन्हीं का है ना।
0: जी बिल्कुल,
1: छोटी फिल्म है, देख लीजिए आप।
0: तो यहाँ पर जिक्र गानों का है, तो कौन सा गाना आपकी पसंद का हम सुनवाए?
1: वो गाना बहुत अच्छा लगता है, वो फिर मैं लोगों को कभी इस बात का वादा कर लो, ओपी नैयर साहब का बहुत खूबसूरत गाना।
0: जी जी, वो गाना हम सुनवाते हैं, ये रात फिर ना आएगी।
1: जी,
0: ये वाला गाना आपको, आपने पसंद किया तो सुनते हैं।

0: विविध भारती के इस जश्न के मौके पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। तिग्मांशु जी, हमें बताइए कि एक फिल्म थी दिल से जिसमें आपने स्क्रीन प्ले किया,
1: डायलॉग्स
0: किए, और एक नाम है जानुसी, आपकी बेटी का नाम है। तो हमें ये पता चला है कि उसमें एक गाना है गुलजार साहब का लिखा हुआ, उस गाने से कहीं इंस्पायर होकर वो लिखा, क्या है कहानी, बताइए ना हमारे श्रोताओं को।
1: उसमें हुआ ये कि दिल से का जब म्यूजिक रिलीज हुआ तो उस पार्टी में सब लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है, जो होते हैं
0: तो अजनबी गाना,
1: हाँ, तो उसमें सीडी मिला। पिक्चर अभी घर के गाने पब्लिक में रिलीज नहीं हुए थे
0: जी,
1: तो मैं उसका सीडी, अब जवानसी मेरी बिटिया पैदा हो चुकी थी, उसका नाम भी रख हुए थे, उसका नाम रखा गया था श्रेयसी। तो
0: आपकी वाइफ ने रखा था?
1: हाँ, घर वालों ने भी मिलके, मदर ने भी सब सब करके कि श्रेयसी, मेरी मदर क्योंकि संस्कृत की है वो, तो नामों को लेके उनका
0: जी
1: हमारी फैमिली में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये हुआ कि मैं घर में वो सीडी लेके आया, उसमें गाना शुरू हुआ वो छैया छैया के बाद ये और फिर ये जब गाना शुरू आया अजनबी तू भी, तो उसमें हम लोग सुन रहे थे, गाने तो कमाल थे दिल से के, खैर आज भी झटका दे देते हर एक गाना उसका, तो उसमें वो जानसी कहा, और वे तुलकर जानसी वर्ड, बेटिया का नाम जानसी, मैंने कहा ठीक है, तो मैं कहता हूँ एक्चुअली बेटी बेटी का नाम गुलजार साहब ने रखा है।
0: क्या बात है। तो जानसी का असल में अर्थ क्या है?
1: जान जैसी सिंपल
0: जी। तो ये तो बिटिया की कहानी हो गई, और बिटिया भी फिल्मी दुनिया में आ चुकी है और आपकी तरह ही धमाके कर रही है।
1: तो अभी अभी जी अभी तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: आपको असिस्ट कर रही है?
1: हाँ।
0: ओ,
1: तो उसने 4 साल का कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, और उसके बाद जैसे होते हैं बच्चे पहले शॉर्ट फिल्म बनाना है पापा, इस जो सभी कब करते हैं वो करते रहते, फिर मैंने कहा थोड़ा रियल फिल्म मेकिंग में आ जाओ। तो वो मेरे साथ है अभी
0: जी। कौन सी फिल्म बना रही है
1: अभी? तो मैं बना रहा हूँ, तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: अच्छा,
1: तो बनाएगी
0: जी। तो उसने भी ट्रेनिंग ली बाकायदा?
1: जी, मैंने कहा ना 4 साल की, उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया।
0: जी। तिग्मांशु जी, आपकी बहुत सारी फिल्मों में जिमी शेरगिल रहे हैं, और तो जिमी शेरगिल, हालांकि अगर शायद वो देश से बाहर है, परदेश में है, नहीं तो आज आपके साथ वो यहाँ माइक के सामने होते और हमें लगता है कि और ज्यादा हमें रोचकता बढ़ जाती। तो उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ खास बात बताइए।

0: जिमी से ये था कि मुलाकात, जब पहली फिल्म कास्टिंग कर रहा था तो मैं उसमें जिमी से मिला, उसको चाहिए था उस जैसा जैसा है जिमी, बड़ा शरीफ लड़का, मेरा किरदार भी बहुत बहुत ही शरीफ सा था।
1: सलोने से दिखते भी हैं
0: हाँ,
1: पर्दे
0: तो उसमें कैरेक्टर का वो
1: पर
0: था, दिखाना था
1: जी।
0: कि किस तरह से एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ाई में है और थिएटर भी करता है, किस तरह से एक उसकी सोहबत खराब हो जाती है गुंडे के साथ, वो रहने लगता है और उसका एक कैरेक्टर बदलता है, फिर इवेंचुअली फिर वो संभलता है। तो मुझको चाहिए था कि उस तरह का एक अच्छा शरीफ बच्चा। तो जिमी के, और ये बात मैं आपको 2026 साल पुरानी बता रहा हूँ,
1: जी
0: तो
1: बताइए। बिल्कुल।
0: हाँ, तो उस वक्त हम लोग भी सब यंग थे और जिमी तो और भी शरीफ लगता था तब। तो ये हुआ, फिर ये क्या हुआ भाई, जैसे यारा दोस्ती बढ़ गई, मिलना जुलना, तो फिर इतनी सारी फिल्में की हमने साथ में।
1: जी। और आपकी एक फिल्म है बुलेट राजा,
0: जी
1: उसके बारे में जरा बताइए, उसकी क्या कहानी, कहाँ से आपके मन में आइडिया आया बनाने का?
0: अब
1: और
0: आया तो वो यूपी के कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनके उसमें से एक गैंगस्टर की कहानी से मैं थोड़ा उससे, उसके कारनामों से आप थोड़ा
1: इंस्पायर हुए।
0: इंस्पायर, नहीं वो कारनामे विचलित भी कर देते थे आपको सुन करके, और ये भी करते, लेकिन कितना इसमें हिम्मत कहां से आ गई ये सब करने की, है ना।
1: तो समाज के सामने सच्चाइयां लाना।
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समाज के सामने समाज से मैं सच्चाई है तो अखबार पढ़ के पसंद आ जाती है, मुझको अखबार थोड़ी बनानी, फिल्म बनानी, एंटरटेनिंग होनी चाहिए वो। तो मैं उस तरह का बदलाव बदलाव वाला परचम लेके नहीं चलता हूँ, मेरी फिल्मों में दिख जाता है कहीं ना कहीं, और वही काम है फिल्म का।
1: बिल्कुल,
0: हाँ
1: सच्चाई यथार्थ के
0: मतलब,
1: करीब।
0: हाँ लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। तो उस एक किरदार को मैंने दो में स्प्लिट कर दिया, तो एक बन गए हमारे सैफ साहब, सैफ अली खान, और दूसरा बन गए जिमी शेरगिल, क्योंकि मुझे दोस्तों की, मुझे दोस्ती बहुत प्यारी, एक ये रिश्ता होता है ना दोस्ती का,
1: जी बिल्कुल।
0: तो हासिल में डायलॉग भी, बाकी रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, दोस्ती के ऐसा रिश्ता जो आदमी खुद बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा तो मिले हैं, आपने क्या किया उनको कर, लेकिन दोस्त आप खुद बनाते हैं, तो
1: जी।
0: आपका जो एक वो मोरालिटी का और गुड और बैड का जो सेंस आपके अंदर है, जो इनबॉर्न है, वो आपको उस दोस्तों को उस तराजू पे खरा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, ये आपका खुद का अचीवमेंट है।
1: जी
0: तो इसलिए मैंने, मुझे दोस्त दोस्त का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बुलेट राजा में ये दोस्त दो दोस्त रखे।
1: जी। और इसी फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी
0: हाँ
1: थे,
0: बाकी
1: और
0: उसमें और
1: सैफ
0: भी
1: अली
0: कैरेक्टर्स
1: खान।
0: है। जी,
1: तो सैफ अली खान और गुलशन ग्रोवर से जुड़ी हुई, जब आप शूट कर रहे थे तो कुछ खास बात बताना चाहेंगे?
0: अब उनके बारे में, उन्होंने तो इतनी फिल्में की हैं, सब लोग उन्होंने, सैफ के साथ दोबारा मैंने कभी काम नहीं किया, ना ही गुलशन जी के साथ काम किया, मिलते हैं तो मैंने सैफ के साथ किया एक्टिंग की, मैंने एक बार वो बैंड शायद भी होगा था, एक शो था तांडव, जिसमें कुछ उन्होंने कुछ गलत गलत चीजें दिखाई, उसके वजह से उसमें सैफ था। मैच शुरू के दो एपिसोड में था, पहले मैं तो मर जाता हूँ, बाकी दो एपिसोड मेरी मतलब बतौर लाश में पड़ा हूँ। तो उसमें सैफ का मैं फादर बना था, प्राइम
1: जी
0: मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसे दिखाया था,
1: जी जी
0: तो बस वो काम हमने साथ में किया, उसके बाद हमने कभी साथ में काम किया नहीं।
1: यहाँ अब गानों का फिर से जिक्र करते हैं, और बताइए आपको पुराने गाने ज्यादा पसंद है? हालांकि नए दौर के एक कामयाब डायरेक्टर पसंद करते हैं ज्यादातर पुराने गाने, तो यहाँ पर कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
0: आप वो दिल तो है, दिल
1: मुकद्दर का सिकंदर।
0: मुकद्दर का, वो कल्याण जी आनंद जी का, ये भी बड़ा यूनिक सॉन्ग है,
1: जी
0: बहुत बहुत खूबसूरत गाना है।
1: आप चाहें तो इस गाने में सुर मिला सकते हैं,
0: हाँ नहीं,
1: आपने कई
0: अरे
1: बार
0: लता जी गा रही, मैं कहा सुन ला।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: दिग्वांशु विविध भारती के सजीव प्रसारण में हमारे सामने बैठे हैं और आज विविध भारती का जश्न हम मना रहे हैं। 70वां स्थापना दिवस है ये। और तिग्मांशु जी, आपने छोटे पर्दे के लिए भी बहुत काम किया है, लिखा भी है और एक्टिंग, आप कहते हैं कि एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक्टिंग भी की है। छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों आपको कौन सा ज्यादा आकर्षित करता है?
1: नहीं, हमेशा से बड़ा पर्दा ही आकर्षित किया है। तो छोटा पर्दे पर इसलिए कर रहे थे बिकॉज घर भी चलाना था तो, और उस जब भी लेकिन हमने, मैंने जब टीवी किया और मेरे साथ के जितने भी और हमारी क्लास के जितने डायरेक्टर हैं मेरे, मेरी कक्षा के जो हम लोग हम उम्र हैं सब थोड़े थोड़े, तो सबने टीवी किया। बट उस वक्त टेलीविजन अच्छा होता था, भले हफ्ते में एक एपिसोड आता था, आप उसको बनाते थे आराम से 3-4 दिन में एक एपिसोड। अब उसके बाद वो डेली सोप हो गया, एक दिन में आधे दिन में बनाइए, तो उसकी क्वालिटी गिरती चली गई। बट एक्चुअली वो शायद उस तरह के टेलीविजन की डिमांड थी। तो हमने जब टीवी कर रहे थे तो अच्छा टीवी होता था। उसके बाद फिर जाना तो फिल्मों की ही तरफ था।
0: जी जी, तो आप अपने वाले दूरदर्शन की बात कीजिए। जब इलाहाबाद में रह रहे थे या उत्तराखंड में रह रहे थे तो दूरदर्शन, एक दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, जो धारावाहिक होते थे, वो आज भी हम सबको याद हैं। तो वो कुछ यादें आप ताजा कीजिए।
1: बहुत सारे थे, कितने थे, मतलब बाप रे। श्याम बेनेगल जी का आता था के, फिर भारत एक खो जाता था,
0: फिल्मों का इंतजार होता था,
1: फिल्मों का हर संडे को इंतजार होता था, इलेक्शन होते थे, हम लोग छोटे थे, हम इलेक्शन से हमको लेना देना नहीं, इलेक्शन के टाइम पे फिल्में तो खूब दिखाई जाती थी, दिन में 3-3, 4-4 पिक्चर है, तो उसका हम लोग घर में बड़े लोगों को चुनाव के नतीजे पे थे हम लोग को था कि पिक्चर कौन सी देखी जाए। तो तब तो बहुत अच्छा टीवी था, बहुत ही खूबसूरत था।
0: जी जी, तो पढ़ाई जब आप करते थे तो घर वाले कहते थे, रोकते थे, मतलब कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हो फिल्म, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसी कोई याद?
1: इलाहाबाद में टीवी ना बहुत बाद में आया,
0: एशियाड जब शुरू हुआ था
1: तब आया था 82 में
0: जी।
1: तो और जब आया था तो सबके घरों में टीवी होता भी नहीं था।

0: धीरे धीरे आना आने लगा लोगों के यहाँ। तो जब तक टीवी आया तब तक हम लोग के घर वालों के हाथ के बाहर हो चुके थे बड़े हो गए थे थोड़े तो, लेकिन उतना टीवी के सामने मैंने छोटे छोटे जब होते तब बहुत गुजारा है, लेकिन उसके बाद नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी हम लोग ज्यादा, जैसे मैंने कहा थिएटर करते थे, तो कहीं बजाना है या फंक्शन में इधर उधर, तो घर के बाहर ही ज्यादा रहते थे, तो टीवी देखना इतना होता नहीं था।
1: थिएटर के लिए जब आपने शुरुआत की, मतलब थिएटर की ओर गए, एनएसडी किया, तो घर वाले आपके इतने सब पढ़े लिखे, माँ प्रोफेसर, पिताजी जज, तो कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो फिल्मी दुनिया में? अमूमन ये सुना है कि डायरेक्टर, मतलब इस दुनिया में जो आना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ो लिखो कुछ बनो, इस दुनिया में मत जाओ। तो
0: कभी कभी नहीं मना किया, कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा प्रोत्साहित ही किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर दोनों फिल्में खूब, खुद भी बहुत फिल्में देखते थे, और शायद मैंने छोटा, सबसे छोटा होने का मुझे, मैंने उसका नाजायज फायदा भी उठाया, तो मुझे डांटा भी कम जाता था।
1: दुलारे बेटे थे?
0: हाँ, दुलारा बेटा था जैसे मैंने बड़े भाइयों में 7-8 साल का डिफरेंस था, तो जो भी होता था उनके साथ होता था, मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो जब तक मैं एनएसडी में गया तब तक तो माय फादर हैड पास्ड अवे, गुजर गए थे, लेकिन मदर ने हमेशा पूछे जाओ।
1: तो मुंबई आए शुरुआत में, तो मुंबई की शुरुआती संघर्ष किस तरह के थे?
0: मैंने बिल्कुल कोई संघर्ष नहीं किया। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने वड़ा पाव खाया है और लोकल ट्रेन में चढ़ा हूँ और चढ़ा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ
1: तकलीफों से
0: बिल्कुल नहीं। मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि घर वाला, मेरे भाई, मदर फादर मुझको ऐसे मिले जिन्होंने मुझको इस तरह की लाइन में भी पहले तो एनकरेज किया कि म्यूजिक बजाओ, करो थिएटर, कभी नहीं रोका। उसके बाद ड्रामा स्कूल गया था, मदर ने भी कभी नहीं रोका कि जाओ। मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ड्रामा स्कूल में
1: जी।
0: तो और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर मैं फिल्में कर रहा था, उस वक्त होता नहीं। फिर बैंडेड क्वीन भी तो शेखर जी के साथ में मुंबई आ गया था, जो मुंबई आया तो मैं ऑलरेडी शेखर कपूर का असिस्टेंट था, तो मुझे कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत, पैसा नहीं मिलता था वहां, लेकिन कहने को होता था कि आप शेखर कपूर के असिस्टेंट हैं, तो उनका नाम सब जानते थे, रिश्तेदार भी सब जानते थे, अच्छा शेखर कपूर, बाकी डायरेक्टर का नाम तो लोगों ने सुने नहीं थे, शेखर कपूर का नाम सब जानते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि वो डिग जैम के मॉडल भी हुआ करते थे, तो लोगों को पता उनके असिस्टेंट हो, ठीक है
1: जी।
0: तो ऐसे करते करते मैं काम करने लगा। मैं जब जहाँ आया तो पहले मैं साल भर अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहा, वो नेवी में थे, ये जो इधर INS हमला जाते हैं
1: जी जी,
0: वहाँ रहते थे, तो मैं साल भर उनके साथ था, तो कोई दिक्कत नहीं, नेवी में आप हैं, बढ़िया सा कमरा है, तब नेवल फैसिलिटी, नो प्रॉब्लम।
1: तो हमारे जो युवा श्रोता हैं जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहिए कि क्या हो तो मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, और क्या ना हो तो ना आए।
0: ये मैंने कल ही कुछ बच्चों को ये बोला कि जिंदगी में इस बात का एहसास अगर हो जाए कि मैं कर पाऊंगा कि हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा,
1: बिल्कुल,
0: इसका एहसास आपको अगर हो गया ना, वो सबसे बड़ी चीज है। तब तो आपको लगे कि बॉस मैं कर पाऊंगा, तब तो आगे बढ़ो, लेकिन कहीं भी लग रहा है कि नहीं कर सकता तो एकदम पीछे मुड़ जाओ, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप डर के भाग गए, आप रणछोड़ नहीं कहलाओगे, आपने अच्छा करेक्ट डिसीजन। मैंने जब एनएसडी में, मैं थर्ड सेकेंड ईयर में था, मुझको पता चल गया था मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, और मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था
1: जी जी।
0: नहीं तो मैं एक्टिंग करके आता तो मुझको बालाजी के एक आध सीरियल में कुछ एक आध रोल रोल करके जिंदगी खत्म हो जाती
1: जी, बिल्कुल। और आप तो हमें आपकी इतनी सारी फिल्में कैसे मिलती, तो और आपकी एक फिल्म है साहब बीबी और गैंगस्टर, जिसका जिक्र श्रोता भी बार बार कर रहे हैं और हमने भी किया, उसका एक गाना है जो हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, उस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ गाना?
0: ये पार्ट टू का गाना है, जाती इसको पीयूष भाई ने गाया, पीयूष मिश्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाया, और छोटा संदीप ने इसको कंपोज किया, लेकिन कंपोज करते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि ये, और संदीप नाथ एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर है, इलाहाबाद से भी उनका कनेक्शन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़ावा से कई गाने, पान सिंह तोमर के भी गाने लिखे संदीप नाथ ने, तो ये सोच के कि ये भाई गाना जो है गाएंगे पीयूष भाई, तो उसी तरह से गाने का मीटर रूटर की जो उनको, जो उनके इमेज के साथ जाता है, लोग पीयूष भाई को ऑन स्क्रीन भी देखा है लोगों ने, तो आप सुनाइए गाना, बड़ा बहुत बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया गाना है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं
1: जी, सुनते हैं ये गाना।
2: छल कपट प्रपंच है, हर स्वार्थ का ये मंच है, यहाँ रक्त से

0: खुश है, मुर्दे में भी एक जोश है, ईर्षा ही शब्द कोश है।
1: आप भी राजा हैं और हम भी, मगर आपका खून आलसी हो चुका है, हमारा नहीं।
0: दुनिया तनी हुई, हर बात है बनी हुई।

0: तो ये गाना हमने सुनवाया तिग्मांशु जी आपकी फिल्म का गाना, और आपकी ओर से हमने नजर किया। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आप जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं, तो क्या आगे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी आप द्वारा या अन्य फिल्म मेकर्स के द्वारा भी?
1: मैं ऐसे कोई बहुत लीक से हटके नहीं बनाता हूँ। अगर आप मेरी फिल्मों की पूरी मतलब मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखिएगा तो मैं बहुत ही एक कमर्शियल जो चलने वाली फिल्में होती है ना उसी गली की फिल्म बनाता हूँ।
0: जी जी।
1: कहने का थोड़ा अंदाज मेरा फर्क है सिर्फ। जिसको आप बोलते हैं एस्थेटिक्स, वो मेरा बाकियों से फर्क है।
0: जी,
1: बाकी
0: जी।
1: मैं कोई लीक मैं लीक से बिल्कुल हटना भी नहीं चाहता। मैंने लिए फिल्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग। वो कोई बोरिंग स्लो पेस्ट वो सब चीजें मुझे मैं नहीं देखता भी नहीं, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, मैं कभी बनाऊंगा मैं।
0: जी जी।
1: तो वो एस्थेटिक्स जो है वो ओवर द इयर्स एक तो आपके खुद की जिंदगी का एक्सपीरियंस से आता है, और फिर एक होता है आपका एक्वायर्ड विजडम जिससे मैं आपसे मिलूंगा, आपकी आपने कोई बात कही मुझसे, मैंने आपसे बात महसूस लगा कि आप अच्छी बात कर रहे हो, किसी दोस्त से किसी नए आदमी से मिलिए, कोई फिल्म देख के कोई नॉवल पढ़ के, आपकी जो एक्वायर्ड विजडम है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस तो जिंदगी में एक बार आके फिर टिक जाता है, फिर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते आप।
0: जी जी बिल्कुल।
1: आप एक सेट लाइफ में जीने लगते हो, फिर आप बहुत कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जो एक्वायर्ड विजडम है जो आपको बाहर चीजों से मिलती है उसका जो स्रोत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। वही आपके सारी कला, आप किस तरह से कहानी कहना चाहते हैं, सबके पीछे वही है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जो एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो फिल्म बनाते रहेंगे। जिन्होंने एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया कि मैं हो गया बॉस गॉडफादर, अब तो मेरे बराबर कोई है नहीं, उसका पतन निश्चित है।
0: जी बिल्कुल। 2026 की फिल्म है घमासान आपकी फिल्म।
1: जी जी।
0: तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है शूटिंग में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा या कठिन रहा, या इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात हमारे श्रोताओं को बताइए?
1: कठिन तो कुछ नहीं होता
0: आपके लिए तो बिल्कुल नहीं।
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब जो काम आप कर रहे हैं आपने किया, आपको मालूम है कैसा होना है। वहां पे कठिनाई होती है अगर आप ऐसी जगह पे, जैसे हमने वो घमासान की शूटिंग हमने की चित्रकूट के एरिया में, जहाँ पे रामचंद्र जी ने 14 साल पे 11.5 साल अपने वनवास का वहां बिताया। और ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका, बांदा वाला, रीवा, सतना, मध्य प्रदेश, यूपी, इलाहाबाद के भी बहुत नजदीकी है।
0: जी जी।
1: तो वहां पे एक बार जंगल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सड़क बहुत दूर नहीं थी, वहां पे पुलिस भी थी हमारे साथ, वो बैठे रहते थे अपने जीप में, तो शूट कर रहे थे हम लोग। सडनली मैं आगे और लोकेशन देखते हैं जंगल में, थोड़ा सा एक दो असिस्टेंट के साथ बढ़ गया आगे, जाके मैंने देखा कि एक पेड़ से एक मोटे सा नायलॉन का जो तार, ऐसे रस्सी होती है, वो ऐसे लटकी हुई थी, नीचे कुछ टूटी पट्टी चप्पल दो पड़ी हुई थी, और उस नायलॉन के तार से कुछ फटे फूटे कपड़े ऐसे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आदमी था यहाँ, या तो खा गया जंगली जानवर, ये क्या हुआ, सबमरी, या तो मार के लटकाया गया है या खुदकुशी की है किसी ने। और देख के मैं सन्न रह गया, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि आदमी लटका होगा, उसको जंगली जानवर खा गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन बाकी उसका सब कुछ पड़ा था, चप्पल वही नीचे थी, कपड़े स्ट्रिंग्स लटके हुए थे, और क्योंकि नायलॉन की थी वो टूटी भी नहीं थी, पक्की सी थी। अरे देख के ऐसे दहशत होगी सबको कि ये क्या देख रहे हैं हम। तो उसका ये एक्सपीरियंस था। फिर हमने वहां देखा, वहां पे एक स्पॉटेड डियर था, बड़ा सा मेल, उसको जंगली कुत्तों ने दौड़ा के हमारी आंखों के सामने मारा जंगल में। तो ये सब चीजें हाँ, थोड़ा एक्साइटिंग हो जाती है फिल्म मेकिंग, तो मजा आ जाता है आपको।
0: जी जी। डरावना भी लगता है लेकिन रोमांचक भी होता है। तो यहाँ क्या घमासान फिल्म का ही गाना सुनवाएं?
1: जी सुनाइए, धाएं धाएं
0: सुनते हैं।

0: तिग्मांशु जी, ये घमासान फिल्म का गाना था और काफी चर्चित है इन दिनों, ये गाना भी खूब बज रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसे हम वायरल कहना कहते हैं इंस्टा और फेसबुक के युग में। अरशद वारसी हैं इसमें और प्रतीक गांधी हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: नहीं, इस फिल्म के बारे में तो मैंने बताया, मैंने कि वहां पे एक लटका हुआ आदमी के मतलब अस्थि पंजर दिखाई दिया।
0: अब हमें बताइए कि एक लेखक और निर्देशक पढ़ता भी बहुत है और पढ़ना आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जानकारी भी देता है। तिग्मांशु धूलिया जी क्या पढ़ते हैं अपनी फिल्मों के नजरिए से कि एक अच्छी फिल्म दे दर्शकों?
1: मैं फिक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं और चीजें पढ़ता हूँ, मतलब बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क या पॉलिटिक्स पे किसी ने या जियो पॉलिटिक्स पे किताबें, इस पे मैं ज्यादा इन चीजों को पढ़ता हूँ। फिल्मों पे कुछ का किसी ने कुछ अच्छा नई किताब कुछ अच्छी लिखी तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिक्शन मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता है फिक्शन बहुत। तो
0: जी,
1: मैं और तीन तीन चार चार किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, मैं किसी का एक चैप्टर किसी का दूसरा चैप्टर ऐसे पढ़ता हूँ मैं। हाँ,
0: और अब बताइए कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए और आपकी आने वाली फिल्म, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है?
1: आने वाला प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस जो कि आपको तो पता ही होगा, उदय प्रकाश जी जो हिंदी के बहुत महान लेखक हैं, उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उसको मैंने अडेप्ट किया है। उसका नाम है वो फिर कभी दिखा नहीं।
0: क्या बात है।
1: और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वही है, जब भी आप कुछ नया अलग तरह का काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अड़चने आती है, तो उन अड़चनों का सामना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिल्म शुरू कर दूँ।
0: जी जी, और अब हम हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पैगाम दीजिए।
1: जो मैं क्या पैगाम दूंगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ पैगाम दूँ। सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सब अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर मैं उनको पैगाम दूंगा, जीते चलो, जिंदाबाद रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिलके इस खूबसूरत दिन में, आज विविध भारती के 70 इयर्स पूरे हुए हैं, उसको याद करते हुए विविध भारती के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे जिंदगी में।
0: जी, आपकी पसंद का ये आखिरी गाने की झलक।

0: ये श्रोताओं से भी ये कहना है, तिग्मांशु जी विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और ये डेढ़ घंटे कैसे बीत गए हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आप फिर आइए, वादा कीजिए कि विविध भारती के स्टूडियो में आप फिर आएंगे और आज के इस जश्न में आप शामिल हुए। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं जरूर आऊंगा, जल्दी मिलेंगे
0: जी। शुक्रिया।

0: Sound, camera, action!
1: La la la la, la la la, la la la la la, la la la la la.
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: खूब मशहूर। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी-मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
2: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
3: तो स्वागत है आपका।
2: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए हैं और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
3: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
2: तो जब तक थोड़ा पूर्णिमा में कन्वर्ट
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या है ये, मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, वो रबिश। इतनी बड़ी मैं ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारी हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात
2: जी।
3: अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ, वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप पाया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी ना बड़ों।
2: और ये दौर बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए,
3: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा, उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना, नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे। करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स में जिंगल क्वीन, मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं। करते करते वक्त बीतता गया, फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का।
2: जी बिल्कुल,
3: है ना,
2: बिल्कुल,
3: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे, ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से उनके यहाँ पे ये चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं-9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही, सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म, वो ही हम करेंगे फिल्मी गानों पे, हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया मोरया गजानना, मोरया गजानना, सुख दे सकल जना, ऐसे
2: जी।
3: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले उनकी जितनी टीम थी, जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
2: जी
3: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम, नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका
2: जी,
3: उसमें मेरा नाम पूर्णिमा, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों, बाकी जो टीम था उनका, कि सुषमा श्रेष्ठा, पूर्णिमा श्रेष्ठा, एकदम से क्लिक हो जाएगा।
2: हाँ, हाँ।
3: पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहाँ आ गए उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदाकिनी जी। तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी हैं। मैं कई सालों से उससे राखी बांध रही हूँ। कहा छोड़ सुषमा छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूंगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में दो पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस उन्होंने ही मुझे, अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
2: जी।
3: तुम ताना ना ना ताना टर टर ये दिल है दीवाना,

0: आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी। बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना, तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी।
0: बिल्कुल।

0: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि परचांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
1: बहुत हद तक तो। आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
0: जी,
1: जो तू तू तू तू तारा में हमें दिखाई दी थी, है ना।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
0: ये बात मैं, मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने, मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
1: जो भी
0: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
1: सफल हो गए हैं।
0: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही
1: हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल,
0: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
1: एक जो गले में एक अलग ही रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो पूर्णिमा ही
0: मानती हूँ,
1: वो पूर्णिमा ही गा सकती
0: है। ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
1: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
0: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर।
1: हाँ।
0: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक USP है
1: जी। लेकिन वो कमर्शलाइज होती थोड़ा सा,
0: हाँ,
1: एक अलग तरह के मोल्ड हो गई।
0: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
1: चुलबुलापन जो आवाज,
0: हाँ, वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
1: वो बाल मन था,
0: है ना। लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए, उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
1: जी।
0: तो टेक्सचर एज सच नहीं बदला, हाँ, लेकिन क्या होता है उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
1: जी।
0: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस। और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी। प्रोफेशनल साजिश थी
1: जी,
0: कि भाई
1: जी,
0: मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
1: बनानी है
0: तो। जी,
1: तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से बात करती है, जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी।
0: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी। तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
1: जी,
0: आ रहा
1: जी,
0: पर
1: जी, एक अलग रूप से जी पाती,
0: जी
1: संगीत
0: पाती
1: को,
0: उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ, शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे, सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन। बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई वो लोग।

0: जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे, वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना। हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना, क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना। तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं, या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले, वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
1: जी।
0: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूं मंदाकिनी जी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
1: जी,
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग की, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
1: जी।
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से, और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी,
1: बिल्कुल,
0: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी, और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी,
1: बहुत
0: वो बहुत जरूरी,
1: ये एक बड़ा मन ही ये बात
0: वो बहुत
1: कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
0: कभी नहीं।
1: पूर्णिमा जी एक गीत और सुन लेते हैं आपकी, बस
0: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था तु तु तु तु
1: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना जी, जी। फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बीता है
0: जी,
1: तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी
0: जी,
1: दिस इज नॉट दी एंड, मैं आऊंगी, किसी ना किसी तरह मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है, मेरी पूरी जिंदगी ही मैं हमेशा कहती हूँ एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा, है ना?
0: सही कहा।
1: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सीखा वो वाला, तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
0: जी के। जी
1: मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
0: हुआ।
1: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो कर दो हमें माफ तुम कर दो ना वो सब तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी कुल पकड़ के हमको चलना है।

0: हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होती
1: बिल्कुल
0: है ना, माने ना माने।
1: हाँ हाँ
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा, मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस दे और दे सकती हूँ वो शायद ही कोई दे सके।
1: जी
0: सॉरी मैं
1: नहीं
0: खुद से ये
1: बिल्कुल
0: कह रही हूँ
1: जी
0: आज,
1: बिल्कुल
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं
1: क्या
0: धुआं,
1: बात है क्या
0: वो तो
1: बात।
0: मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है,
1: जी
0: तो उनका, उनकी डिक्शन बहुत साफ है,
1: माधुरी
0: क्लियर
1: जी
0: जिसे
1: की।
0: हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना,
1: जी
0: वो एक अलग टाइप की होती है।
1: हाँ बिल्कुल
0: वो मैंने नोट किया
1: नोट
0: था।
1: किया। और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर का
0: हाँ,
1: सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहां आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंसेस,
1: बिल्कुल सही कहा
0: है ना।
1: आपने। और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन,
0: जी,
1: बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा
0: अरे
1: रही
0: बाप रे
1: थी,
0: बाप।
1: है ना, कुली नंबर वन, गोविंद और करिश्मा कपूर की जो पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये कर बात कि
1: हाँ
0: करिश्मा को मेरी
1: गजब
0: इनफैक्ट
1: गजब।
0: काजोल को भी, वो मिस्टर लोभा लोभा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना ये,
1: क्या
0: कि
1: बात
0: किसी
1: है।
0: और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया ना, तुमने तो
1: हाँ
0: खुद नहीं गाया। मतलब इतने वो
1: हूबहू,
0: एक्सप्रेशंस,
1: हाँ हूबहू
0: मैं खुद भी मतलब शॉक में
1: जी।
0: हूं।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना,
0: हाँ
1: कितना
0: बाप
1: तो
0: रे,
1: मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है, वो आदमी इंसान ही
0: उसमें भी
1: बेकार है।
0: देखिए करिश्मा का एक अजीब, एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका है ना वो। सिर्फ मैंने, कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया।
1: जी
0: छोड़िए, खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हमें, वो
1: हाँ
0: हम पर छोड़
1: ये
0: देते हैं।
1: जी जी जी
0: सोने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
1: क्या बात
0: तो
1: है
0: ये सब हमारे इनपुट्स होते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: हीरो तुम मेरा हीरो है, ये हमारी इनपुट्स होती हैं। सब सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका या गायक की खुद की जो आईक्यू है उसका जो
0: बहुत कम
1: है
0: है,
1: ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा
0: यकीनन
1: रही है
0: यकीनन
1: उसे पकड़े, मतलब
0: यकीनन,
1: लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही
0: बिल्कुल
1: है ना। ये
0: बिल्कुल।
1: चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक
0: यहाँ
1: ले जाती है।
0: कुदरत कुछ साथ देता है,
1: हाँ
0: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम
1: तो
0: बढ़ाते हैं,
1: आप
0: ये
1: कहें तो
0: मेरा
1: यही
0: मानना।
1: गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक
0: बिल्कुल,
1: लिया जाए,
0: प्लीज प्लीज
1: हमारे श्रोता भी थिरक लेंगे।
0: प्लीज।
1: तो आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया या?
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने में गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफकोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड, वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। तो ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही
0: हूँ, जी,
1: इतना भी किसको मिलता
0: है। बिल्कुल, और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहाँ हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि मुझे वो गाना मिल जाता।
1: नहीं, मैंने ये दुख कभी किया भी नहीं मंदा के नीचे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में, हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
0: बिल्कुल,
1: हमारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे।

0: चेंगे
1: और उन्होंने सोचा भी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तभी आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
0: बहुत बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ
1: जी,
0: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आज ये सोशल मीडिया में मैं इतनी, मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं, फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं।
1: जी,
0: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया
1: जी,
0: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझे पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला सापडला, कुठला देव बाई पाला जीवच कही वरला, उरात धड धड वाढली ठोका सरा चुकला छो मंत्र।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया मैंने मना कर दिया, वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है, और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा
1: जी।
0: पर मैंने कहा देखो भाई अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूं, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी, अभी
1: जी
0: ये एक साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूं, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भाई से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। ये खत्म हुई, फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया, फिर कुछ 15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास, वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बजा बाजा, मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूं, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है, सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना गवाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये अहोभाग्य मैं कहूंगी, ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा, तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
1: ये बड़ी बात है,
0: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मंदाकिनी
1: जी,
0: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक,
1: बिल्कुल सही कहा, तो एक मराठी गाना सुन ले बताइए।
0: मेरे बचपन में जब सुषमा श्रेष्ठा के नाम से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
1: जी,
0: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
1: जी।
0: किल बिल पक्षी बोलती झुल झुल झुल झुल झरे वाहती, पानो पानी फूले बहरती, फूल पाखरे वर बिर बिरती, स्वप्न

0: बहुत सुंदर, क्या बात है। तो
1: तो
0: और
1: मराठी गाने, बस मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के
1: जी
0: आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि
1: जी
0: बंगाली,
1: जी
0: नेपाली,
1: जी
0: मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी
1: जी
0: आपने
1: जी
0: गाया।
1: बिल्कुल।
0: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण, यानी जो डिक्शन आप करते हैं, और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज के उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे, क्या मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है,
0: जी, गॉड
1: पर
0: गिफ्ट।
1: ये गॉड गिफ्ट है। ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था, वो हर भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी। तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है, जब
0: मराठी,
1: मैंने जब रिमिक्स की बात की ना,
0: हाँ।
1: नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेनजी क्राउड को पता
0: हाँ
1: पड़ना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: ऊंची है बिल्डिंग, टाडा टाडा टाडा, लिफ्ट तेरी बंद है, टाडा टाडा टाडा, कैसे मैं आऊं, टाडा रा रा रा रा रा रा, आ जा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया
0: जी,
1: था
0: अनुमली के साथ
1: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए, है ना,
0: जी।
1: पर वो रीमिक्स से मुझे याद आया।

0: तो पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया,
1: जी
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचम दा के साथ, वसंत देसाई जी, सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया। जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू धड़कन में तू, ओ माय जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, हाँ, फर्क सिर्फ माहौल में हुआ। माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं। अब
0: और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया। और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे, भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
0: बेसिक्स बहुत
1: हम सब
0: थे।
1: म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है। एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को, बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि
0: नहीं,
1: है ना। अब आप बोलो कि क्या रे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलो। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरे रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी, या हम दो, है ना। तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम, नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है।
0: माहौल वैसे ही
1: माहौल
0: होता था, वो गर्माहट।
1: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा। तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती ना
0: हो जाए,
1: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए। तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ।
0: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
1: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं, वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है।
0: जी,
1: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
0: तुला हुआ है।
1: तुला हुआ है, अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है।
0: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर
1: तो वो
0: क्या
1: पॉजिटिविटी
0: गाएगा,
1: आएगी
0: वो
1: कहां
0: सीखेगा
1: से,
0: कहां
1: है
0: से
1: ना।
0: आगे के लिए।
1: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी
0: जी जी
1: जाएगी,
0: जी
1: है ना।
0: जी
1: मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नीयत, शायद हो सकता है नीयत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
0: रातों रात स्टार बन
1: इतना
0: जाना।
1: कॉम्पिटिटिव
0: जी
1: वर्ल्ड है,
0: जी जी
1: क्या करेंगे वो।
0: जी जी
1: तो हमने
0: बात।
1: सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
0: जी, ताकि आगे चलकर एक
1: उनको,
0: उनका भी
1: हाँ
0: करियर जो बनता
1: हर बार
0: है।
1: उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था, हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है, क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता है समझदारी उसी में
0: जी
1: है
0: एक
1: ना।
0: गाना सुन लिया जाए,
1: कौन सा बताइए?
0: आप बताइए, आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद हैं।
1: हकीया तो मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, अखिया तू चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के। मिसलो वलो व तेरी आंखों का जादू, मिसलो वलो व तेरी। उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही है। मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए,
0: नहीं नहीं
1: पर
0: बिल्कुल
1: आज का ये मौका मैं
0: नहीं,
1: गंवाना नहीं चाह
0: और
1: रही।
0: हम भी मौका नहीं गंवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: धड़काए, मिस्टर लोवा लोवा मेरी जान ये जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना, और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहां पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे। हाँ, वो भी इस गाने को सुनना
2: बिल्कुल
1: पसंद करते।
2: बिल्कुल, और तू मेरा हीरो नंबर पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास
2: स्टेज पे, यही खास है मेरे लिए तो, यही खास है
1: जी।
2: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
1: अच्छा।
2: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा
1: है।
2: बहते
1: जी,
2: हैं
1: जी।
2: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चीता की आग जलेगी।
1: जी,
2: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद
2: प्लीज, चने के खेत में।
1: अरे

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी,
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठ जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन।
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

ढलती हुई शाम केवल दिन के अंत का संकेत नहीं है, बल्कि भाग दौड़ भरे जीवन में सुकून का एक हसीन पल है। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें और यह शांत माहौल हमें सिखाता है कि हर ढलान के बाद एक नई सुबह का उजाला जरूर आता है। यह शाम आपके जीवन में ढेर सारी शांति, नई उम्मीदें और अपनों का प्यार लेकर आए। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युवाणी में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री।

दोस्तों, स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित और पौष्टिक खान पान अत्यंत आवश्यक है। हमारा भोजन ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसीलिए स्वस्थ खान पान केवल एक आदत नहीं बल्कि बेहतर जीवन शैली की आधारशिला है। दोस्तों, स्वस्थ आहार में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, साबुत अनाज, दूध, दही, मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। ये सभी पोषक तत्व शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज, प्रोटीन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, अत्यधिक तला भुना भोजन, जंक फूड, अधिक चीनी और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं। इनके अधिक सेवन से मोटापा, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आज की व्यस्त जीवन शैली में लोग अक्सर भोजन के समय और गुणवत्ता की उपेक्षा कर देते हैं। विशेषकर युवा वर्ग फास्ट फूड की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। ऐसे में संतुलित आहार के महत्व को समझना आवश्यक है। समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना और भोजन में विविधता बनाए रखना अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दोस्तों, स्वस्थ खान पान का प्रभाव शरीर पर ही नहीं बल्कि मन और कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। पौष्टिक भोजन एकाग्रता बढ़ाता है, तनाव कम करता है और दिन भर सक्रिय बनाए रखता है हमें। स्वस्थ भोजन के साथ नियमित व्यायाम और योग को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। अतः हमें अपने दैनिक जीवन में पौष्टिक और संतुलित भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वस्थ खान पान न केवल बीमारियों से बचाव करता है दोस्तों, बल्कि एक सुखी, ऊर्जावान और सफल जीवन की नींव भी रखता है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, स्वच्छता सिर्फ घर या आसपास सफाई रखने का नाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की पहली सीढ़ी होती है। साफ वातावरण से बीमारियां दूर रहती है और मन भी प्रसन्न रहता है। अगर हम सफाई को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें तो हमारा समाज भी, हमारा घर और खुद हम सब स्वस्थ रहेंगे और सब कुछ बेहतर होगा। तो चलिए इसी क्रम में अब वार्ता सुनते हैं, जिसका विषय है स्वच्छ वायु, सजग युवा और सुरक्षित भविष्य। वार्ताकार है प्रियांशी सिंह।
4: जब हवा स्वच्छ होती है तो हम उसका महत्व नहीं समझते, लेकिन जब वही हवा प्रदूषित हो जाती है तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य, हमारी दिनचर्या और हमारे जीवन की गुणवत्ता पर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि स्वच्छ वायु केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों का सवाल है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे स्वच्छ वायु, सजग युवा और सुरक्षित भविष्य इस विषय पर। और आज मैं हूँ आपके साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए प्रियांशी सिंह। इस विषय को हम तीन पहलुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला, वायु प्रदूषण की चुनौती और उसका हमारे जीवन पर प्रभाव। दूसरा, सरकार और समाज द्वारा किए जा रहे प्रयास। और तीसरा, एक जिम्मेदार नागरिक, विशेषकर युवा, इस दिशा में क्या भूमिका निभा सकते हैं। आज वायु प्रदूषण के कई कारण हमारे सामने हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन, कचरा जलाना और कुछ क्षेत्रों में फसल अवशेषों को जलाना, इनमें से कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान प्रशासनिक स्तर पर होना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनमें हमारी आदतों की बड़ी भूमिका है और यहीं से सजग नागरिक की भूमिका शुरू होती है। भारत सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से देश के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। शहरों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। कई सड़क की धूल कम करने पर जोर है, कहीं वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने पर, तो कहीं कचरे और औद्योगिक उत्सर्जन के बेहतर प्रबंधन पर। इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वायु प्रदूषण का समाधान केवल एक स्तर पर नहीं हो सकता। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, उद्योग और नागरिक सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। अब बात करते हैं युवाओं की। भारत की युवा आबादी हमारे देश की बड़ी ताकत है। आज का युवा केवल रोजगार और शिक्षा से जुड़े सवाल पर ही अपनी राय नहीं रखता, बल्कि समाज और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में भी सक्रिय भागीदारी कर सकता है। युवा अपने आसपास बदलाव की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटी दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल का इस्तेमाल करना, जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन अपनाना और एक ही दिशा में जाने पर साझा वाहन का उपयोग करना। ये छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें बड़ी संख्या के लोग अपनाते हैं तो इनका प्रभाव भी बड़ा होता है। इसी तरह एक आम लेकिन गंभीर समस्या है कचरा जलाना। घर या मोहल्ले में पत्ते, प्लास्टिक या दूसरे प्रकार का कचरा जलाना हमें आसान समाधान लग सकता है, लेकिन इससे निकलने वाला धुआं सीधे हमारे वातावरण में जाता है। इसका विकल्प भी बहुत कठिन नहीं है। कचरे को गीले और सूखे हिस्से में अलग करें, जैविक कचरे में कंपोस्ट बनाएं और बाकी कचरे को उचित संग्रहण व्यवस्था में दे दें। दोस्तों, इसी सोच को आगे बढ़ाने में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 महत्वपूर्ण है, जिससे ठोस कचरा प्रबंधन, कचरे के स्रोत पर पृथक्करण और पुराने कचरे के निस्तारण पर जोर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण केवल प्रदूषण कम करने तक सीमित नहीं है, हमें हरियाली भी बढ़ानी होगी। शहरों में बढ़ती आबादी और निर्माण के बीच खुले और हरे थानों का महत्व और बढ़ जाता है। नगर वन योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में हरित स्थान और शहरी वनों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इसी क्रम में एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान भी लोगों को वृक्षारोपण से जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात हम सभी को याद रखनी चाहिए, पौधा लगाना शुरुआत है, उसकी देखभाल करना जिम्मेदारी। पर्यावरण को बचाने के लिए केवल बड़े सरकारी कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी विचार को मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरमेंट आगे बढ़ाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है जिसमें संसाधनों की बर्बादी कम हो और पर्यावरण पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। बिजली और पानी की बचत, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना, भोजन की बर्बादी कम करना और ज़रूरत के अनुसार ही वस्तुओं का उपयोग करना, ये ऐसे काम हैं जिन्हें हम बिना किसी बड़े खर्च के अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। और इन आदतों को समाज तक पहुंचाने में युवा एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। आज उनके पास डिजिटल माध्यम है, एक उपयोगी संदेश कुछ ही समय में बहुत से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन केवल सोशल मीडिया पर पर्यावरण के बारे में लिखना पर्याप्त नहीं है, असल बदलाव तब आता है जब हमारी सोच हमारी आदतों में दिखाई देने लगे। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन के क्षेत्र में भी बदलाव जरूरी है। इसी दिशा में सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और चार्जिंग जैसे आवश्यक सुविधाओं के विकास पर काम कर रही है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए तुरंत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना संभव नहीं है, इसलिए अपनी परिस्थिति के अनुसार सार्वजनिक परिवहन, साझा वाहन, साइकिल या पैदल चलने जैसे विकल्प अपनाना भी उतना ही उपयोगी है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने स्तर पर अनावश्यक ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें। अब एक बड़ा सवाल यह है, क्या पर्यावरण संरक्षण का मतलब विकास रोक देना है? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। देश को सड़कें चाहिए, उद्योग चाहिए, रोजगार चाहिए और शहरों का विकास भी चाहिए। लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राकृतिक संसाधनों और मानव स्वास्थ्य की अनदेखी ना हो। हमें ऐसा विकास चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, लोगों को अवसर मिले और साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे। यही टिकाऊ विकास की मूल भावना है। भारत की परंपरा में प्रकृति के प्रति सम्मान हमेशा से रहा है। नदियों, वनों और धरती को लेकर हमारी सांस्कृतिक संवेदनाएं बहुत गंभीर हैं। आज आवश्यकता केवल उस भावना को याद करने की नहीं, बल्कि उसे अपने व्यवहार में उतारने की है। और अब बात उस भविष्य की जिसकी हम सभी कल्पना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें बेहतर अवसर मिले, वे स्वस्थ जीवन जिएं। आज हम जो पेड़ लगाते हैं, जो प्रदूषण कम करते हैं और जो संसाधन बचाते हैं, उनका लाभ शायद हमें तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी उसका परिणाम जरूर देखेगी। तो दोस्तों, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी केवल अपने वर्तमान तक सीमित नहीं है, इसमें उन लोगों का भी हिस्सा है जो अभी इस दुनिया में आए ही नहीं। इस पूरी चर्चा में युवाओं की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे केवल बदलाव के लाभार्थी नहीं, बदलाव के सहभागी भी बन सकते हैं। वे अपने कॉलेज, अपने कार्यस्थल, अपने मोहल्ले और अपने परिवार से शुरुआत कर सकते हैं। एक पौधे की देखभाल करना, कचरा सही जगह देना, अनावश्यक वाहनों का उपयोग कम करना, पानी बिजली बचाना या किसी दूसरे व्यक्ति को कचरा जलाने से रोकना, ये बहुत छोटे काम दिखाई देते हैं, लेकिन समाज में बड़े परिवर्तन अक्सर ऐसे ही छोटे कदमों से शुरू होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से दिशा दे सकती है, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था बना सकता है, उद्योग अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन अंततः किसी भी अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आम नागरिक उसे अपने जीवन में कितना अपनाता है। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण को केवल किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदत बनाना होगा। दोस्तों, स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी ज़रूरी है यह बात हमें तब समझ आती है जब हवा में प्रदूषण बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हम युवा हैं और बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ समस्या पर चर्चा करने के बजाय खुद से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी के पास ऊर्जा भी है, नई सोच भी है और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने की क्षमता भी है। इसलिए स्वच्छ वायु की दिशा में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम केवल दूसरों से बदलाव की उम्मीद ना करें। अगर हर युवा अपनी जिम्मेदारी समझे और दूसरों को भी प्रेरित करे तो धीरे धीरे पूरा समाज बदल सकता है। स्वच्छ हवा आज की ज़रूरत है और सजग युवा ही इसे आने वाले सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव बना सकता है।
5: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
6: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
7: हेलो,
5: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
6: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
5: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
6: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
5: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: दोस्तों, आज इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है उतनी ही सावधानी की जरूरत भी बढ़ा दी है। घर में बैठे बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, पढ़ाई, टिकट और सोशल मीडिया जैसी सुविधाओं ने समय और मेहनत दोनों बचाए हैं। लेकिन इसी डिजिटल दुनिया में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी के मोबाइल पर आया फर्जी संदेश, नकली लिंक, झूठा फोन कॉल या सोशल मीडिया पर बनाया गया फर्जी अकाउंट किसी को भी परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए आज के समय में साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सजग रहना और जल्दबाजी से बचना। दोस्तों, कई बार साइबर ठग डर या लालच उत्पन्न करके लोगों से निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वे बैंक अधिकारी, कंपनी कर्मचारी या फिर किसी परिचित के नाम पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि हम बिना सोचे समझे कोई लिंक ना खोलें, अपना पासवर्ड, OTP या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा बिल्कुल ना करें। कोई व्यक्ति कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे, फिर भी ऐसी जानकारी साझा करने से पहले सावधानी

0: जरूर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ धैर्य और संयम की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कोई संदेश देखकर हम घबरा जाएं या किसी ऑफर को देखकर लालच में तुरंत क्लिक कर दें तो गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके बजाय हमें कुछ पल रुककर सोचना चाहिए, क्या यह संदेश सच में सही है, क्या इसे आधिकारिक माध्यम से जांचा गया है, और यही छोटा सा ठहराव हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है। दोस्तों, हम अपने जीवन में कुछ सरल आदतें अपनाकर साइबर सुरक्षा मजबूत कर सकते हैं। मजबूत पासवर्ड रखें, अलग अलग खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें, जरूरी जगहों पर दो स्तरीय सुरक्षा अपनाएं, मोबाइल और ऐप को अपडेट रखना और अनजान लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों से सावधान रहना आपके लिए उपयोगी कदम हो सकता है। और बच्चों और परिवार के बुजुर्गों को भी इन सावधानियों के बारे में समझाते रहिए ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो सके। दोस्तों, साइबर सुरक्षा केवल तकनीक का विषय नहीं है बल्कि हमारी सोच, हमारे व्यवहार का भी विषय है। इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करें लेकिन आंखें बंद करके नहीं, बल्कि आंखें खोलकर और दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके। हर क्लिक से पहले थोड़ा सोचें, हर संदेश पर तुरंत भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में शांत रहकर सही जानकारी हासिल करें। डिजिटल दुनिया में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा हमारा ज्ञान, हमारी सतर्कता, धैर्य और हमारा संयम ही है।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, कभी किसी बात पर मन दुखी होता है, तो कभी कोई समस्या अचानक सामने आ जाती है। ऐसे समय में हम अक्सर परेशान होकर तुरंत कोई फैसला लेने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यही धैर्य और यही संयम हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम चुपचाप सब कुछ सहते रहें, बल्कि इसका अर्थ है कि कठिन परिस्थिति में भी सोच समझकर सही कदम का चुनाव करें। आज की तेज जिंदगी में हम हर चीज का परिणाम तुरंत चाहते हैं। मोबाइल पर संदेश का जवाब तुरंत चाहिए, काम का नतीजा जल्दी चाहिए और सफलता भी जल्द मिल जाए। ऐसी हमारी आदत लगातार बनती ही जा रही है। लेकिन जीवन में हर चीज अपने समय से होती है, यह आप भी जानते हैं। कई बार थोड़ी देर रुकना, परिस्थिति को समझना और फिर निर्णय लेना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, धैर्य और संयम का सीधा संबंध हमारे व्यवहार से भी है। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो तुरंत गुस्से में जवाब देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहें, रिश्ते को बिगड़ने से आप बचा सकते हैं ऐसा करके। पढ़ाई या काम में असफलता मिले तो खुद को निराश करने के बजाय यह समझना कि गलती आखिर कहाँ हुई, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है हमें। इसी तरह सोशल मीडिया पर कोई उकसाने वाली बात दिखाई दे तो बिना जांचे प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकना भी संयम का ही उदाहरण है। हम अपने जीवन में धैर्य को छोटी छोटी आदतों से अपना सकते हैं। रोज कुछ समय शांत बैठना, किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचें, फिर गलतियों से सीखें और लक्ष्य पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। इसकी शुरुआत यहीं से हो सकती है। दोस्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। सही दिशा में लगातार मेहनत करें और परिणाम के लिए उचित समय का इंतजार करना ही सच्चा धैर्य है। दोस्तों, धैर्य और संयम हमें केवल कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद नहीं करते, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाते हैं। ये हमें बेहतर निर्णय लेना, रिश्तों को समझना और परेशानियों में संतुलित रहना सिखाते हैं। जैसे साइबर अपराध से बचने के लिए किसी संदिग्ध संदेश पर

तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना जरूरी है। वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति में थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर अगर हम सोचते हैं तो हम गलत फैसलों से बच सकते हैं। इसीलिए धैर्य और संयम को आदत बनाएं, क्योंकि कई बार जिंदगी में सबसे सही जवाब वही होता है जो हम जल्दबाजी में नहीं बल्कि शांत मन से लेते हैं।

दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी का विचार है, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। दोस्तों, ये कथन अपने शब्दों के साथ बिल्कुल सत्य साबित है और इस तरह के व्यक्तित्व को हमें अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम युववाणी से अपनी रेडियो दोस्त रानी राष्ट्री को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

जीवन में किए गए अच्छे कर्म समय के साथ अवश्य लौटते हैं, कभी अवसर बनकर, कभी आशीर्वाद बनकर। बहनों नमस्कार, आज दिन है शनिवार और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम की बैठक सज चुकी है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सरिता, आपका अपना मन पसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी लेकर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, कार्यक्रम की शुरुआत हो इससे पहले आप सभी बहनों का हाल समाचार तो ले लें। बहनों आप सब कैसी हैं? अच्छी हैं ना? परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए आप अपना भी विशेष ख्याल

0: रखा करें, अपने लिए वक्त जरूर निकाला करें। आप जो करना चाहती हैं वह आप जरूर करें, किताब पढ़ें, पेड़ पौधों को देखें, एक्सरसाइज करें या फिर एक कप चाय हो अपने अस्तित्व के साथ, और फिर खड़ी हो जाइए उसी स्फूर्ति के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और दायित्वों को पूरा करने। बहनों, हमारा दायित्व एक और भी है, हमारे आसपास और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और साफ सफाई भी। बहनों, जहां स्वच्छता का वास होता है वहां स्वास्थ्य और खुशियों का निवास होता है। स्वच्छता हमारे जीवन की केवल एक आदत नहीं बल्कि स्वस्थ और सुखी जीवन का आधार है। हमारा घर चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, यदि वहाँ साफ सफाई का अभाव है तो वह अनेक बीमारियों का आमंत्रण दे सकता है। इसलिए स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन और सुंदर वातावरण के लिए स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। एक स्वच्छ घर से ही एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज की शुरुआत होती है। बहनों, स्वच्छता केवल सुंदरता नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। हमारा स्वास्थ्य हमारे खान पान के साथ साथ हमारे आसपास की स्वच्छता पर भी निर्भर करता है। यदि घर, रसोई, विद्यालय और आसपास का वातावरण साफ सुथरा हो तो अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। बहनों, साफ सफाई हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। हमें अपने घर और आसपास कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। दूसरे को कूड़े कचरे के लिए उन्हें बताना चाहिए कि कूड़े कचरे को हमेशा हमें सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखना चाहिए, और घर में नियमित रूप से झाड़ू पोछा लगाना और शौचालय को साफ रखना भी बहुत जरूरी है। बहनों, घर की साफ सफाई में हमारे किचन की बहुत बड़ी भूमिका है। भोजन बनाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए, सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर उपयोग में करना चाहिए। रसोई के बर्तन, गैस चूल्हे और भोजन रखने की जगह को साफ रखना चाहिए। बहनों, भोजन को ढककर रखने से धूल और कीटाणुओं से उनका बचाव होता है। जहां साफ सफाई नहीं रहती है वहां गंदगी के कारण मच्छर, मक्खियां और अन्य कीट पनपते हैं, जिससे हमें कई बीमारियों का खतरा हो सकता है। एक और बात बहनों, साफ सफाई सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसमें सहयोग करना चाहिए। हमें स्वयं स्वच्छ रहना चाहिए और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही हमारी यह भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंके। बहनों, स्वच्छ घर, स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ परिवार, यही सुखी जीवन की पहचान है। यदि हम प्रतिदिन स्वच्छता को अपनी आदत बना ले तो हमारा परिवार स्वस्थ और हमारा समाज सुंदर बन सकता है। बहनों, हमारी चर्चा अभी जारी रहेगी लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं एक ये भेंट वार्ता, जिसका विषय है बेटा बेटी एक समान। श्रीमती फरहा हाशमी इनसे ढेर सारी बात कर रही हैं साजिदा बेगम, तो आइए सुनते हैं कि फरहा हाशमी जी हमें बेटा बेटी एक समान के बारे में क्या बता रही हैं। तो चलिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: बहनों, आज हमारी मुलाकात हुई है फरहा हाशमी जी से, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, उनके बच्चे हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करती हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है गृह लक्ष्मी प्रोग्राम में।
2: हेलो, नमस्कार सबको हमारा।
1: तो आप अपने बारे में बताइए और साथ ही अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए।
2: मेरा नाम फरहा हाशमी है और मैं लखनऊ की हूँ, और मेरी जो एजुकेशन है वो हमने MA कर रखा है, और मैं हाउसवाइफ हूँ, अभी तो जॉब नहीं कर रही हूँ।
1: तो आपने बताया कि अभी हाउसवाइफ है, जॉब अभी नहीं कर रही है, तो आगे करने का इरादा है?
2: अभी बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएं फिर जरूर कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं।
1: तो आपने बताया कि आप MA तक पढ़ी हैं, तो आपने किस सब्जेक्ट से MA किया?
2: हमने उर्दू से MA किया हुआ है।
1: तो फिर आगे क्या करने का सोचा है?
2: टीचिंग लाइन में ही ट्राई करेंगे कहीं पे भी।
1: अच्छा जी, चलिए, टीचिंग जॉब है भी बहुत अच्छी और रिस्पेक्टफुल जॉब भी है। तो आपकी शादी कितने साल हो गया आपकी शादी को?
2: मेरी शादी को 10 साल से ज्यादा हो गया है जी।
1: अच्छा, तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रही?
2: अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत अच्छी है,
1: बहुत अच्छी रही। तो आपने जैसा सोचा था वैसा पार्टनर मिला आपको?
2: उससे भी ज्यादा अच्छे।
1: अच्छा, उससे भी ज्यादा
2: जी, बहुत बहुत ज्यादा केयरिंग है, हर चीज में वो हमारा सपोर्ट करते हैं, और कोई भी बात हो अगर मैंने उनसे कही है तो वो उसमें वो मेरा साथ देते हैं।
1: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपके ससुराल में कौन कौन है? और
2: मेरे ससुराल में हमारे ससुर हैं, नंद है, देवर हैं,
1: मतलब सारे लोग हैं और सब बहुत अच्छे हैं।
2: सब सब माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं।
1: तो उसमें आपके नंद लोगों के साथ आपका रिश्ता कैसा है?
2: बहुत अच्छा, क्योंकि ज्यादातर हम अपने हस्बैंड के साथ जब भी जाते हैं, क्योंकि बाहर ही रहे, इनकी ट्रांसफर वाली जॉब रही है, तो जब भी जाते हैं बस सब हाथों हाथ ही लिए रहते हैं। सबसे बहुत ही अच्छा रिश्ता है।
1: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और वैसे भी नंद भाभी का रिश्ता होता भी बहुत नाजुक सा है, उसमें देखें तो बहुत प्यार भी रहता है
2: जी।
1: ये सब समझने की बात होती है कि अगर हम दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरा भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा ही।
2: जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा।
1: तो आपके कितने बच्चे हैं?
2: जी, हमारे 2 बच्चे हैं, 1 बेटा 1 बेटी।
1: अच्छा, तो आप अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से कर रही हैं?
2: मैं अपने बच्चों की परवरिश में सबसे ज्यादा तो ध्यान देती हूँ कि उन लोग की पढ़ाई लिखाई हर चीज बहुत अच्छी हो, तमीज तहजीब, जो कि कहते नहीं कि लखनऊ की नजाकत और तमीज तहजीब सबसे ज्यादा है, तो कहीं भी जाए 100 में ये पहचान लिए जाए कि ये लखनऊ के हैं और तमीजदार हैं। तो सबसे ज्यादा हम अपनी बेटी और बेटे को यही कहते हैं कि बेटा बड़ों का अदब बहुत बड़ी चीज है।
1: और आपकी बेटी, जैसे कि आपने बताया कि बेटी बड़ी है, तो आप उसका किस तरह से ध्यान रख रही हैं?
2: बेटी हमारी बड़ी है माशाल्लाह, 10 साल की हो रही है अब, तो सबसे ज्यादा अब उनको अब ये उम्र आ रही है उनको बताने के लिए कि क्या अच्छा है बेटा, बाहर नहीं निकलना है, जाना है तो साथ में जाना है, और किसी से बात नहीं करनी है अनजान लोगों से। खैर, वैसे वो बहुत शाही मिजाज की है और उसको बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, लेकिन ये है कि तब भी लड़कियां हैं तो ये तो बताना ही है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उस हिसाब से हम हर चीज में एक एक कदम कदम पे उनको बताते रहते हैं कि नहीं बेटा ये ऐसा नहीं वो ऐसा, आपको करना है,
1: क्योंकि आज के माहौल को देखते हुए ये बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है।
2: जी जी बिल्कुल, ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है और सबसे ज्यादा खासकर लड़कियों के लिए।
1: बिल्कुल
2: जी।
1: और आप घर के कामों में अपने बच्चों से मदद लेती हैं या नहीं?
2: जी बिल्कुल लेते हैं, और क्योंकि हम अकेले रहते हैं अभी आपको बताया
1: जी, जी।
2: तो उस हिसाब से मैं अपने बेटा बेटी दोनों से ही मदद लेती हूँ कि उनके अपने खुद के जो काम है वो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके करिए, जैसे कि अपने बैग लगाना है, अपना कमरा साफ करना है, अपने ड्रेस को हैंगर में लगा के रखना है, शूज पॉलिश करने हैं, और मतलब डाइनिंग पर से सामान हटाना, ये सब हटाना उनका, मतलब जो हो सकता है। और ये नहीं कि खाली बेटी से नहीं, बेटे से भी।
1: अच्छा,
2: पूरा अपना अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि जब शुरू से बच्चों को आदत होगी तो बड़े होने पर भी उनकी ये आदत बनी रहेगी, बात चाहे साफ सफाई की हो या तरीके से सामान रखने की हो, तो अगर शुरू से ये आदत रहेगी तो बड़े होने पर भी वही आदत बनी रहेगी। तो आप ये मानती हैं कि आज के वक्त में बेटा और बेटी एक समान है?
2: बिल्कुल, क्योंकि अब आजकल का जो दौर चल रहा है उस हिसाब से तो देखा जाए बेटियां ज्यादा जरूरी है, ज्यादा काम आती हैं। तो क्योंकि अब दोनों ही बच्चे बराबर हैं इस दौर पे और दोनों को ही अपना काम आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अभी जब ये लोग हाई स्कूल इंटर करेंगे उसके बाद सबको बाहर निकल जाना है पढ़ने के लिए, तो अगर बेटे को काम नहीं आएगा तो वो बेचारा हॉस्टल जाके परेशान होगा, और बेटियों को तो खैर आता ही है, तो इसलिए बाहर की जिंदगी में अपने आप को आगे सरवाइव करने के लिए दोनों को ही काम आना बहुत जरूरी है, और सब करें, चाहे थोड़ा थोड़ा करें लेकिन करें,
1: करना चाहिए। तो आज भी देखिए बहुत सारे घरों में आज भी ये होता है कि लड़कियों को जो है घर के काम लड़कियों को सिखाए जाते हैं, लड़कों को कहा जाता है कि ये बाहर का काम करें, तो ये बातें कहाँ तक सही हैं आजकल के वक्त में?
2: देखिए सही तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि काम देखिए दोनों को ही आने चाहिए, लेकिन ये है कि लड़के जल्दी बाहर निकलने लगते हैं, लड़कियां कम बाहर निकलती हैं, लेकिन काम दोनों को ही आना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए कि कोई नहीं है घर में, बाप नहीं है, भाई नहीं है, तो कम से कम बेटी इस लायक तो हो कि वो जाके दवा ले ले या जाके कहीं जो भी उसकी जरूरत का काम है, बैंक का काम है, पैसे जमा करने, पैसे निकालने, इतनी चीजें तो लड़कियों को भी सिखानी है। लड़कों को आती ही है लेकिन लड़कियों को भी सिखानी है कि एटीएम कैसे चलाना है, एटीएम के नंबर कैसे चलाने हैं। ये ना हो कि आज भाई नहीं है तो बाप नहीं है, तो हर चीज के लिए परेशान ना होना पड़े उनको अपनी आगे आने वाली जिंदगी में।
1: यानी कि सारे काम लड़कियों को भी आने चाहिए और लड़कों को भी आने चाहिए।
2: जी बिल्कुल।
1: तो आप ये मानती हैं कि जिस तरह से बेटियों को शिक्षा के साथ साथ घर के काम आने चाहिए, उसी तरह से बेटों को भी घर के सारे काम आने चाहिए?
2: जितना वो कर सकते हैं उतने तो कम से कम आने ही चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे बेटों को एक गिलास पानी उठ के पीने की भी इजाजत नहीं है। तो कम से कम ये तो ना हो भाई, कल को वो बाहर निकलेंगे जॉब करने के लिए निकलेंगे तो उनको एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, तब उनको खुद ही पीना है। तो इतना तो आए कि कम से कम अंडा ब्रेड ही बना के आदमी खा ले, लेकिन खा तो ले, भूखा तो ना सोए।
1: हाँ, ये है कि आज भी देखिए बहुत सारे घरों में बेटों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है।
2: जी बिल्कुल।
1: और अगर दो तीन बेटियों के बाद बेटा हुआ तो उसका तो और भी ज्यादा लाड़ प्यार किया जाता है कि एक भी काम उसको नहीं करने दिया, नहीं बेटा तुम छोड़ो बहने तुम्हारी।
2: लेकिन कल को जब वो ही बच्चा बाहर निकलेगा पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, किसी दूसरे शहर जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, तो वो कितना परेशान होगा।
1: जी।
2: फिर वो ये सोचेगा मैं अपने घर में एक गिलास पानी नहीं पीता था, आज मुझे अपना काम करना पड़ा। कम से कम ये भावना उसके दिल में नहीं आनी चाहिए। उसको ये तो होना चाहिए कि मुझे अपना काम अपने आप करना है,
1: करना चाहिए। और जब अपना काम अपने आप करेगा तो उसकी वो आदत रहेगी और बाहर जा करके भी उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो आज आप जिस तरह से जानती होंगी कि बेटियां आगे आई हैं, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर खेल का, हर जगह बेटियों ने अपनी सफलता हासिल की है, तो इसमें उनके माता पिता का सहयोग और प्रोत्साहन भी रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आप भी अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट करेंगे?
2: जी बिल्कुल, और सही बात आपने कही, अगर माँ बाप नहीं चाहेंगे या माँ नहीं चाहेगी तक बच्चियाँ आगे नहीं बढ़ सकती।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि आजकल के इस दौर में माँ का साथ होना बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
2: भाई बाप तो घर से निकल जाते हैं, सुबह गए रात में आए, लेकिन माँ का सपोर्ट हर चीज में चाहिए। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने से लेके उनको पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, हर चीज में माँ का सपोर्ट चाहिए। जिस तरह से आज वो ट्यूशन में सपोर्ट दे रही है, कोचिंग में सपोर्ट दे रही है, वैसे ही आगे आने वाले उनके करियर में सपोर्ट देना है। चाहे बच्चा किसी भी लाइन में जाए, कंप्यूटर की लाइन में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, डॉक्टरी में जाए, किसी भी लाइन में जाए, लेकिन हर जगह माँ का तो सपोर्ट बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और अक्सर ये देखा जाता है कि अगर माँ नहीं चाहेगी कि बेटियां 8 तक पढ़ ली, 10 तक पढ़ ली, बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर माँ उसके साथ खड़ी है कि नहीं हम अपनी बेटी को आगे पढ़ाएंगे, कुछ बनाएंगे, तब तो वो बेटी जरूर कर पाएगी।
2: बेटी कर भी पाएगी, बेटी को हौसला भी मिलेगा, साथ में घर वालों का सपोर्ट भी मिलेगा।
1: जी
2: देखिए, हर जगह बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो बेटियां नहीं कह सकती हैं दूसरे से, वो ही बातें वो माँ से कहती है। तो अगर माँ का सपोर्ट रहेगा तो माँ आगे कि भाई दादा से कहेगी, दादी से कहेगी, उनके पापा से कहेगी कि नहीं भाई मेरी बेटी को पढ़ना है, अभी वो शादी नहीं करना चाहती, अभी उसकी पढ़ाई मत बंद कीजिए। तो जब तक माँ नहीं कहेगी तब तक बेटी का सहारा तो वही है ना।
1: बिल्कुल।
2: तो इसलिए माँ का तो सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है।
1: और इसीलिए कहा भी जाता है कि अब आजकल के जमाने में माँ बेटी एक दोस्त की तरह से होना चाहिए, जिससे कि बेटी भी अपनी सारी बातें माँ से शेयर कर सके।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि माँ बेटी का दोस्त होना इस टाइम बहुत जरूरी है। अगर उसकी जिंदगी में कोई भी बात हो, कुछ भी बात हो, तो उसको ये बताना माँ को ही है, ना कि वो अपने दोस्तों से कहेगी और गलत उसमें फंसती जाए। माँ से बताएगी, एक बार डांट खाएगी, जरूर सुनने को मिलेगा, लेकिन कम से कम माँ उसको सही रास्ता तो दिखाएगी।
1: बिल्कुल। एक माँ ही है जो अपने बच्चों की हर चीज को अच्छी तरह से समझती है, बच्चों को अच्छे बुरे का रास्ता दिखाती है और बच्चों को बताती है कि बेटा तुम्हारे लिए ये सही है, और अपने बेटी हो या बेटा हमेशा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि बच्चों का फ्यूचर बन सके, उनकी जिंदगी बन सके, जो बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें वो कामयाबी हासिल कर सके, उसमें वो अपनी पहचान बनाए, अपना एक अलग मुकाम बनाए।
2: बेटियां फूलों की तरह होती हैं, उनकी कदर करो। बेटियां फूलों की तरह होती हैं, उनकी कदर करो, क्योंकि बेटियां ही घर की जीनत होती है, क्योंकि बेटियां ही घर की जीनत होती है। या खुदा हर बेटी नसीब अच्छा कर दे, या खुदा हर बेटी का नसीब अच्छा कर दे।
1: तो आज आपसे फराह जी ढेर सारी बातें हुई और आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
3: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
5: हेलो,
3: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
4: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
3: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।

0: Hello Farmaish, your music, your style.
1: Only on AIR Obra.
2: बहनों, अभी आपने सुनी भेंटवार्ता बेटा बेटी एक समान। श्रीमती फरहा हाशमी हमें इनके बारे में बता रही थी और इनसे ढेर सारी बात कर रही थी साइजा बेगम। तो फरहा हाशमी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी बेटा बेटी एक समान के बारे में बात बताई। तो बहनों, अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों आपका स्वागत है आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सरिता। बहनों सभी लोग यही चाहते हैं कि उनके घर के बच्चे खुश रहें और आगे बढ़ें, हंसते खेलते रहें, अच्छे लगते हैं। बचपन किताबों और सपनों को संवारने की उम्र है, जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की नहीं। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य को प्रभावित करने वाली सामाजिक समस्या है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने, अपने सपने पूरे करने और सुरक्षित बचपन जीने का अवसर मिलना चाहिए। बहनों जब किसी बच्चे का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता है तो उसे बाल विवाह कहते हैं। कम उम्र में विवाह होने से बच्चों की पढ़ाई और उनके व्यक्तिगत विकास पर असर पड़ता है। बहनों शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, आत्मविश्वास और अपने जीवन के बारे में समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता देती है। शिक्षित बच्चे आगे चलकर अपने परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बेटियों की शिक्षा पूरे परिवार और समाज को मजबूत बनाती है। बाल विवाह रोकना हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है। बाल विवाह के कारण बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है और उन्हें कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए परिवार और समाज को बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, साथ ही कम उम्र में विवाह के बजाय उनके भविष्य को संवारने पर ध्यान देना चाहिए। बाल विवाह बच्चों के सपनों की राह में बाधा बन सकता है, जबकि शिक्षा उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर देती है। बाल विवाह छोड़ो, शिक्षा से नाता जोड़ो, बच्चों के सपनों को नई उड़ान से जोड़ो। साथ ही बहनों प्रकृति ने पृथ्वी को पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से सुंदर बनाया है। वन्य जीव हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वनों की कटाई, अवैध शिकार, प्रदूषण और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण कई वन्य जीवों की संख्या हमारी धरती पर कम हो गई है। बहनों हमें जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, जंगल को बचाना और वन्य जीव की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। और साथ ही 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस हमें सिखाता है कि पशु भी हमारे साथ इस धरती के साझेदार हैं। हमें उनके प्रति दया, प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए और उनके सुरक्षित जीवन के लिए अपना योगदान करना चाहिए। बहनों बिजली की बचत केवल पैसे बचाने का तरीका नहीं बल्कि पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण कदम है। यदि हर एक व्यक्ति बिजली का सही और सीमित उपयोग करे

इसी के साथ बहनों, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है। हम आपसे मिलने फिर एक नई चर्चा के साथ इसी कार्यक्रम में आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपनी रेडियो सखी सरिता को दीजिए इजाजत। बहनों, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है एफएम 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में यानी कि शाम के 6 बजे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोकभवन में चालू वित्त बरिस बदे पूर्व दसम आ दसमोत्तर कक्षा के 4,60,000 से बेसी विद्यार्थियों के खाता में 148 करोड़ रुपया से बेसी के ओजीफा आशुल्क प्रतिपूर्ति के धनराशि हस्तांतरित कर लें। ए मौका पर उहां के कहली कि सरकार अगला महीना 50,000 मेधावी लैकिनी के स्कूटी दी। मुख्यमंत्री कहले कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता से प्रदेश अब खुशहाल आ समृद्ध हो रहा है।
1: अब उत्तर प्रदेश खुशहाली की जिस राह पर चला है वह समृद्धि के नए सोपान को चूमेगा और इसमें बड़ी भूमिका युवाओं की है, छात्रों की है। उनको सही मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री कहले कि 9 बरिस में 4 करोड़ से बेसी लैकन के ओजीफा शुल्क प्रतिपूर्ति मिलल है। वहां के ओजीफा से जुड़ल विभागन के अधिकारियों के सज्जो विद्यार्थियों का डाटा जल्दी से जल्दी फीड कैले के निर्देश दिली। उहां के कहले कि ओजीफा बदे पैसा के कौनो कमी नहीं बा। मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के आह्वान कैले कि ओजीफा के धनराशि के सदुपयोग करें।
1: स्कॉलरशिप की जो धनराशि आपको मिले इसको अपनी एजुकेशन पे खर्च करिए। अच्छी पाठ्य पुस्तक, अच्छी रेफरेंस बुक्स आप खरीदिए। लाइब्रेरी में जाकर के अच्छी पुस्तकों का अध्ययन भी करिए। जब भी धनराशि होती है तो पहला निवेश अच्छी पुस्तक पर होना चाहिए।
0: ए मौका पर पंचायती राज आ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री दानिश आजाद, समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री संजीव गोंड, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत खास तौर से मौजूद रहले। भारी बरखा के नाते प्रदेश के कई इलाकन में प्रभावित भइल बिजली आ सड़क

0: व्यवस्था के जल्दी सामान्य करे बदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के जुड़ते कार्रवाई के निर्देश दिले हवे। मुख्यमंत्री बरखा से क्षतिग्रस्त बिजली के खम्भा और तारन के जल्दी ठीक कवले के साथ ही प्रभावित इलाकन में बिजली आपूर्ति जल्दी बहाल कैले पर जोर दिले हवे। वहां के स्थानीय स्तर पर टीमिन के सक्रिय रखत शिकायतन के जुड़ते निस्तारण कैले के निर्देश दिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के नमो घाट पर आवे वाला 24 से 26 अक्टूबर ले प्रस्तावित भव्य एयर शो के तैयारियों के समीक्षा कैले। समीक्षा बैठकी में आयोजन के कार्य योजना देखले के बाद मुख्यमंत्री कहले कि एयर शो के लेके सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा सज्जो इंतजाम पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज 12 साल पूरा कर दिले। मन की बात कार्यक्रम के पहला कड़ी बरिस 2014 में अजवे के तारीख के विजयदशमी के दिने प्रसारित भइल रहे। हालिये में प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम के 138वां कड़ी में देशवासियों के संबोधित कैले। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों से अपन विचार साझा करेले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 बरिस पूरा कर रहल हवे। 2047 ले विकसित भारत के लक्ष्य पौले के इज्जतरा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र आ लगातार प्रतिबद्धता से प्रेरित बा। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ई समर्पण लोगों के जिंदगी में बदलाव ले आ रहा है। आज खास श्रृंखला में हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए समाज के मिल रहा लाभ के जानकारी दे।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। पात्र लाभार्थी देश के किसी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं।
0: जापान में चल रहल 20वां एशियाई खेल में आज भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम रोमांचक फाइनल मुकाबला में पाकिस्तान के 19 रन से हरा के स्वर्ण पदक अपने नाम कर दिलस। पहले बल्लेबाजी करत भारतीय टीम तय 20 ओवर में 211 रन बनौलस। जवाब में पाकिस्तानी टीम 192 रन बना पौलस। ओहर एशियाई खेल में 97 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता में अमन सहरावत नॉर्थ कोरिया के चोंग सोंग के हरा के देश प्रदेश स्वर्ण पदक जीतले। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
2: FM 102.7 पे ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है।

0: श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती, और रात्रि 10 कार्यक्रम होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:50 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। ग्राम जगत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा सबरस। फिल्म संगीत, ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 8:15 पर। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। और सुगम संगीत, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 और रात्रि 8:30 पर। श्रोताओं, एक बार पुनः बता दें, रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती, और रात्रि 10 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार खुशबू राव, पुत्री धनुधर प्रसाद, निवासी ग्राम बिल्ली मारकुंडी, टोला खैरटिया, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। ये दिनांक 2 सितंबर 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 13 वर्ष, लंबाई 4 फीट 6 इंच। हुलिया गोरा रंग, गोल चेहरा, पहनावा बैगनी रंग की शर्ट। श्रोताओं, एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सुनैना पुत्री जितेंद्र, निवासी ग्राम बिल्ली मारकुंडी, टोला खैरटिया, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, ये दिनांक 2 सितंबर 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 14 वर्ष, लंबाई 5 फीट। हुलिया गोरा रंग, पहनावा टूपिस घंघरी, सफेद रंग की कोटी। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। शाम के 6:10 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: नंदू भैया आपके भी राम राम।
0: आपके भी राम राम जीरा बहन। और देखा आज फिर समय से जुट गई लीजा,
1: बिल्कुल
0: रोज की तरह। और बताओ का हाल बा?
1: देखा हाल चाल तो सब ठीक है बा। और पंच भैया लोगन से भी हम यही उम्मीद लगावा थी कि जब भी हम उनके पंचायती में आएला तो सबसे पहले देखा हाल चाल पूछीला, और देख के लगा था कि सबकर हाल चाल ठीक बा, सब लोग कुशल मंगल से हैं। तो जब कुशल मंगल से रहलन तो मन जब खुश रहला नंदू भैया, तो देखा हर चीज में मन लगेला हमन के, जैसे बातचीत भइल, चाहे आपके मन मनसायन होके, चाहे जानकारी हो, सब कुछ में पंच भैया और बहन लोगन के मन लगेला। और देखा जैसे बातचीत के माध्यम से आज जैसन कि आप जानते हैं कि माने जौन वन्य जीव संरक्षण चलत है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का माने जौन सप्ताह बा, एमे यह निहोरा देखा बा सबसे कि हम सब लोगन के एकरे प्रति जागरूक होए के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल होए के चाहिए जीरा बहन। और देखें जीरा बहन ये जीवन जोन बा ना, ये देखें अपन जोन 5 ज बा, जल जंगल जमीन जीव जानवर, ये जोन बा ये एक तरह से प्रकृति के दिहल एक ऐसन तालमेल बा कि एकरा में अगर कौनो जीव अगर समाप्ति की ओर होत बा तो ई समझ लें कि हमार त्योहार जोन बा जीवन पर संकट बा।
1: बिल्कुल
0: काहे से कि देखें बहुत से लोग रहो कि भैया अभी देखा हम आवत रहली, भैया अपन पंचायती में जुटत रहली हो, भैया देख ली कि एक थे जंगल जंगल झाड़ी से जनते है आवे के, आवत रहली देख ली भैया रोड पर एक जोन बीच खप्पड़ जोन होला, वो भैया रोड से ए ओर से वो ओर जात रहल,
1: अच्छा।
0: गाड़ी रहल, अब एक बहन रही कल भैया एक धांग द, भैया मना कैली हम कि भैया एकर हर जीव के जिए के देखें।

0: अधिकार बा।
1: और हर जीव एक जीव के प्रति ओकर कर्तव्य भी बहुत बा। तो एके भैया जब एकर जंगल बा, एकर पहाड़ बा, एकर रहे के स्थान बा, तो भैया एकरे काहे करे भैया मारल जाए, काहे एकर करल जाए, काहे से कि देखें हर जीव पहले रहल ना जंगल झाड़ी रहे, कहे पता चले कि भैया बाघ बा, तेनुआ बा, कई तरह के जंगली जीव हुआ। तो वो जंगली जब जीव रहे जीरा बहिन, तो लोग जाए से जंगल में डरे, टंगारी
0: बिल्कुल
1: चलावे के बाद का कि भैया पहाड़ी के आसपास भी फिर कहे के जोन बा
0: हाँ
1: नाम न लेवे, हरे से अपन सूखल उखल लकड़ी लहा के भैया अपन भागे। और
0: बिल्कुल
1: देख ताक के जड़ी
0: हाँ
1: जंगल के जोन जड़ी बूटी रहले, वो जड़ी बूटी भी सुरक्षित रहत रहले।
0: एकदम सही
1: लेकिन
0: बात है
1: जब से अपन देखे अब तो वो या तो भैया चिड़िया घर में देखे के मिली है, या तो
0: हाँ
1: कहीं से बढ़िया बरियार जंगल में से भाग पर आके अगर कई कई तरह से अगर कहीं आ गई ले, और कन्हू जे चाहे अपन कहला गांव गिराव में चाहे शहर में, तो भैया माए भगदड़ मच जाला भैया, बुझाला कि भैया पहले के लोग रहले कि उनके आसपास अपन जीवन बना के रहत रहले।
0: बिल्कुल। और नंदू भैया यही लिए देखा जोन जागरूकता के बात होते इस समय जोन माने सप्ताह चलत है इमें यह न्योरा कहल जाता कि आम जनता हो, युवा हो, चाहे छात्र हो, वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। और देखा जोन लुप्त तो प्राय प्रजाति के माने हमन के रक्षा करे के चाहिए। जानवर और पौधन का भी जोन प्रजाति है वो भी देखा विलुप्त तो हो तो ओके
1: बिल्कुल
0: भी बचावे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ
1: और देखें जीरा बहन, हम एक बात और कहल चाहब
0: का
1: कि अगर जंगल बच गई
0: हाँ
1: तो जीरा बहन जानवर जरूर बच जाए हैं।
0: बिल्कुल
1: काहे से
0: यही
1: कि देखें जंगल में ही अपन उनकर निवास बा, जैसे अपन निवास घर बा
0: हाँ
1: भैया, चाहे बुन्नी पड़े, चाहे बरखा पड़े, चाहे धूप
0: हाँ
1: रहे, भैया अपन घर में आप सुरक्षित हो।
0: पूरी
1: लेकिन
0: तरह से
1: उनकर भी घर अपन जंगल बा, तो
0: हाँ
1: कहीं अगर जंगल उनकर बचल रही, अगर पेड़ बचल रही, तो
0: बिल्कुल
1: वो बचल रही हैं। और ओकरे साथ साथ देखें हमार ये जोन पहले हम आपसे चर्चा कैली कि हर जीव
0: हाँ
1: एक दूसरे के प्रति, अब देखा अब लोग सांप से बड़ा डराला डराला ना, लेकिन
0: बिल्कुल
1: कहीं कहीं खेत में देखें तो किसान भैया लोगन को कहीं तैसी मानल जाला, चाहे चाहे चूहा ओखें, चाहे मतलब बिल में जितना रहें भैया उनके आप पकड़ पकड़ के, मतलब एक दूसरे के खाद्य श्रृंखला भी आप जानले हुई हैं कि हर जीव एक दूसरे के प्रति जब ओकर उत्तरदायी बा, ओकरे पर चाहे ओकर निर्भर बा, तो वो अपन जीवन चक्र जौन बा ओकर जौन बा वो मतलब एक तरह के बना के रखला, सामंजस्य बना के रखला। तो अगर कौनो जीव के अगर कमी होत बा तो समझ ल कि दूसरे जीव जोन बा हावी हो जाई।
0: बिल्कुल
1: अब अगर चूहा के अगर खेत से अगर कौनो अगर संतुलन न बने, तो भैया वो तो सब कुल फसल के खा जाई, कुल फसल के काट दी, सब डांड़ मेड़ खराब कर दे।
0: बिल्कुल
1: तो यही तरह से देखें कौनो भी जीव होके वो जीव पर अपन एक तरह, अब देखे ना चूहा आपके बात कहे, खरगोश के बात करला, सर्प के बात करला, मेढक के बात करला, या कौनो मतलब हर जीव कहीं ना कहीं आपके सहयोग के लिए बा, बस ओकर नजरिया बदल के आपके देखे के होई।
0: बिल्कुल। और नंदू भैया देखा यही से जुड़ल जोन जानकारी हमन के पास आज बा जोन माने ऐसे लोगन के मालूम चली और हम लोगन के भी खुशहाल जीवन के लिए वन्य जीव संरक्षण करें एकरे बारे में राधे श्याम जो मतलब जंतु विज्ञान प्रवक्ता हैं इनसे भोला भैया अपन बातचीत कैले हैं एक सुनल जाए। और एकरे बाद देखा कहल गया ना कि जहाँ तक हो सके कि इनमें कौन सी जानकारी बा एक अगर कहें तो बिना देर कैले
1: बिल्कुल
0: सुनल जाए।
1: बिल्कुल। ता अवे राधे श्याम भैया जो अपन जंतु विज्ञान प्रवक्ता हैं, निका जानकारी देत हूँ, जगत नारायण भैया से का जानकारी साझा करत हूँ, आव जानल जाए।
0: चला
2: श्रोताओं, पृथ्वी पे प्रत्येक जीव जंतुओं से लाभ लेने का श्रेय अधिकतर मनुष्य प्राप्त करते हैं। और जहाँ जीवन की बात है, कहा गया कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी बताया जाता है। और प्रत्येक जीव जंतुओं की जहाँ बात की जाए तो जल और अन्न तो सबको चाहिए होता है। हम पृथ्वी ग्रह के मालिक नहीं हैं, जबकि मानव कभी ऐसा सोच लेता है कि इस पर रह करके यहाँ का सारा चीज़ उपभोग करने का कार्य मेरा ही है, बल्कि हम इसके हैं, अर्थात पृथ्वी के हैं। तो पृथ्वी पर

0: रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी कहीं न कहीं समान अधिकार है इस पर रहने के लिए, उपभोग करने के लिए। लेकिन अपने जीवन काल की भी बात की जाए तो पहले से और अब तक में इस पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं का ह्रास हुआ है, लुप्त होते चले जा रहे हैं। जीव जंतु सब औसत रूप में इस धरती पर रहें इसके लिए जीव जंतुओं को संज्ञान लेने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि जंगली जीवों और वनस्पतियों की कई सुंदर और विविध प्रजातियों का जश्न मनाया जा सके और लोगों को उनके जीवित रहने से होने वाले कई लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसी आशय के साथ आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत आश्रम मोड़ से श्री राधे श्याम जी हैं, आप प्रवक्ता हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुद्धी से। जंतु विज्ञान के बारे में आप बहुत ही अच्छा जानकारी रखते हैं, जंतु विज्ञान के प्रवक्ता भी हैं। तो राधे श्याम जी, आपको आकाशवाणी ओबरा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस आशय से कि ये जीव जंतु जो हैं ये धरती पे और ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितना आवश्यक हैं, कभी लोग जो है कि ये जान लेते हैं कि ये सर्प है तो हमको नुकसान पहुंचाएगा, मच्छर है तो ये हमको काटेगा तो मलेरिया होगा, कुत्ते हैं तो इनको भी रहना है कि नहीं रहना है, एक दूसरे से लोग घृणा करते हैं, लेकिन क्या इनका भी समान उपयोगिता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में, या क्या विचार है सर?
1: नमस्कार बंधुओं, जैसा हमारे मित्र कह रहे थे, जितने भी जीव पृथ्वी पर जीव हैं सभी का एक सह अस्तित्व है। किसी एक जाति के जीवित रहने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिना सभी जातियों के सहसंबंध के, साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण के इस आपसी संबंध से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसका कोई प्राकृतिक महत्व न हो। जितने भी जीव हमारे आसपास हैं, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पृथ्वी पर जीवन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो केवल जंतु ही नहीं, वनस्पति, जीव यानी जंतु और वनस्पति का दोनों का अपना एक सह अस्तित्व है उसके पर्यावरण के साथ। आमतौर पर लोग, मनुष्य अपने लाभ की चीजों को बढ़ाता जा रहा है और जिसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं है उसे हानिकारक समझ के समाप्त करता है, जबकि मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अपने भोग विलास और भौतिक सुख साधनों के खोज में निरंतर प्रकृति का दोहन कर रहा है मनुष्य, और जिससे इस पूरी पृथ्वी पर एक पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया है। आज इस पृथ्वी पर बहुत सारी जातियां विलुप्त हो रही हैं। हमारे आंकड़ों में पिछले 500 वर्षों में इस पृथ्वी से 784 जातियां लुप्त हो चुकी हैं। अगर हम देखें तो प्रतिवर्ष 1.5 प्रजाति लुप्त हो रही है। इधर 20 वर्षों में 27 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और बहुत सारी जो जातियां हैं विलुप्ति के कगार पर हैं। आज एक अंतर्राष्ट्रीय एक पुस्तक है जिसको हम लोग लाल आंकड़ों की पुस्तक कहते हैं, उसमें पूरी दुनिया के जितने भी ऐसे वनस्पतियां हैं, ऐसे जंतु हैं, जीव हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं, उनकी सूचीबद्ध करके अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के तहत 3 मार्च को पूरे विश्व में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है संरक्षण के लिए। यहाँ पे जैसा कि हम आम तौर पे देखते हैं कि जैसे ही सर्प निकलता है लोग उसे मार देते हैं, हमारे पर्यावरण में सर्प एक इकोसिस्टम का एक भाग है, एक उपभोक्ता है जो स्वयं उस इकोसिस्टम को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सर्प को हम किसानों का मित्र भी कहते हैं क्योंकि वो खेत में चूहों की

0: संख्या को समाप्त करके इकोसिस्टम को नियंत्रित करता है
1: जी।
0: और वहीं हम ऐसा सोचते हैं कि मच्छर हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, लेकिन मच्छर भी हमारे इकोसिस्टम का एक अंग हैं। हम अगर देखें तो केवल जो नुकसान पहुंचाने वाले जो मच्छर हैं उसमें केवल मादा मच्छरों का अस्तित्व है, लेकिन जितने भी नर मच्छर होते हैं वे कहीं ना कहीं फूलों से रसपान करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस समय वो परागण क्रिया करके विभिन्न फसलों उत्पादन में हमारी मदद करते हैं।
1: जी,
0: साथ ही जो मच्छर हैं जब जल में अंडे देते हैं तो उनके अंडों से निकलने वाले जो लार्वा हैं वो जलीय जीवों का भोजन होते हैं, तो एक वो भी हमारे इकोसिस्टम के अंग हैं। हम इस पृथ्वी पर किसी भी जीव के बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि वे हमारे लिए अनुपयोगी हैं। सबका अपना एक महत्व है।
1: जी जी। तो आज जो बदलते परिवेश में देखा जा रहा है कि व्यक्ति के इम्यूनिटी पावर की बात की जाए वो भी कमज़ोर हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से हम लोग को इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि यही जो विलुप्तता की ओर है जीव जंतुओं का, उसका भी कारण नहीं है सर?
0: बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि हम अपने स्वार्थ में जंगलों को काटते जा रहे हैं, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसे देखा जाए तो प्रतिवर्ष हम सारे पूरे भारत देश में बरसात के मौसम में हजारों पेड़ लगाए जाते हैं
1: जी,
0: लेकिन लगाने के बाद हर साल अगर आंकड़ों के हिसाब से हम देखते जाएं तो इतने ज़्यादा हम लोग वृक्ष लगाते हैं, लेकिन जितना हम लगाते हैं उसका हम 20% 40% को अगर हम बचा लें
1: जी,
0: तो आज इस पृथ्वी का पर्यावरण कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा और समस्त जीवों के जीने के लिए एक मार्गदर्शन होगा। हम ये देखें कि जहाँ जितनी वनस्पतियाँ हैं, जितने पौधे हैं, वहाँ उतने ही जंतु हैं
1: जी,
0: और वहाँ जितने जंतु हैं वह इकोसिस्टम और पर्यावरण उतना ही संतुलित है
1: जी, जी।
0: अगर हम जंगल को काटेंगे, जंगल जहाँ जीव जंतुओं का आवास है उनके घर को उजाड़ेंगे तो उनका घर नहीं रहेगा तो वो जीव कैसे रहेंगे
1: जी, जी।
0: आज हम विकास के नाम पर जंगलों में सड़कें बना रहे हैं, तरह तरह के जो है निर्माण कार्य कर रहे हैं जिससे उनका आवास उजड़ रहा है, उनका पर्यावास जो है छोटा होता जा रहा है, जिससे उनको जनन के लिए, प्रजनन के लिए या जीवन जीने के लिए स्थान का अभाव होता जा रहा है और वो सारे जीव जंगलों से गांवों की तरफ और शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और जो उनका आवास नहीं है और धीरे धीरे वो विलुप्ति के कगार पर जा रहे हैं
1: जी। जैसे जलीय जंतु की बात की जाए सर, तो उसमें जैसे उनको कलकल की आवाज़ सुनने की आदत है, अब उसमें अगर विशेष प्रकार के जो मानव निर्मित आवाज़ें उसमें अगर प्रवेश कर दी जाए या डाल दी जाए, जैसे स्टीमर की बात कर दी जाए या तमाम, उससे भी लोग के जीवन में कुछ प्रभाव कुप्रभाव पड़ता होगा?
0: बिल्कुल। नदियों में गंगा नदी की बात करें तो उसमें पहले डॉल्फिन पाई जाती थी और आज जो है डॉल्फिन जो हैं वो विलुप्ति कगार पर है। कहीं ना कहीं जो जलीय जीव है एक जलीय वातावरण में अपने वार्तालाप है तो विशेष तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं और जब जल में या जल के बाहर जब पर्यावरण प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो वह कहीं ना कहीं उनके जीवन के दिनचर्या में अवरोध उत्पन्न होता है
1: जी, जी जी।
0: और हम मछलियों के साथ साथ उनका भी शिकार कर रहे हैं, तो आज ज़रूरत है कि एक पूरे समाज में लोगों को जागरूक करने की, जीवों के और पर्यावरण के महत्व को समझाने की, जिससे हम इनका संरक्षण कर सकें।
1: राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुधी के जीव विज्ञान प्रवक्ता श्री राधे श्याम जी थे, आपसे बातचीत हो रही थी वन जीव संरक्षण के बारे में, कितने अहम भूमिका है जीव जंतुओं के संरक्षण करना जिससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और आगे पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। इतनी अच्छी जानकारी दे रहे थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात,
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए,
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार

0: और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
2: जीरा बहन।
3: हाँ नंदू भैया।
2: देखा ये राधे श्याम जी रहल है, जौन जंतु विज्ञान प्रवक्ता रहल है, और जगत नारायण भैया से अपन बात बात कही भइल, और ये देखे एक मतलब ये कह जाए ना कि एकदम जो सटीक बात बा कि अपन जीवन के कैसे चलावे के चाहिए, का का सुरक्षा करे के चाहिए, ओकर देखे भरपूर जानकारी देने। अभी जानकारी पंच भैया लोग जरूर अपने जहन में रखी हैं, और रखला के साथ साथ ए पर अपन दिमाग जरूर चलाई हैं। और कहीं न कहीं देखल जाए तो आजकल जोन बना जीरा बहन, पहले रहल कि भैया लोगन के या पंच भैया लोगन के किसान भैया लोगन के ही जानल जाए कि भैया ये जवन बा हर क्षेत्र में या हर जगह, चाहे खेती बाड़ी होके चाहे कोनो अपन व्यवसाय होके, उहे अपन सहभागिता देखल जात रहे। लेकिन अब तो देखल जात बा कि कदम से कदम जोन मिला के जोन एक सिक्का के दो पहलू कहल जात रहनी, अब वो देखे सच साबित हो रहल बा। काहे से कि देखे खेती बाड़ी में भी उनकर अब इतना बढ़ चढ़ के सहयोग हो गई बा कि कहीं न कहीं जोन बात होला कि महिला सशक्तिकरण के बात होला, अब वो साफ होकर छवि दिखे लगल। काहे से कि देखे अब तो कई तरह के अपन खेती बाड़ी में भी पहले रहल चार मोर बकरी रख ले ली, गाय रख ले ली, भैंस रख ले ली, अब वो भैंस रख ले ली, गाय रख ले ले हैं, तो एक तो दूध से पैसा कमाते हैं, अगर दूसरे अगर दूध अगर उनके पहुंचावे के अगर ना बनत बा तो दूध से भैया घी निकाल लेते हैं, दही निकाल लेते हैं, छाछ निकाल लेते हैं, और भैया अपन कहीं न कहीं उनके आसपास पड़ोस के बहुत सारा लोग ऐसे घर से ही ले जाते
3: भैया। काहे से कि देखा अब बहन लोगन के जो कंधा से कंधा मिला के चले वाली बात कही लेना, आप ये बात एकदम सुलो आना सच हो। और बहन कहीं न कहीं जो है खेती बाड़ी में भी अपन जो है कि पंच भैया लोगन से भी आगे निकल चुके हैं, तो ऐसे ही देखा जो खेती से संबंधित महिला सशक्तिकरण के अभी बात होता तो मैं देखा आज जो जानकारी हमन के सुनल जाई वो है देखा महिला किसानों को सशक्त बनाए बाजरा उत्पादन बनाता है। जो संगीता देवी अपन कृषि सखी है ना, इनसे अपन अख्तर भैया जो है की बातचीत कैले हैं, अभी कहा बातचीत कैले हैं अगर कहा तो बिना देर के लिए सुनल जाए।
2: तो सुनल जाए,
3: चला
4: किसान भाई देखें हम लोग तो बराबर ये चाहल जाला कि सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और एक एक खातिर हम लोगों के फर्ज भी बना ला कि हम ऐसा अनाज उगाएं जैसे कि एक तो स्वास्थ्य भी ठीक रहे, दूसरा अपन पर्यावरण, और तीसरा अपन आर्थिक स्थिति यानी कहे मतलब कि रुपया पैसा की भी व्यवस्था बनल रहे। तो ऐसे ही एक प्रगतिशील महिला किसान बहन है संगीता देवी, आप कृषि सखी भी है मलदेवा दुद्धी से, आज हम लोग आपसे बातचीत कही जाए कि कैसे कैसे मोटा अनाज की खेती आप करें नी, और मोटा अनाज की खेती से आपके काका फायदा बुझाला, अपने इलाके में मोटा अनाज की खेती खत्म हो जा रहा बा लेकिन फिर भी आप जुड़ल हैं, तो कैसे खेती हो रहा बा, का फायदा बुझाता, कौन कौन तकनीक लगावे ली, यही सब विषय पर बातचीत कही जाए। तो संगीता देवी जी सबसे पहले तो अपने किसान वाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। संगीता देवी जी हम ये जानल चाहब कि अपने यहाँ मोटा अनाज में कोने कोने चीज की खेती होला।
5: सभी किसान भैया को मेरा जय जवान जय किसान, NRM की तरफ से जया जीव का। गाँव में बाजरा की खेती, मोटा अनाज में मक्का की खेती, और सावा मिझरी कोदो मेड़ो ऐसा खेती करवाई ला जा और घर पे करी ला भी। इसमें हम बाजरा की खेती बहुत अच्छा मंद फायदा मंद भी बा।
4: जी जी, यानी कहे मतलब कि मोटंजा में जितना नाम ले ली आप, इस सब के खेती आपके यहाँ भी और अपने इलाके में हो रहल बा। तो संगीता जी जैसे कि कुछ ऐसा भी नाम बा जैसे मान ले सामा बा, मिझरी बा, कोदो बा, ये तो कभी कभी ही नाम सुने के मिलेला, बहुत लोग अब खेती से नहीं जुड़त हुआ, तो संगीता जी आपके का लगल एकर खेती लोग काहे छोड़ देला, आप जब जात हुई है लोगों से मिलत हुई है तो का आपके पता चलल कि एकर खेती कैसे कम हो गई, काहे कि पुराने जमाने में आपन इलाका जो जंगल पहाड़ के इलाका बा, आदिवासी बहुल इलाका बा, यहाँ पर तो बहुतायत से चीज की खेती होत रहल
5: होत रहल, लेकिन नया नया जो नियम आवत बा उस प्रकार से किसान भैया लोग दीदी लोग छोड़ ले जात पानी। लेकिन जहाँ पे पहाड़ी इलाका बा वहाँ पे उनके मोटा अनाज उगावे में आसान पड़ेला।
4: जी बिल्कुल, काहे कि एक एक खातिर पानी के भी कम जरूरत बा और कम मेहनत में
5: मोटा
4: हो जाला। तो खास करके जैसे मान लें कि बाजरा के चर्चा कैल जाए, तो बाजरा के खातिर कैसन माटी अच्छा रहला?
5: सब माटी में हो जाए, ओके से कोई दिक्कत नहीं खे।
4: अच्छा,
5: हाँ।
4: बाजरा के खेती से जब अपने किसान भाई जुड़े ला और एकर बीज वगैरह अपने इलाके में मिल जाला बढ़िया से?
5: हाँ, मिल जाए कृषि बीज भंडार पर। और जैसे हमारे ब्लॉक में कृषि बीज भंडार सरकारी गोदाम होखल ही,
4: जी
5: वहाँ से भी मिल जाए।
4: अच्छा, सरकारी बीज भंडार में भी बाजरा के बीज उपलब्ध रहता? और इधर हाँ। बीज तो संगीता जी कई तरह के और भी बीज आयल रहे अपने सरकारी बीज गोदाम पर, कि लोगन के प्रोत्साहित कर जाए, लोगन के बतावल जाए कि मोटा अनाज से आप जुड़े और जो नैसन खत्म हो जा रहा प्रजाति बा उससे जुड़े। तो जो भी बीज इधर बीच मिलल बीज भंडार से, तो का लोग वहाँ से बीज लेकर के खेती शुरू कर ले मोटा अनाज के?
5: हाँ, लेके शुरू कर ले। हमारे यहाँ समूह के सदस्य दीदी को भी हम लोग हमन सब प्रोत्साहन देली कि चला दीदी वहाँ पे हम लोग के अनाज मिलता
4: जी,
5: जो सामा के और बाजरा के और उड़द के भी।
4: अच्छा अच्छा जी।
5: तो सभी दीदी गईलन और वहाँ से लेके आईलन, एकर खेती भी करत बड़न
4: जी। तो संगीता जी, जैसे मान लें कि हालांकि वैसे सब लोग तो खेती करे कि अपन अपन तौर तरीका बा, बाजरा के खेती अगर बढ़िया ढंग से कैल जाए और अच्छा उपज प्राप्त करे के बाद, तो खेत की कैसे तैयारी करे के चाहिए?
5: खेत के अच्छा तरीका से जुताई कर लेवे के चाहिए। एक चास दो चास मतलब घास फूस सब हटा देवे के चाहिए। तब बाजरा के बीज के लाइन से बुआई करे के चाहिए।
4: अच्छा, का बात है, तो बड़ी अच्छी आप बात बता रहे हैं। कहें कि अभी तक तो लोग ऐसे ही छीटी के बो देते रहना।
5: लाइन से बुआई करे से ये होगी ना कि उसमें हमार हवा के आन जान जो रहा लहीन आवागमन
4: जी
5: सही तरीका से होखा लहीन, तब फसल बहुत अच्छा चलेला।
4: सब पौधा के हवा पानी बढ़िया से मिल जाला?
5: हवा पानी बढ़िया से मिल जाला। खर पतवार भी थोड़ा मोड़ा होखा लहीन तो के निकाले में आसान पड़ला
4: जी। और जैसे मान ले खेत के तैयारी हो गयी, कतार में बुआई भी हो गयी, का बाजरा के खेती में कुछ अलग से खाद उद भी देवे के जरूरत पड़ेला?
5: बहुत नाम मात्रा के
4: जिक्रे पास बा
5: उनका खाद में हो जाला।
4: अच्छा अच्छा, वही गोबर आधारित खाद जो अपने आस पास बा वही डाल करके आप लोग?
5: हाँ हाँ, गोबर आधारित खाद बहिन, नाडेब के जैसे खाद हो गई, केचुआ खाद हो गई
4: जी,
5: सब खाद डाल दी है तो बहुत अच्छा हो जाला।
4: कितना दिन के ये फसल होला बाजरा?
5: बाजरा 110 से 120 दिन के खेती होखल ही।
4: अच्छा,
5: और एक आषाढ़ में लगावल जला ही। अभी बाजरा जैसे फूट रहल बहिन
4: जी, जी जो पहले लगल हला वो फूट रहल?
5: हाँ, फूट रहल बहिन
4: जी।
5: और जैसे अभी धान के कियारी में वर्षा नहीं होइल, जोहत जोहत नहीं रोपे पैलन, वो में हल्का नापन जो बीज रहा लहीन वो लगा दिले बड़न, वो होखा था अभी।
4: तो जैसे संगीता जी, पानी के कमी के वजह से लोग धान नहीं लगा पैले कहीं लगोने का, मोटंजा पे एकर असर पड़ेला कि बढ़िया ढंग से हो गयी बाजरा? ठीक ढंग से बाजरा की का स्थिति बा इससे में? ठीक ठाक बा?
5: बहुत अच्छा स्थिति बाहिन, अभी ठीक ठाक बाहिन बाजरा की खेती
4: जी। जी, और जो भी इधर भी थोड़ा बहुत पानी बरसल उसे वो रंग में आ गए?
5: हाँ, रंग में आ गए
4: जी। जी,
5: बहुत अच्छा खेती बाजरा के
4: जी। संगीता जी, एक चीज और कि जैसे अपने इलाके में बाजरा जब तैयार हो जाला तो लोग कोने कोने रूप में ओकर इस्तेमाल करेलन, कैसे प्रयोग करेला?
5: बाजरा जब तैयार हो जाला हिन तो के काट के जैसे लोग के वो अपने विटामिन के रूप में भी प्रयोग करलन, फुला के खाए बदे ओके रोटी भी बनावल जला ही
4: जी।
5: और जैसे गाय पशु बही उनके भी हम चारा तैयार कर लेवली, और जैसे काटला के बाद जो उकर भाग बचल ही पत्ती डंठल,
4: अच्छा अच्छा,
5: ओके भी काट करके हम चारा में प्रयोग कर देला।
4: अच्छा, पशुअन के खातिर?
5: हाँ, जैसे पशुअन खातिर चारा में प्रयोग कर दे, जैसे ओकर बहुत सारा हमारे पास बाहिन, त एक ओकर सैलेज बनावल जाला ही, जैसे कि काट करके छाया में सुखा देलन अच्छे तरीका से, और एकरे पर 2% यूरिया के छिड़काव कर दी और अच्छा तरीका से सुखा करके और अपने घर में इकट्ठा करके रख दी है। फिर आवश्यकता अनुसार वो काट काट के अपने पशुअन के खिला दी है।
4: अच्छा, तो एक तरह से पौष्टिक चारा भी बाई पशुअन के खाते।
5: हाँ, पौष्टिक चारा भी बाही, और ऐसे मतलब मोटा अनाज बाजरा के खाए से लोगन के बहुत फायदा बाही। जैसे उसमें 11% प्रोटीन पावल जाला
4: जी,
5: 5% वसा पावल जाला।
4: और स्वास्थ्य भी ठीक रही। और संगीता जी, जैसे मान लें कि इधर बीच बहुत लोग जागरूक हो गए हुआ, अब अपने तो खाए में प्रयोग करते हुआ कुछ बाजार में भी बेचे के प्रयास कर रहे हैं, का एकर बाजार व्यवस्था ठीक बा? बाजार में भी एकर मांग बाकी नहीं?
5: बहुत मांग बाहिन, बाजार व्यवस्था बहुत अच्छा बाहिन। अच्छा। इनमें लोगन के बहुत अच्छा फायदा हो जाला ही।
4: अगर बाजार में भेजिए तो उनकी अच्छा आमदनी हो जाएगी।
5: बाजार में जैसे उनके 100 रुपया केजी।
4: अच्छा।
5: और हाँ, बिक जाला ही। और जैसे गांव में खरीदे कितनी नहीं है, वो भी 70-80 के बिक जाला ही।
4: इतना महंगा भी बिक जाला।
5: एकर मांग बहुत अच्छा बाही, और पैदा भी अच्छा बा, और खाए में भी अच्छा बाही।
4: जी जी,
5: बहुत फायदामंद लाभदायक भी बाही।
4: तो का कहे चाहिए और अपने किसान बहन लोगन से, जो लोग बाजरा की खेती नहीं करत हुआ, तो वो लोग बाजरा की खेती से जुड़े, एकर का फायदा बा, थोड़ा सा अपने किसान भाई लोगों के जागरूक करें आप।
5: हम सभी किसान दीदी भैया से ये कहब कि बाजरा की खेती करे के चाहिए, वो कम मेहनत में भी हो जाला और ज्यादा फायदा मंद भी बाहिन, और खाए में भी मोटा अनाज बाहिन, जेके खाए से उनके शरीर में बहुत अच्छा ताकत मिला नहीं।
4: जी जी, यानी कहे के मतलब कि अगर हम लोगों के खाइल जाए तो शरीर में ताकत मिली, और एक साथ साथ पशुओं के चारा भी मिल जाएगी।
5: हाँ।
4: और एक साथ साथ कम पानी में अपने वातावरण में बढ़िया ढंग से वो बाजरा उगावेला, और अगर आप चाहें तो के व्यावसायिक रूप दे

0: यानी कहे के मतलब कि अगर हम लोगों के खाइल जाए तो शरीर में ताकत मिली और एक साथ साथ पशुओं के चारा भी मिल जाए।
1: हाँ।
0: और एक साथ साथ कम पानी में अपने वातावरण में बढ़िया ढंग से वो बाजरा उगावेला, और अगर आप चाहें तो के व्यावसायिक रूप दे

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी।

0: पंचो जय हिंद।
1: अभिषेक भैया,
0: हाँ अपनीता बहन,
1: हम पन जोन खेती किसानी के लिए काम से जुड़े हैं, तो हमारी आय के यहाँ बढ़ावे में है, हम जो पशु होते हैं अपन, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है, या यूं कही कि बहुत महत्वपूर्ण आधार होते हैं।
0: बिल्कुल पुनीता बहिनी, जो नराहा गोरु होते हैं मार, वे खाली जानवर ना होते हैं, वे हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, द्वारे के मुखिया होते हैं, उनकी पूरी तरह से देख रेख करके हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल भैया, तो ये जो न अपन पशु होते ना, इन्हों के यहाँ हमने सब कितना तमाम तन की बीमारी घेर लेती हैं, और उमा कुछ संक्रामक बीमारी होती है और कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है। अगर इनका समय रहते इलाज ना करावा जाए तो बड़ी परेशानी में यहाँ पड़ जावा जाते।
0: बिल्कुल बहनी, इलाज तो देखो जब अगर भी बीमार पड़ते हैं तो होते हैं, मुला उससे पहले अगर हम टीकाकरण उनका करा ले तो वह बीमारी उनके होते न है और पहले उनका निवारण हो सकत है। जैसे हमारे सब हराहा गुरुन पर टीकाकरण जरूरी है, वह तना हमारे किसानन पर जरूरी है कि वे समय समय पर उनका खबरें मिल जाए तो उनके लिए बहुत उपयोगी होती है।
1: तो भैया सुना जाए आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश के किसानों की उपज को अब बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य दिलाने के लिए खेती के साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल बिक्री पर जोर दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के प्रगतिशील किसानों ने किसान मेले में हिस्सा लिया। किसानों को बदलती बाजार जरूरतों और उपज को बड़े खरीदारों तक पहुंचाने के उपायों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO के माध्यम से उपज एकत्र करने और उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर बाजार तक पहुंच बनाने पर जोर दिया। साथ ही बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि यंत्र की सामूहिक खरीद से लागत कम करने तथा सामूहिक बिक्री से बेहतर मूल्य प्राप्त करने के उपाय बताए गए। किसानों को ऑनलाइन बाजार के माध्यम से सीधे ग्राहकों तक पहुंच बनाने, डिजिटल भुगतान और बेहतर आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। इससे किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज

0: हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक नियोजन डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पशुओं के प्रमुख परजीवी कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें पशुपालक भाई बहन।
1: सर्वप्रथम मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को सादर नमस्कार करता हूँ। परजीवी सामान्यतः वह जीव है जो जीवित रहने के लिए किसी अन्य के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर अस्थाई या अस्थाई रूप से निवास करते हैं। ये विभिन्न स्थानों पर पाए जा सकते हैं, जैसे शरीर के बाहर चमड़ी पे या उस पशु के बाल पे, और शरीर के अंदर आंत में, फेफड़े में और लीवर में ये पैरासाइट या परजीवी पाए जा सकते हैं। और इनसे जो बीमारियां पैदा होती हैं या नुकसान जो होता है वो जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर भी निर्भर करता है। मानिए कि अगर ये चमड़ी पे हैं तो चमड़ी के गुणवत्ता को खराब करेंगे, चमड़े पे खुजली या बाल गिरने का प्रकोप शुरू हो जाएगा और अंत में तरह तरह के बीमारियों के आमंत्रण देते हैं ये।
0: यानी ये चाहे अंतः परजीवी हो या बाह्य परजीवी, ये बीमारियों के वाहक भी हैं।
1: खास तौर पे बाह्य परजीवी, जैसे कि हम किलनी बोलते हैं, वो पशुओं के बाह्य परजीवी के मुख्य बाह्य परजीवी है। उसका अपना अलग नुकसान है। जैसे सर्वप्रथम ये पशुओं का खून चूसता है, खून चूसने के वजह से पशुओं में एनीमिया होती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नुकसान जो ये करता है, ये विभिन्न प्रकार के बीमारियों का वाहक होता है। ऐसे बीमारियां जिन्हें हम प्रोटोजोअल बीमारियां कहते हैं, उस बीमारी में थिलेरियोसिस जैसा बीमारी होता है और बाबेसियोसिस जैसा बीमारी प्रमुख होता है। बाबेसियोसिस रोग इतना खतरनाक है कि खास तौर पे संकर नस्ल के पशु को अगर बाबेसियोसिस बीमारी का प्रकोप हो जाए तो पशु का सामान्य भाषा में खून फटने लगता है और पशु घातक अवस्था में पहुंच जाता है और अंत में मर भी जाता है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे आपने किलनी का नाम लिया, इसके अलावा मक्खी और मच्छर भी है?
1: निश्चित तौर पे मक्खी दो प्रकार की श्रेणियों में है। पहला एक टमानास करके एक बड़ी मक्खी होती है, उसका जो मुख काटने वाला पार्ट होता है वो चाकू की तरह से होता है। खास तौर पे ये भैंस को बहुत ज्यादा अटैक करता है और ऐसा देखते हैं कि अटैक करने के बाद कई बार भैंस के चमड़े से हल्का रक्त स्राव भी हो जाता है। घाव के अलावा बहुत एक खतरनाक बीमारी होती है पशुओं में सर्रा, उस बीमारी का ये वाहक होता है। और कहा जाता है कि अगर टवानास न काटे या वो बड़ी मक्खी न काटे तो पशुओं को सर्रा बीमारी नहीं होगा।
0: डॉक्टर साहब, अंतः परजीवियों की बात करें तो अंतः परजीवियों को भी कई श्रेणियों में बांट सकते हैं?
1: अंतः परजीवी सामान्यतः पशुओं के आंत में, पशुओं के फेफड़े में भी पाए जाते हैं और कई विशेष परजीवी होते हैं जो पशुओं के लीवर में भी पाए जाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, कुछ जानवर जो चराई पर रहते हैं तो उनमें भी कभी कभी लीवर फ्लू की समस्या आती है?
1: लीवर फ्लू जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। ये आमतौर पे चरने वाले पशुओं को ये बीमारी होता है। उसका कारण यह है कि इसके जो वाहक होते हैं, एक विशेष प्रकार का सीप कह सकते हैं, घोंघा जैसा सीप होता है,
0: छोटी वाली
1: सीप जो होती है वो इसका वाहक होती है। और इसके छोटे स्वरूप सीप के माध्यम से पशुओं के मुख द्वार से होते हुए लीवर तक पहुंचते हैं और लीवर पर पहुंचने के दौरान और लीवर में ये बहुत ही गंभीर क्षति पहुंचाते हैं, जिससे पशु का पाचन के साथ साथ न्यूट्रिशन का लेवल भी खराब हो जाता है और उसको उसका पाचन सही नहीं होने के वजह से न उसमें उत्पादन की क्षमता बची रहती है, न कोई कार्य करने की शक्ति रहती है। धीरे धीरे पशु मरणासन को प्राप्त हो जाता है अगर समय से उसकी समुचित दवाई न की गई हो।
0: डॉक्टर साहब, जो गाभिन या गर्भित जानवर है उनमें इन परजीवियों का प्रबंधन कुछ विशेष होगा?
1: कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो गाभिन पशु हैं उनको दिया जाता है खास तौर पे, और ये दवाइयां आमतौर पे अपने पशु चिकित्साविद से सलाह लेने के उपरांत ही दें, क्योंकि पशु चिकित्साविद गाभिन पशु की अवस्था के आधार पर दवाइयों का चयन करके आपको प्रिस्क्राइब करेगा, आपके लिए रिकमेंड करेगा।
0: जैसे
1: आमतौर पे सबसे सुरक्षित दवाई जो मानी जाती है फेनबेंडाजॉल नाम की जो दवाई होती है, खास तौर पे जो गोल्ड कृमि होते हैं इसके लिए दवाई होती है। लेकिन मेरा आप लोगों को, किसान भाइयों बहनों को गंभीर सलाह है कि कोई भी कीड़ी की दवा आप बिना पशु चिकित्साविद या उचित व्यक्ति के परामर्श के बिना न दें, क्योंकि आने वाले समय में ये गंभीर बीमारी भी पैदा कर सकती है और इसका डोज का गुणा या डोज का कैलकुलेशन बहुत विशिष्ट होता है।
0: यानी वजन के हिसाब से जानवर के
1: और उसके अवस्था के हिसाब से।
0: डॉक्टर साहब, जो बछड़े हैं या पड़िया हैं उनमें भी इन परजीवियों के प्रबंधन के लिए कुछ खास दवा देनी पड़ेगी?
1: खास तौर पे देखा गया है।

0: कि जो भैंस के पड़िया या पड़वा होते हैं और या गाय के अल्प दिनों के नवजात बछड़े होते हैं या बछिया होती है, इसमें एस्केरियसिस का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसे गोल कृमि बोलते हैं। ये बहुत आम बीमारी है, इसके लिए भी दवाई उपलब्ध है, दवा इसको समुचित रूप से देना चाहिए। इसमें एक विशिष्ट बात और बता दें, कई बार ऐसा देखा गया है या ऐसा पाया जाता है कि अगर गाभिन की दशा में पशुओं को या कीड़ी की दवा प्रॉपर तरीके से दिया जाता है तो जो गोल कृमि है उनके बच्चों में आने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन अगर बिना कीड़ी की दवा दिए गाभिन पशु से कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको भी डॉक्टर से परामर्श करके जन्म के 10-15 दिन के अंदर कीड़ी की दवा दी जा सकती है।
1: डॉक्टर साहब, जो पशुओं के प्रमुख परजीवी हैं, उनके प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं जो पशुपालक भाई बहन रोज की जिंदगी में अपनाएं?
0: सबसे पहली बात है कि पशुओं को स्वच्छ और ताजा जल पिलाएं, एक बात। दूसरी बात, जब पशु चरने जाता है तो ऐसे फील्ड में न भेजें, ऐसे घास वाले इलाके में न भेजें जहां शीघ्र ही बाढ़ का प्रकोप या पानी का जमा हुआ है और पानी खत्म हुआ है। तीसरा चीज कि राशन जहां से भी खरीदें या तो स्वयं बनाएं या बना बनाए रेडीमेड विश्वसनीय कंपनियों से खरीद के ही उसको खिलाएं। तीसरी बात यह है कि कुछ दवाइयां पशुओं की ऐसी होती हैं, कीड़े की खास तौर की, कि एक बार इंजेक्शन के फॉर्म में ले लेने से 1-2 महीने 2.5 महीने तक का भी लाभ हो सकता है और कीड़े के प्रकोप से बचे रहते हैं पशु।
1: जो सामान्य जानवर हैं उनको कितने दिन के अंतराल पर अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी की दवा देनी चाहिए?
0: सामान्यतः 3 से 4 महीने के अंतराल पर पशुओं को दवाई देना चाहिए, लेकिन अगर पशु चरने वाला है तो थोड़ा अवधि 15 दिन कम हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं के प्रमुख परजीवी और उनके प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 94153-84454, 94153-84454, 9415384454।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का पशुओं के प्रमुख परजीवी और उनके प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: दो प्रमुख सावधानियां मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला नंबर यह है कि जिन भी पशुओं को बाह्य परजीवी के रोकथाम के लिए या बाह्य परजीवी को हटाने के लिए दवाई लगाना है, उनको पहले स्वच्छ जल पिला लीजिए ताकि दवा घोल के रखने के दौरान गलती से वो पानी न पिए। दूसरा, उनका शरीर साफ करके और सुखा लीजिए। और तीसरा, आपके बाड़े में अगर 5 पशु हैं तो 5ों को एक साथ एक्टोपरासाइड यानी बाह्य परजीवी विनाशक ट्रीटमेंट दें।
1: डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और पशुओं के प्रमुख परजीवी कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन कैसे हो इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनीता बहनी जानकारी की बातें हुई है, अब चलो पंचन के सुनाई दिन जाए एक लोकगीत जौन है नकटा।

0: पुनीता बहनी, अब बारी है अपने बीज के किसान की बात सुने के। कहते ने जब नई नई तकनीकन का इस्तेमाल कई के उई कोनो मुकाम पर पहुंचते हैं तो अपने बीज माय के और किसानन का जागरूक करते हैं और प्रेरित करते हैं कि वह नई नई तकनीकें अपनाएं।
1: अभिषेक भैया, जो तुम नई नई तकनीक के बारे में हम बात करो ना, तो अगर कुछ समय पहले तक यह बात कही जाते कि बिना माटी के फसलें उगाई जा सकती हैं, तो भैया कत्ता ताजुब लगते और कोई मान नहीं सकत रहा है। मुला देखो, अपने विज्ञान के लिए खोज में यह यूँ संभव हो सका है कि अब बिना माटी के भी कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनसे फसलें उगाई जा सकती हैं, जिनका कहते हैं हाइड्रोपोनिक खेती। और ईमा होते हैं कि जो पौधे के लिए जड़ें होती हैं वो सीधे पानी में यहाँ डाल दी जाती हैं और वो पानी से नहीं पोषक तत्व जो है वो ग्रहण करते हैं। तो भैया आओ सुना जाए हाइड्रोपोनिक तकनीक से सब्जी उत्पादन। और भैया आज के किसान है हरिश्चंद चौरसिया भैया।
2: किसान भाइयों बहनों, आज के किसान क्रम में आइए आज आपको ले चलते हैं अयोध्या जनपद के हरिंतीनगंज ब्लॉक के बसावर खुर्द गांव, जहां सब्जी उत्पादन से जुड़े हरिश्चंद्र चौरसिया भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। हरिश्चंद्र भैया नमस्कार।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार।
2: हरिश्चंद्र भैया, आप सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और वो भी मौसम के पहले और मौसम के बाद। ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और

0: खेती से जुड़ा हुआ कब से?
1: डॉक्टर साहब कम से कम मान के चलिए कि 45-46 साल उम्र हमारी हो गई है
0: जी।
1: 35-80 साल हो गया हम शुरू से लास्ट तक आज तक मैंने खेती किया है।
0: और पढ़ाई?
1: पढ़ाई हम कक्षा 9 में फेल हो गए थे, कक्षा 8 तक हमारी फुल पढ़ाई हुई है।
0: और उसके बाद खेती से जुड़ गए?
1: जी हाँ।
0: ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
1: हमारे पास चलिए मान के चलिए कि 9 बीघा 22 एकड़ है हमारे पास मौके पर।
0: एकड़ में 2 एकड़?
1: हाँ 2 एकड़, 20 बिसवा है सर।
0: कौन कौन सी सब्जियां इस समय आपके खेत में हैं?
1: हमारे खेत में सर जी मान के चलिए कि 1.5 एकड़ हमारे पास तो ये गोभी लगी है, बंधा और फूल गोभी
0: जी।
1: और 20 बिस्से टमाटर लगा है, बाकी केला है, प्याज लगी हुई है। ऐसे ऐसे मिला करके हम सब पूरा अपना खेत पैक किए हैं।
0: आप हाइड्रोपोनिक्स में भी सब्जी उत्पादन करते हैं?
1: जी हाँ। तो डॉक्टर साहब ये 3 साल हो गया हाइड्रोपोनिक चलाते।
0: तो इसकी शुरुआत कब से हुई?
1: 3 साल हो गया सर।
0: लेकिन कहीं से प्रेरणा मिली होगी आपको?
1: जी हाँ, प्रेरणा हमको नाबार्ड ने दिया है।
0: तो कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक तकनीक से?
1: अब वो इसमें हम स्ट्रॉबेरी भी किए हैं, 2 साल हो गया। उसके बाद लाल पीली शिमला मिर्च, उसके बाद में धनिया और पालक, और जो चाहता हूँ उसको उसमें लगा करके बिना मिट्टी की खेती है मैं पैदा कर रहे हैं।
0: ये बताएं कि इस समय जो गोभी वर्गी सब्जियां खेत में हैं उनकी रोपाई कब की?
1: रोपाई ये मान के चलिए कि 2 महीना हो गया है।
0: यानी आपने अगस्त में रोपाई कर दी थी?
1: हाँ सर जी।
0: नर्सरी आपने जुलाई में डाला होगा?
1: हाँ जुलाई में मैंने छोड़ दिया था।
0: तो अभी बाजार जाना शुरू हुआ कि नहीं?
1: बाजार जा रहा है।
0: यानी भाव आपको अच्छा मिल रहा है गोभी वर्गीय सब्जियों का?
1: गोभी का रेट ऐसा 50 रुपए किलो जा रहा है।
0: और अभी केवल फूल गोभी है कि पत्ता गोभी तैयार हो गई?
1: नहीं, मौके पर हमारे पास सिर्फ फूल गोभी तैयार है।
0: अब पत्ता गोभी में क्या देरी है?
1: पत्ता गोभी में अभी 1 महीना वो लेगा।
0: कौन कौन सी बारीकी करते हैं फूल गोभी और पत्ता गोभी तैयार करने में?
1: बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कीटाड़ इसमें लगते हैं, गदहले से आप बता ले जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है।
0: कोई खास वैरायटी लगाते हैं?
1: हाँ वैरायटी ओजक्स का लगाते हैं।
0: आप अरबी उत्पादन के लिए भी जाने जाते हैं, तो इस साल कैसा रहा अरबी उत्पादन?
1: इस वक्त बढ़िया रहा, नंबर 1 का डॉक्टर साहब।
0: कब बुआई आपने किया था?
1: बुआई हम नवंबर में किए थे
0: पिछले साल।
1: हाँ पिछले साल नवंबर में किए थे, उसके बाद में नवंबर में बुआई करके हमने उसमें मटर और धनिया और नीचे अरुई मेड़ पर हम पूरा टोटल लगवाए थे
0: जी।
1: एक एकड़ लगवा करके हमारी भी धनिया जाम आई, 1 एकड़ में पूरी धनिया जाम आई।
0: हाँ।
1: मटर भी जाम आई, जैसे एक एक बीटा का हुआ मैंने कटवा दिया धनिया, पूरा एकदम खत्म करवा दिया।
0: और सीधे बाजार बेच दिए?
1: सीधा मंडी।
0: और अरवी की खुदाई कब से चालू किया आपने?
1: अरवी हमार ये मान के चलिए कि ये 3 महीना में ये मटर वटर रेडी हो गया।
0: हाँ।
1: नवंबर, दिसंबर, जनवरी।
0: हाँ।
1: जनवरी में फरवरी तक हमारी अरवी जामनेशन आई और मटर हमारी टूट के खत्म हो गई
0: जी।
1: तब उसमें फरवरी में जाम नेशन आई तो उसको फिर सगरो खत्म करके पूरा खेत की सफाई करवा दिए।
0: हाँ।
1: खर खुदुर जो था उसको सफाई करवा करके फिर मिट्टी चढ़वा दिए, मिट्टी चढ़वा के उधर घुया सगरो जाम आई, फिर इसको 6 महीना 4 महीना के इंतजार किए मैंने।
0: और खुदाई कब से चालू की?
1: खुदाई जून से हमने खुदवा दिए थे सर जी।
0: और उस समय बाजार भाव अच्छा मिला होगा?
1: जून में हाँ, थोड़ा कम पैदावारी थी, जैसे मान के चलिए पैदावारी हमको एक पेड़े में 400 ग्राम 500 ग्राम 300 ग्राम ऐसे ऐसे पैदावारी मिली थी, लेकिन इधर जो मैंने रेट थोड़ा बढ़ा था उधर हमको वो पूरा कर दिया।
0: तो सब्जी उत्पादन में कौन कौन सी बारीकी करते हैं हरिश्चंद्र भैया?
1: बारीकी तो अब जैसे ये खेत में हम 2-2, 3-3 फसल लेना चाहते हैं और ले लेते हैं कभी कभी। प्याज हम इधर लगा दिए हैं, 1 किलो दाना प्याज भी लगवा दिए हैं मौके पर।
0: खरीफ प्याज?
1: हाँ खरीफ प्याज, नर्सरी डाले थे, नर्सरी डाल करके उसके बाद लगवा दिए मेड़ पर।
0: हमारे फसल कैसी चल रही है आपकी?
1: फसल बढ़िया है।
0: जैसा आपने कहा कि 2 एकड़ आपकी खेती की जमीन है और उसमें पूरे साल आप रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं, एक साथ एक ही खेत में कई सब्जियां पैदा कर रहे हैं, तो पूरे साल में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
1: उत्पादन तो मान के चलिए डॉक्टर साहब, कभी कभी तो मान के चलिए 2-3 लाख पहुंच जाता है, और कभी कभी तो जैसे प्राकृतिक का दिन रहा था तो उसी में जो पैसा लगा रहता है, पैसा हम सब लोग 2-2.5 लाख तक लगा देते हैं खेत में।
0: जी, और आमदनी कितनी होती है आपकी?
1: आमदनी मान के चलिए कि पूरे साल में 2-3 लाख।
0: कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
1: जी हाँ, खुशहाल यही है कि जेब में पैसा हमेशा रहता है, खेती कर रहा हूँ, अनेकों प्रकार की सब्जियाँ भी खा रहा हूँ, उसके बाद हमारे पास हर एक चीज है, हम जो चाह रहे हैं वो हमको मिल रहा है।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है सब्जी उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: सलाह तो हम पर डे 4-6 आदमी हमारे यहाँ तो वैसे निजी है कि हाइड्रोपोनिक देखने आते हैं।
0: जी,
1: हाइड्रोपोनिक देखते हैं कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए हम काफी सलाह किसान को, कम से कम हमारे पास 70-80 किसान ऐसे हैं कि जुड़े हुए हैं, वो मौके पर हमसे बातचीत चलती है।
0: लेकिन रेडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और किसान भाई बहन जो कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: हाथ जोड़ के हमारा ये कहना है कि हम हमेशा बहुत से किसान को बहुत आगे बढ़ा दिए हैं, बहुत से किसान थोड़ा डर खा रहे हैं, पैसा नहीं है, बहुत चीज की मजबूरियां हैं उनके पास, खेत नहीं है, बहुत चीज की दिक्कत है उनको, तो वो नहीं कर पा रहे हैं।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मोबाइल नंबर 94-52-52-46-70, 94-52-52-46-70।
0: हरीश चंद्र चौरसिया भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि 2 एकड़ आपके पास खेती की जमीन है जिसमें पूरे साल आप सब्जी उत्पादन करते हैं, एक साथ एक ही खेत में 2-3-4 सब्जियां पैदा करते हैं और हाइड्रोपोनिक तकनीक से भी बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: प्रीता बहनी, चलत चलत अब पंचन का बता दिन जाए पता, जीते हुए हमसे कह सकते हैं बातचीत।
6: तो भैया पता है, कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
5: अब जो हमारे ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com।
6: भैया आज अपने कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो रहा है, तो अपने पंचन से लीन जाए आज्ञा।
5: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में

0: प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 4,60,000 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में हस्तांतरित की 148 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति। बच्चों से की विकसित भारत 2047 का भागीदार बनने की अपील। मुख्यमंत्री ने 24 से 26 अक्टूबर तक वाराणसी के नमो घाट पर होने वाले एयर शो की तैयारियों को परखा। सेक्टरवार मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आज पूरे किए 12 वर्ष। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी पहली कड़ी। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत में युवा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार की योजना युवाओं को बना रही है आत्मनिर्भर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्व दशम, नौ दस तथा दशमोत्तर कक्षाओं के 4,60,000 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में 148 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हस्तांतरित की और 11 विद्यार्थियों को अपने हाथ से छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर श्री योगी ने आश्वस्त किया कि छात्रों के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हर पात्र बच्चे तक छात्रवृत्ति पहुंचाएंगे। श्री योगी ने कहा कि गत वर्ष 69 लाख बच्चों को 6,200 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई। 9 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सही दिशा में आगे बढ़ा है। युवा यूनानिहाल यूपी के सारथी हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप जब 36-37 साल के होंगे तब 2047 तक आपको खुशहाल व समृद्ध भारत मिलेगा, इसके लिए आपको भी योगदान देना होगा।
1: आप इस यूपी के सारथी हैं। यूपी का भविष्य कैसे होना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 2047 यानी 15 से 18 वर्ष के जो छात्र आज हैं, अगले 21 वर्ष में आपकी आयु क्या होगी, 36 से लेके 38-39 के बीच जब आपकी उम्र होगी, तब भारत 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के बढ़ रहा होगा, उसको पूरा कर रहा होगा, और उस के लिए आपका प्रयास भी होना चाहिए, आपको भी लग करके काम करना होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वाराणसी के नमो घाट पर आगामी 24 से 26 अक्टूबर तक प्रस्तावित भव्य एयर शो की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। 25 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति संभावित है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों, वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष एयर शो की तैयारियों और संपूर्ण कार्ययोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एयर शो को लेकर आम नागरिकों में भी उत्सुकता है और बड़ी संख्या में लोग भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन को देखने के लिए पहुँच सकते हैं। इसे देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, सुगम यातायात, पार्किंग और जोनवार स्थल चिन्हांकन की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए।

0: उन्होंने प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ प्रत्येक सेक्टर के लिए मजिस्ट्रेट की सुनियोजित तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वाराणसी मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। पिछले 12 वर्षों में मन की बात ने देशभर में हो रहे सकारात्मक बदलावों को सामने लाने और नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का एक अनूठा मंच प्रदान किया है। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश भर के ऐसे लोगों की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला रहे हैं। वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ प्रमोद कुमार मिश्रा ने आज नामांकन दाखिल किया। उनके साथ 6 अन्य प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया। नामांकन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जांच के बाद ही प्रत्याशियों और प्रस्तावकों को प्रवेश दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए डॉ शरदेन्दु कुमार त्रिपाठी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
2: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
3: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए वाराणसी के अमित कुमार ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से सरकार सीधे जनता के खातों में पैसा हस्तांतरित कर योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
4: मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अपनी जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की भी और केंद्र के ही पैरामीटर पर राज्य सरकारों ने भी डीबीटी के जरिए ही अब ज्यादातर जो सरकारी योजनाएं हैं उसके तहत अब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जो लाभ है वो पहुंचाते हैं।
2: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि युवाओं को सरकार स्वरोजगार योजनाओं के तहत आत्मनिर्भर बना रही है। रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री प्रसाद आज पीलीभीत जिले के पूरनपुर में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूरनपुर के अलावा कई अन्य गांवों में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में भाग लिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश ने अभियान के विभिन्न प्रमुख घटकों में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरे वर्ष अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा ने अभियान की सफलता पर प्रदेशवासियों, जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई मित्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ उत्तर प्रदेश का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। भारी बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रभावित हुई बिजली और सड़क व्यवस्था को जल्द सामान्य करने के लिए मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने बारिश से क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों और तारों को जल्द दुरुस्त कराने के साथ प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति शीघ्र बहाल करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने जलभराव और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हित कर आवश्यक मरम्मत कार्य जल्द पूरा कराने को कहा है, ताकि लोगों के आवागमन में किसी तरह की बाधा न हो। श्री योगी ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और व्यवस्थाओं की बहाली के कार्यों में किसी तरह की देरी न होने पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संबंधित अधिकारी प्राथमिकता तय करें और प्रभावित लोगों को जल्द राहत पहुंचाएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: वाराणसी सहित कई जिलों में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आज महिलाओं ने अपने संतानों के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना से निर्जला जीवित पुत्र का जीवितिया व्रत रखा है। व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। व्रती महिलाओं ने भोर में सरगही ग्रहण करने के बाद निर्जला उपवास शुरू किया। कल सुबह उदित सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 4,60,000 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में हस्तांतरित की 148 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति। बच्चों से की विकसित भारत 2047 का भागीदार बनने की अपील। मुख्यमंत्री ने 24 से 26 अक्टूबर तक वाराणसी के नमो घाट पर होने वाले एयर शो की तैयारियों को परखा। सेक्टरवार मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज पूरे किए 12 वर्ष। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी पहली कड़ी। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत में युवा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार की योजनाएं युवाओं को बना रही हैं आत्मनिर्भर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

कुमार के बोल थे और संगीत दिया था प्रीतम ने। देसी बॉयज इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शिफाली अलविराज और मीका सिंह को। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत अब आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म चाहत से, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। जमीर काजमी के बोल हैं और संगीत दिया है श्याम सुरेंद्र ने।

चाहत इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम है हीरोपंती। कौसर मुनीर के बोल हैं और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

आकाशवाणी ओवर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं ऐश किंग और अरुणिमा भट्टाचार्य की आवाज में। फिल्म का नाम है हर्टलेस। शब्द रचना अराफत महमूद के और संगीत है गौरव दागोनकर का।

शब्द रचना अराफत महमूद के थे और संगीत दिया था गौरव दागुन करना। हर्टलेस इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे ऐश किंग और अरुणिमा भट्टाचार्य की आवाजों में। कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं अखिल और ध्वनि भानुशाली की आवाज में फिल्म लुका छिपी का ये गीत, जिसे लिखा है कुणाल वर्मा ने और संगीत दिया है अभिजीत बघानी ने।

0: लुका छिपी इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अखिल और ध्वनि भानुशाली को, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है FM 102.7 पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

शब्द रचना गुलजार के थे और आप सुन रहे थे साधना सरगम को। कार्यक्रम में आइए अगली प्रस्तुति आपको सुनवाते हैं रूप कुमार राठौर की आवाज में।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। मयूर पीरी के बोल हैं और संगीत है सचिन जिगर का। फिल्म का नाम है ABCD 2।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में। नक्श लयालपुरी के बोल हैं और संगीत है अमर उत्पल का। फिल्म का नाम है जय मां वैष्णो देवी। अनुराधा पौडवाल के साथ इस गीत को गाया सोनू निगम ने।

अशांति। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे चंद्रशेखर गॉडगिल को। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आरटी बर्मन ने। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज आइए करते हैं चंदन दास की आवाज के साथ।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

राजेश जौहरी के बोल थे और आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को। और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
6: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
7: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
6: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
8: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
6: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

0: संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े हैं।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रात्रि के 9:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म अवतार से आशा भोसले, महेंद्र कपूर और चंचल की आवाज में, और इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे चंचल और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम था आशा और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीत गया। साहित्य के आकाश पर कुछ हस्ताक्षर ऐसे होते हैं जिनकी रचनाएं समय की धूल में धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि वक्त के साथ और अधिक प्रखर होती चली जाती हैं। इस वर्ष हम भारतीय कविता के शिखर पुरुष कवि रत्न कुंवर नारायण का जन्मशती वर्ष मना रहे हैं। कुंवर नारायण का संपूर्ण रचना कर्म इस बात का साक्षी है कि एक संवेदनशील रचनाकार अपने युग के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। चक्रव्यूह, आत्मजयी, अभिज्ञेय और कुमार जीव तक उनकी कविताओं में पौराणिक कथा संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समाज के जटिल अंतर विरोधों और मानवीय विडंबनाओं का बेहद गंभीर अंकन मिलता है। पर वहाँ कविता भी है। वो जहाँ एक ओर मनुष्य के नितांत एकांत और आंतरिक संघर्ष पर विमर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर युग जीवन की उथल पुथल को भी पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी कविता का मुख्य स्वर बनाते हैं। कुंवर नारायण के इसी सृजनात्मक लेखन शैली के अलग अलग अंतः सूत्रों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर राय।
1: कुंवर नारायण भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर हमें समृद्ध करते हैं कि उनकी भाषा ठहरी हुई भाषा नहीं है। जिस तरह से हिंदी कविता में छायावाद की भाषा को आप फ्रेम कर सकते हैं, आप उसको पढ़कर कह सकते हैं कि ये छायावाद की भाषा है या ये प्रसाद की भाषा है, ये महादेवी की भाषा है। कुंवर नारायण की रचनाएं भाषा को एक निश्चित ढांचे या मुहावरे में कैद कर लेने की छूट नहीं देती। इसलिए उनकी भाषा के तीन तहें हैं। दरअसल पहली तह वो है जहाँ पर कुंवर नारायण की कविताओं का मिजाज दार्शनिक है। उस दार्शनिकता को व्यक्त करने के लिए कुंवर नारायण जिस भाषा को विकसित करते हैं वो अभिजातीय संस्कृतनिष्ठ भाषा है, वो आत्मजयी की भाषा है। दूसरा, कुंवर नारायण की कविताएं खास तौर पर जो इतिहास पर हैं, जैसे उन्होंने फतेहपुर सीकरी पर, दिल्ली पर, लखनऊ पर जो कविताएं लिखी, उनकी कविताओं में उर्दू के शब्द आते हैं, डिक्शन भी उनका उर्दू के करीब जाता है। और तीसरे तरह की वे कविताएं हैं जहां पर वो जीवन के सामान्य अनुभवों को दर्ज करते हैं, वहां बोलचाल की भाषा भी है। तो आप देखेंगे कि कुंवर नारायण की कविताएं, कविताओं की भाषा परतदार भाषा है, जिसमें तत्समता भी है, जिसमें उर्दू भी है और जिसमें बोलचाल की भी है। निर्भर करता है कि वो कविता किस विषय पर, किस इलाके में लिखी गई है। मोटे तौर पर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है और अंतर्वस्त्र कुछ अलग किस्म की चीज़ है। जिस प्रकार किसी भी छिलके को उसके फल से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से किसी भी रचना को उसकी भाषा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दरअसल जो अनुभूति है, जो विचार है, वो तो भीतर है, वो घटित हो रहा है रचनाकार के अंदर। जब भी वह रूप लेगा, जब भी वह बाहर आएगा, जब भी वह अभिव्यक्त होगा, तो साहित्य में उसका एकमात्र माध्यम भाषा है। किसी दूसरी कला में भाषा अपेक्षित नहीं है, न मूर्ति में, न चित्रकला में, न संगीत में। केवल साहित्य है जिसकी सत्ता ही भाषा पर निर्भर करती है। इस तरह से जब भी अनुभव बदलेगा, जब भी संबंध बदलेंगे, जब भी दृष्टिकोण बदलेगा, तो निश्चित रूप से भाषा बदलेगी।
0: कुंवर नारायण की भाषा में संकोच, शालीनता और एक गहरी मध्यम आँच थी, मानो वे शोर से किसी दूर एकांत में बैठकर खुद अपने ही वजूद से बहस कर रहे हों। आज जब हमारी युवा पीढ़ी एक अजीब से मानसिक भंवर और लगातार पीछा करते सेल्फ डाउट से गुजर रही है, तो कुंवर नारायण की ये ठहरी हुई लेखन शैली एक मुकम्मल इलाज की तरह सामने आती है। वो हमें सिखाते हैं कि हर उलझन का तुरंत जवाब पाना जरूरी नहीं, कभी कभी सवालों के साथ चुपचाप जीना भी एक बड़ी बौद्धिक ताकत है। पर अब इस दार्शनिक था से बाहर निकलकर साहित्य के कुछ और पन्ने पलटते हैं, एक दूसरे अध्याय का रुख करते हैं। साहित्य लेखन में शालीनता और तहजीब के नाम पर हमेशा से कुछ तयशुदा लकीरें खींच दी जाती हैं, खास तौर पर तब जब बात एक स्त्री के लिखने, बोलने और सोचने की हो। लेकिन उन तमाम गढ़ी हुई सीमाओं को अपने बेबाक अक्खड़ कलम से बीच से चीर देने का हुनर अगर किसी ने सबसे पहले आजमाया तो वो थी इस्मत चकताई। सुनिए हमारी ये प्रस्तुति, कागजी है पैरहन।
2: आने वाली 24 तारीख उर्दू कथा साहित्य की उन ग्रैंड डेम की याद को समर्पित है जिन्होंने पितृ सत्तात्मक साचों को पहली बार बौद्धिक धरातल पर चुनौती दी।
3: बदायूं के रूढ़ीवादी कुनवे की तंग दीवारों से लेकर जिंदगी भर की आजमाइशों तक इस्मत का वजूद मुसलसल बगावत था।
2: छुई मुई, बैलेंस शीट और उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर ने उस मध्यम वर्गीय यथार्थ को कागज पर उतारा जिससे मुख्य धारा का साहित्य अक्सर आंखें चुरा लेता था।
3: उन पर अश्लीलता के इल्जाम मढ़े गए और अदालतों के कटघरे खड़े किए गए,
2: मगर अदालत ने पेशियों के उस दौर के बीच भी सादत हसन मंटो के साथ उनकी वो बेपरवाह संगति इस बात की गवाही थी कि वो किसी भी कानूनी पहरे से दबने वाली कथाकार नहीं थी।
3: और आगे चलकर जब वक्त ने उनके इस विद्रोही साहस के महत्व को स्वीकार किया तो साहित्य में उनके इस अनूठे अवदान के लिए उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से भी अलंकृत किया गया।
2: अदब की इस महफिल में इस्मत चुगताई के तीखे फलसफे और उनकी कहानियों के ताने बाने को अपनी दस्तकारी से सजा रहे हैं कलाकार उदित यादव और आमना।
4: जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस्मत से मेरी पहली मुलाकात के नक्श अभी तक दिलो दिमाग में महफूज हैं। बहुत ही सादा लिबास में थी, छोटी कन्नी की सफेद धोती, सफेद जमीन का काली खड़ी लकीरों वाला चुस्त ब्लाउज, हाथ में छोटा पर्स, पाँव में बगैर एड़ी का ब्राउन चप्पल, मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक, छोटे मगर घुंघराले बाल, जरा सा मुस्कुराने पर भी गालों में गड्ढे पड़ जाते थे।
5: इस्मत पर लिखने के दौरे पड़ते हैं, ना लिखे तो महीनों गुजर जाते हैं, पर जब दौरा पड़े तो सैकड़ों सफे उसके कलम के नीचे से निकल जाते हैं। खाने पीने नहाने धोने का कोई होश नहीं रहता, बस हर वक्त चारपाई पर कोहनियों के बल औंधी लेटी अपने टेढ़े मेढ़े आराब और इमला से बेनियाज खत में कागजों पर अपने ख्यालात मुंतकिल करती रहती है। टेढ़ी लकीर जैसा तूल तवील नॉवल मेरा ख्याल है इस्मत ने कुछ 7-8 नशिस्तों में खत्म किया था। उसका कलम और उसकी जबान दोनों बहुत तेज हैं। लिखना शुरू करेगी तो कई मर्तबा उसका दिमाग आगे निकल जाएगा और अल्फाज बहुत पीछे हाफते रह जाएंगे। बातें करेगी तो लफ्ज एक दूसरे पर चढ़ते जाएंगे। शेखी बगाड़ने की खातिर अगर कभी बावर्ची खाने में चली जाए तो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तबीयत में चूंकि बहुत ही उजलत है इसलिए आटे का पेड़ा बनाते ही सिकी सिकाई रोटी की शक्ल देखना शुरू कर देती है। इस्मत की तबीयत में जिद है, बिल्कुल बच्चों की सी। पहले शादी से इनकार करती रही, जब आमादा हुई तो बीवी बनने से इनकार किया, बीवी बनने पर जो तो रजामंद हुई तो माँ बनने से मुनकिर हो गई। तकलीफें उठाएगी, सोबतें बर्दाश्त करेगी, मगर जिद से कभी बाज नहीं आएगी। मैं समझता हूँ ये भी उसका एक तरीका है जिसके जरिए वो जिंदगी के हकायक से दो चार होकर बल्कि टकरा कर उनको समझने की कोशिश करती है। वो कहती है,
4: भाई मैं बोल्ड इसलिए हूँ क्योंकि भाइयों के साथ पली थी। सीना, पिरोना, काढ़ना और बुनना, इन सब चीजों में मेरा कभी जी ही नहीं लगा। और रोने, गला फाड़कर चिल्लाने में हम सब भाई बहनों को खासी महारत हासिल थी। हमारी अम्मा बौखला कर हमारा कहना मानने पर मजबूर हो जाती। हमें अपनी इस ताकत का शिद्दत से एहसास था। बच्चे रो पीट कर ही अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं।
5: अम्मा के हाथ अगर पड़ जाऊं तो खामखा ही मार देती थी। हम पूछते कि भाई क्यों मारा है, हमने कुछ भी शरारत नहीं की, तो जवाब में कहती, आज नहीं की तो कल करोगी। लेकिन फिर भी बड़ी प्यारी लगती थी। पता नहीं इतना मारती थी तब भी मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती थी।
4: खैर साहब, बचपन जैसे तैसे बीता। ये कभी पता न चला कि लोग बचपन के बारे में ऐसे सुहाने राग क्यों अलापते हैं। बचपन नाम है बहुत सी मजबूरियों का, महरूमियों का। बड़े होकर एक पोजीशन बनती है जो नाइंसाफियों का मुकाबला करने की ताकत बख्शती है। 8 बड़े भाई बहनों की शफकतें झेलने के बाद बड़े होने का बेचैनी से इंतजार था। जब घर में छोटे भांजे भतीजे पैदा होने लगे तो अपनी बुजुर्गी का एहसास निहायत तसल्ली बख्श साबित हुआ।
5: मेरी बहनें निहायत सुघड़ थीं। उर्दू, फारसी, कुरान शरीफ के अलावा कशीदकारी, बुनाई, सिलाई और खाने पकाने में मशा, और मैं निहायत फुहड़। भाइयों की नकल में पेड़ों पर चढ़ना, साइकिल दौड़ाना, हर जगह मुझे अपनी शिकस्त का एहसास होता। उन्हें भी मुझ पर तरस क्यों आता आखिर? मैं अब्बा की शह पर उनकी बराबरी पर तुली हुई थी। अजीम भाई हमेशा के बीमार ही थे। मैं लड़की होने की वजह से भाइयों के साथ ना निभा सकती थी और वो बीमारी की वजह से मजबूर थे। पर साहब उन्हें कुछ मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि लड़के तो बैल होते हैं, तुम बैल क्यों बनो, पढ़ाई में तुम उनसे टक्कर लो, वहां तुम उन्हें मार लोगी। फिर उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाना शुरू किया। 2 बार मुझे डबल प्रमोशन दिलवाया। उनकी शह पाकर मैंने कुरान का तर्जुमा, हदीसें और इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी और अपने अब्बा के बुजुर्ग दोस्तों के बीच बैठकर अपनी ताजा ताजा मालूमात का इजहार करना शुरू किया। मगर अब्बा की शह पाकर मैंने अपने वालिद के मुअम्मरी दोस्तों की सोहबत में बहुत कुछ सीखा।
4: मेरी अम्मा को मेरी हरकतें एक आंख ना भाती थी। मेरे अंजाम की उन्हें सख्त फिक्र थी। ये मर्द मार बातें औरतों को जेब नहीं देती। वो इतनी गहराई से ना इन बातों को समझती थी और ना समझा सकती थी। मगर मुझे मालूम हुआ कि मेरी अम्मा क्यों डरती थी। ये मर्द की दुनिया है, मर्द ने बनाई और बिगाड़ी है। औरत एक टुकड़ा है उसकी दुनिया का, जिसे उसने अपनी मोहब्बत और नफरत के इजहार का जरिया बना रखा है। वो उसे मूड के मुताबिक पूछता भी है और ठुकराता भी है।
5: मैंने अपनी जिंदगी के नहायत दिलचस्प और नहायत ही कठिन लम्हे लिखने के सहारे झेले हैं। ये कलम मेरा रज़ाक भी है और हमदम भी, तन्हाई का बोलता चालता दोस्त भी। उसकी मौजूदगी में मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। मैं जब चाहूं इस उड़न खटोले के जरिए जिसे चाहूं बुला लूं, और जब वो आए तो जी चाहे उनसे कहूं, हंसाऊं, रुलाऊं या जी जलाकर खाक कर दूं, फिर मूड आए तो पुर्जा पुर्जा करके फना कर दूं, कठपुतलियों की तरह पुतले बनाकर जैसे चाहूं न चाहूं।
4: मैंने चोरी चुपके जब अंगारे पढ़ी, रशीद आपा ही मुझे एक ऐसी हस्ती नजर आईं जिन्होंने मुझ में खुद एतमादी पैदा की। मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अलीगढ़ की छोटी जहर आलूद फिजा में वो बड़ी बदनाम थी। मेरी साफगोई को उन्होंने सराहा और फिर मैंने उनकी बताई हुई किताबें चाट डाली। फिर मैंने लिखना शुरू किया और मेरा ड्रामा फसादी साखी में छपा। उसके बाद और कहानियां लिखी और कोई कहानी रद्द नहीं हुई। एकदम मुझ पर एतराज होने लगे, लेकिन रिसालों से मेरी कहानियों की मांग बढ़ने लगी। मैंने एतराजात की कोई परवाह न की। मंटो के फोन से मालूम हुआ कि उस पर भी मुकदमा चला है, उसी कोर्ट में उसी रोज उसकी भी पेशी है। फिर सफिया और मंटो दौड़े आए। मंटो निहायत हशाश बशाश, जैसे किसी ने विक्टोरिया क्रॉस दे दिया हो। मैं दिल में बड़ी नादिम थी। बज़ाहिर बहादुरी जता रही थी मगर मंटो से मिलकर शाहिद की भी ढारस बन गई और मुझे बड़ी तसल्ली हुई। दिल में तो धकड़ पकड़ हो रही थी मगर मंटो ने वो शह दी कि मेरा भी डर निकल गया। कहने लगा, अरे एक ही तो मारखे की चीज लिखी है आपने, अमा शाहिद तुम भी क्या आदमी हो यार, तुम भी चलना, तुमने जाड़ों का लाहौर नहीं देखा।
5: चुप करो मंटो साहब, सफिया नर्वस होने लगी और फिर मुगलजात के भरे खतखत का तांता लग गया। ऐसी अनोखी पेचदार भारी भरकम गालियां कि मुर्दे के सामने बक दी जाएं तो उठकर भाग जाए, मुझे ही नहीं मेरे पूरे खानदान को, शाहिद को और मेरी 2 महीने की बच्ची को कि उसकी पैदाइश की खबर कहीं छप गई थी। मुझे अपनी डाक से डर लगता था जैसे लिफाफों में सांप बिच्छू और अजगर बंद हों। डरते डरते खत खोलती, अगर सांप बिच्छू दिखाई पड़ते तो 2 लफ्ज पढ़कर खत जला देती। अगर शाहिद के हाथ खत पड़ जाता तो फिर तलाक की नौबत आ जाती। मुझे अपने जुर्म का एतराफ था, सिर्फ मंटो एक ऐसा वाहिद इंसान था जो मेरे इस बुजदिलाना रवैये पर भड़क उठता था। मैं खुद अपने खिलाफ थी और वो मेरी हिमायत करता था। तरक्की पसंदों ने ना मुझे फटकारा ना मेरी तारीफ की और मुझे इस रवैये से बड़ा इत्मीनान होता था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जीते जी मुझे समझने वाले पैदा हो गए। मंटो को तो पागल बना दिया गया, तरक्की पसंदों ने भी उसका साथ ना दिया, मुझे तरक्की पसंदों ने ठुकराया नहीं और ना ही सर पर चढ़ाया। मैं बहुत आसूदा हाल थी, फिल्मों से हमारी बहुत अच्छी आमदनी थी और अदबी मौत या जिंदगी की परवाह ना थी। और वैसे मैं तरक्की पसंदों की खुद भी चमची बनी हुई थी और बड़े जोर शोर से इनकलाब ला रही थी।
4: पतरस बुखारी ने इस्मत के बारे में लिखा था कि हमें इस बात को तस्लीम करने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि इस्मत की शख्सियत उर्दू अदब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कुछ ऐसी पुरानी फसीलों में रखने डाल दिए हैं कि जब तक वो खड़ी थी कई रास्ते नजरों से ओझल थे। इस कारनामे के लिए उर्दू जानने वालों को ही नहीं बल्कि उर्दू के अदीबों को भी उनका एहसान मंद होना चाहिए।
5: इस्मत फहश निगार है, हल्का हल्का तंज और मजा इस्मत के स्टाइल की मुमताज खूबियां हैं। इस्मत तलवार की धार पर चलती हैं, उन पर बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता रहेगा। कोई उन्हें पसंद करेगा कोई नापसंद, लेकिन लोगों की पसंदीदगी और नापसंदीदगी से ज्यादा अहम चीज इस्मत की तख्लीकी कुव्वत है। बुरी भली जैसी भी है कायम रहनी चाहिए। अदब का कोई जुग्राफिया नहीं, उसे नक्शों और खाकों की कैद से जहां तक मुमकिन हो बचाना चाहिए।
4: कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं,
5: तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं,
4: तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं,
5: तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं,
4: अपनी तारीख का उनवान बदलना है तुझे,
5: उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे,
4: उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।
0: अभी आपने सुनी इस्मत चगताई के बागी और बेखौफ जीवन पर आधारित एक जीवंत दास्तान कागजी है पैरहन, जिसे प्रस्तुत किया उदित यादव और आमिना ने। साहित्य की इस दुनिया के भी अजीब रंग हैं। अगर आप इस्मत आपा के उपन्यासों और कहानियों के पन्नों को पलटें तो वहां चांद कोई आसमान का सजावटी खिलौना नहीं बल्कि वो किरदारों के अकेलेपन का खामोश गवाह बनता चलता है। जैसे उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर में शमन का कमरा हो या फिर उनकी कहानियों में कोठरियों की घुटन, जहां आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा और खिड़की से झांकता वो चांद ही पात्रों की तन्हाइयों का इकलौता हमराज होता है। शरद पूर्णिमा की रात जब गगन धुले हुए दूधिया प्रकाश से नहाया सा रहता है, जब इस रात की ठंडी और रेशमी चांदनी आंगन की सिलवटों को छूती है तो हवा में एक अजीब सा नशा और खामोशी घुल जाती है। ये सिर्फ शरद का चांद नहीं बल्कि सदियों से कवियों की रूह में उतरता वो जादुई एहसास है जो हर दिल की अनकही धड़कनों को अल्फाज दे जाता है। महाकवि कालिदास के मेघदूत से लेकर रीतिकाल के कवियों तक और आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में जहां चांद कभी सपने की तरह उतरता है, या फिर हरिवंश राय बच्चन या शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में वो तन्हाई और प्रेम का हमसफर बनकर चमकता है, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हो या फिर सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण, हर बड़े रचनाकार ने शरद पूर्णिमा के इस चांद को अपनी संवेदनाओं का आईना बनाया है। आइए चांद और कविताओं के इसी रुपहले ताने बाने को सुनते हैं हमारी अगली लघु प्रस्तुति चांद कविताओं का हमसफर में।
6: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की एक कविता है चांदनी चुपचाप। चांदनी चुपचाप सारी रात सूने आंगन में जाल रचती रही, मेरी रूपहीन अभिलाषा अधूरेपन की मध्यम आंच पर नचती रही, व्यथा मेरी अनकही आनंद की संभावना के मनश्चित्रों से परचती रही, मैं दम साधे रहा मन में अलक्षित आंधी मचती रही, प्रातः बस इतना कि मेरी बात सारी रात उघड़ कर वासना का रूप लेने से बचती रही।
2: शरद पूर्णिमा की रात आसमान में खिला चांद और उसकी चांदनी। भारतीय साहित्य में चांद का ये रूप सिर्फ प्रकृति का सुंदर दृश्य नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहद ही आत्मीय माध्यम भी रहा है।
3: भक्ति काल के कवियों से लेकर आधुनिक दौर के रचनाकारों तक चांद ने प्रेम, विरह, स्मृति और जीवन के अनेक भावों को शब्द दिए हैं। कविता में चांद के इसी बदलते रूप और उसके साहित्यिक उपख्यानों पर एक नजर डाल रही हैं डॉक्टर रिजवाना फातिमा, पूर्व शिक्षिका, दिल्ली विश्वविद्यालय।
7: हिंदी कविता में चांद केवल आकाश में चमकने वाला एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वह प्रेम, सौंदर्य, विरह, स्मृति, कल्पना, अकेलेपन और मानवीय संवेदनाओं का एक बहुआयामी प्रतीक है। चांद को किस रूप में देखा जाता है? ये कवि की दृष्टि उसकी भावभूमि, सामाजिक संदर्भ और काव्य परंपरा पर निर्भर करता रहा है। चांद को सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। चांद का उज्ज्वल चेहरा, उसकी शीतलता, उसकी आभा, प्रेम की कोमलता तथा आकर्षण को वो व्यक्त करती है। लेकिन इसके साथ ही भक्तिकालीन कविता की अगर मैं बात करूं तो सूरदास, उन्होंने वहां पर चांद को खिलौने के तौर पर प्रयुक्त किया है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, कृष्ण जिद कर रहे हैं अपनी माता से कि वो चांद रूपी खिलौना लेना चाहते हैं। चांद जो है वो प्रतीक रहा है मानवीय संवेदनाओं का, जो मानवीय रिश्ते हैं। हम रीतिकाल से निकल कर के रीतिकालीन कविता की तरफ जब आते हैं तब देखते हैं कि वहां पर चांद जो है वो विरह और अकेलेपन के साथ में प्रिय व्यक्ति की भी याद दिलाने का कार्य करता है, नायिका के मुख के सौंदर्य की भी बात करता है। उदाहरण के तौर पर बिहारी की कविता को लिया जा सकता है, कहते हैं पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चहू पास, नित प्रति पुण्य रहे आनन हो पुजास, मतलब कि नायिका का जो मुख है उसकी आभा के सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ रही है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि नायिका के घर के आसपास जो आसपास हमेशा ही पूर्णिमा बनी रहती है क्योंकि उसका मुख का उजाला ही इतना देखे। चांद से भी श्रेष्ठ नायिका का मुख है ये। केशव ने रामचंद्र कामे सीता के मुख के सामने चंद्रमा को दोषयुक्त सिद्ध किया है। तो कुल मिलाकर के जो चांद है

0: आध्यात्मिक भी है। इस आध्यात्म में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कृष्ण रूपी परमात्मा, गोपिकाएं रूपी आत्माएं और उन सब का मिलजुल कर होने वाला नृत्य अर्थात शरद चांदनी का यह सुंदर उत्सव बहुत आगे तक आध्यात्मिकता को छू लेने वाला है। मणिपुरी रास लीला में शरदोत्सव का या शरद रास का विशेष महत्व है। आगे अपनी कविता में लिखते हैं, शरद चांदनी बरस रही है, अंजुली भर पी लो, तुम भी क्षण क्षण जी लो। शरद ऋतु यही तो वो है जिसकी कवियों ने लेखकों ने बहुत प्रशंसा की है।
1: सदियां बीत गईं, दौर बदल गए, लेकिन चांद को निहारने और उसे शब्दों में पिरोने का सिलसिला आज भी जारी है। कभी वो प्रेम का प्रतीक बनता है तो कभी विरह और स्मृतियों का।
2: ये चांद है जो हर दौर में कवियों की कल्पना को रोशनी देता रहा है और आज भी कविताओं में अपनी जगह बनाए हुए है।
1: काव्य वाचन स्वर सौम्या वाजपेयी, छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं हूँ प्रांजल।
3: चांद कविताओं का हम सफर। अभी आपने सुनी ये विशेष लघु प्रस्तुति। ऋतुओं के बदलते रंगों के बीच जब हवाओं में त्योहारों की आहट और मौसम में गुलाबी सी ठंड घुलने लगती है तो ये महीना अपने साथ केवल ऋतु परिवर्तन की ही अनुभूति नहीं लाता बल्कि साहित्य की उन अमर स्मृतियों को भी हमारे सामने लाता है जिनकी आभा समय बीतने के साथ और गहरी होती जाती है। वो नाम हमारी भाषा में होते हैं, हमारी स्मृतियों में होते हैं और कभी कभी हमारे अपने अनुभवों में भी। सबसे पहले स्मरण कथा सम्राट प्रेमचंद का, जिन्होंने साहित्य को गांव, खेत और आम जीवन की धड़कनों से जोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने कविता को रूढ़ बंधनों से मुक्त कर उनमें स्वाधीन चेतना, विद्रोह और करुणा के स्वर भरे। शीला शुक्ल, जिन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज की विरूप विसंगतियों को सामने रखा। भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के भीतर के द्वंद्व और जीवन के जटिल प्रश्नों को स्वर दिया। आधुनिक हिंदी कहानी और वैचारिक बहस को नया तेवर देने वाले पुरोधा राजेंद्र यादव। असरार उल हक मजाज, जिनकी शायरी में रूमानी संवेदना के साथ अपने समय की बेचैनी भी दर्ज है। तन्हा दिलों और संघर्षशील इंसानों के पक्ष में बेबाक और खूबसूरत गीत लिखने वाले साहिर लुधियानवी और अपनी सादगी भरी जुबान से जिंदगी के फलसफे को आम आदमी तक पहुंचाने वाले नायाब रचनाकार निदा फाजली। इन सभी साहित्यिक विभूतियों की स्मृति और उनके अमूल्य साहित्यिक अवदान को नमन करते हुए साहित्य भारती का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्री रफीक खान का वायलिन वादन। देवास घराने की प्रतिष्ठित संगीत परंपरा और उस्ताद रजब अली खान की शिष्य परंपरा से जुड़े श्री रफीक खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को गहराई और प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक कुशल वायलिन वादक के रूप में वे अपनी उत्कृष्ट बोइंग तकनीक, स्वर की शुद्धता और राग विधान की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। उनके संगीत में तकनीकी सटीकता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति का सुंदर संतुलन दिखाई देता है, जिससे उनकी प्रत्येक प्रस्तुति आत्मीय और प्रभावशाली बन जाती है। श्री रफीक खान एकलवादन और संगत में भी समान रूप से दक्ष है। लहरा और लयकारी पर उनकी विशेष पकड़ है। वे

0: सपाट तान, छोटकी तान और गमक जैसी तानों को अत्यंत कुशलता और सहजता से अपनी प्रस्तुतियों में पिरोते हैं। वर्ष 1994 से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टाफ आर्टिस्ट रहे श्री रफीक खान अगस्त 2026 में ए ग्रेड वायलिन वादक के रूप में आकाशवाणी अहमदाबाद से सेवानिवृत्त हुए। देश के अनेक प्रमुख शास्त्रीय संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके रफीक खान अपनी भावपूर्ण और नवोन्मेषी वायलिन प्रस्तुतियों के माध्यम से देवास घराने की संगीत परंपरा को निरंतर समृद्ध और प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आज की इस प्रस्तुति में श्री रफीक खान के साथ तबला पर संगत कर रहे हैं श्री हेमंत जोशी। श्री रफीक खान अपने वादन का आरंभ करेंगे राग मारू बिहाग से। इसकी विलंबित रचना विलंबित एक ताल में तथा द्रुत रचना द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वायलिन रिसाइटल बाय श्री रफीक खान। Hailing from the distinguished Devas Gharana in the lineage of Ustad Rajab Ali Khan, Rafiq Khan carries forward a rich legacy of Hindustani classical music with depth and authenticity. A virtuoso violinist, he is acclaimed for his mastery of bowing technique, tonal purity and deep understanding of raga grammar. His music beautifully balances technical precision with emotional expression, making each performance both soulful and elevating. Equally proficient as a soloist and an accompanist, Shri Rafiq Khan is known for his expertise in lehra and laikari, seamlessly weaving taans like sapat, chut ki taan and gamak with finesse. A staff artist of Akashwani Ahmedabad since 1994, Shri Rafiq Khan retired from Akashwani Ahmedabad as an A-grade violinist in August 2026. Having performed at major classical festivals across India, he continues to uphold and enrich the Devas Gharana tradition through his evocative and innovative violin renditions. In tonight's broadcast, he is accompanied on the tabla by Shri Hemant Joshi. Shri Rafiq Khan begins his recital with Raag Maru Bihag. Vilambit composition is set to Vilambit Ektal and Drut composition is set to Drut Tintal respectively.

0: आपने अभी सुना राग मारू बिहाग। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब श्री रफीक खान प्रस्तुत करेंगे राग जोग। इसकी रचनाएं विलंबित एक ताल, द्रुत एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।
1: You just heard Raag Maru Bihag. Continuing the program, Shri Rafiq Khan will now present Raag Jog. The composition is set to Vilambit Ek Taal, Drut Ek Taal and Drut Teen Taal respectively.

0: आपने अभी सुना राग जोग। इसी के साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत श्री रफीक खान के वायलिन वादन का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। उनके साथ तबला पर संगत कर रहे थे श्री हेमंत जोशी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी अहमदाबाद द्वारा की गई। इसी के साथ ही हम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस प्रसारण को यहीं समाप्त करते हैं। यह प्रसारण आप तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहुंचाया गया।
1: You just heard Raag Jog. With that, we conclude the violin recital by Shri Rafiq Khan in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Shri Hemant Joshi. This program was produced by Akashwani Ahmedabad. With this, we come to the end of the National Program of Music. This broadcast came to you from Delhi Station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: And foreign exchange reserve at about 766 billion US dollars.
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा

0: कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।